मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तिथि 24, तदनुसार 14 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
1: एकटा पौराणिक आख्यानक अनुसार एक बेर विश्वामित्र आ ब्रह्मा में प्रतिद्वंद्विता भेले। सृष्टिकर्ता ब्रह्माक पैघत्व के विश्वामित्र स्वीकार नहीं केले आ अपर सृष्टि रचना करबाक निश्चय केले। एहि लेल ओ सूर्यक आराधना आरम्भ कयलनि, दीर्घकालीन तप आरम्भ कयलनि, अंततः सूर्य प्रसन्न भेलखिन। सूर्यसँ सृष्टि रचना हेतु अपेक्षित ऊर्जा प्राप्त करबामे विश्वामित्र सफल भेलाह आ अपर सृष्टिक निर्माण करय लेल उद्यत भेलाह। दक्षिणाकाशमे अपर सप्तर्षि, अपर ध्रुव आदिक निर्माण सेहो कयलनि। देवता लोकनि देखलनि जे समानान्तर सृष्टिक रचना भेने सब व्यवस्था गड़बड़ा जाय, ओ लोकन कोनहुना विश्वामित्र के अपर सृष्टि रचना के विचार त्याग लेल राजी कले। अंततः विश्वामित्र अनुकूल भेलखिन आ समानांतर सृष्टि रचना के विचार त्याग देलनि। एहि पौराणिक आख्यानक प्रासंगिकता एहि लेल अछि जे अहो युग में वैज्ञानिक लोकनि प्रकृति आ ओकर व्यापार पर नियंत्रण करक लेल प्रयत्नशील छथि। सृष्टिक स्थापित क्रियाकलाप में आधुनिक मानव इच्छानुसार प्रयत्न करय चाहैत छथि। संकर अन्न उपजाब, पृथ्वी से इतर ग्रह में आवागमन करब आ ओहिठाम आवासक प्रयास करब, मनोवांछित संतान उत्पादन करब आदि विविध प्रयास सृष्टिक स्थापित कार्यकलापक प्रतिलोमे प्रस्तुत करब थिक आर किछु नहि। विश्वामित्रक अपर सृष्टि रचनाक प्रयासक देवता लोकनि कियाक विरोध केलखिन, ई प्रश्न विचार। ई प्रयास अप्राकृतिक आ नियम विरुद्ध छल, ततबे नहि एहिसँ लाभक अपेक्षा हानिये हेबाक अधिक संभावना छल। प्रकृति विरुद्ध आचरण के प्रकृति सहि नहि सकै छै, एहिसँ कल्याणक स्थान पर अकल्याणे होइ छै। देवता लोकनि संभावित अकल्याणे के ध्यान में राखैत विश्वामित्र के अपर सृष्टि रचना नहि करय देलखिन। आधुनिक मानव जे प्रकृति विरुद्ध आचरण कऽ रहल अछि तजन्य हानि तक क्रमानुसार सोझा आबिये रहल छै। संकर फसिल पर रोग आ कीटादिक जतेक प्रकोप देखल जाय छै ततेक सामान्य फसिल पर नहि। ओहि रोग व्याधि आ कीटादिक आक्रमणक प्रतिरोध करय लेल जाहि कीटनाशी सभक प्रयोग कयल जा रहल अछि ओहिसँ ने केवल पारिस्थितिक तंत्र पर दुष्प्रभाव पड़ै छै अपितु ओहि अन्न सभक सेवनसँ मनुष्यक जीवनी शक्तिक ह्रास सेहो दिनानुदिन भऽ रहल अछि। औद्योगिकरणक कुपरिणाम जल, वायु आ मृदा प्रदूषणक रूप में सोझा आयल अछि, जाहि कारण मानव नाना प्रकारक रोग व्याधि सँ पीड़ित भऽ रहल अछि। ध्वनि प्रदूषणक कारण श्रवणेन्द्रियक शिथिलता आ मानसिक व्याधिक दुष्परिणाम प्रकट भऽ रहल अछि। अप्राकृतिक जीवन शैली मनुष्यक जीवनी शक्ति के क्षीण कऽ रहल अछि। एतावता ई तऽ निश्चित अछि जे कल्याणक इच्छुक मनुष्यकेँ प्रकृतिक वशीभूत भऽ कऽ चलक चाही, प्रकृतिसँ अरारि नहि ठानक चाही। प्रकृतिक अनुकूल आचरणसँ मानव जातिकेँ दीर्घायुता प्राप्त भऽ सकै छै, प्रतिकूलताक स्थितिमे विनाश अवश्यम्भावी अछि।
0: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।
1: नमस्कार,
0: हम कृषि चर्चा के कार्यक्रम में सुनिए गोपी चंद्र झा की वार्ता, नारियल की उन्नत खेती।
1: 24वीं तिथि तदनुसार 14 जून 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।
2: श्रोता लोकन सुप्रभात, आज कृषि चर्चा के संग उपस्थित छी हम गोपी चंद्र झा। नारियलक उन्नत खेती के लेल उचित जलवायु, उचित जल निकासी वाला बलुई दोमट माटि और उन्नत किस्म जना TXT चौघाट ऑरेंज डवार्फ का चयन महत्वपूर्ण है। गर्मी में पर्याप्त पटौनी और समय पर खादक प्रबंधन को उचित उपजा और मुनाफा पाब सके। पहले जलवायु और माटि, जलवायु में ई गर्म और आद्र जलवायु के फसिल ले, एकरा लेल 20 डिग्री सेल्सियस से लौकर 32 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1000 से 3000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा सबसे निक होते। माटि में जलक बेहतरीन निकासी वाला बलुई दोमट या जलोढ़ माटि सर्वोत्तम है। भरगर जे चिकनी माटि है से बची। उन्नत किस्म अहाँक लाम किस्म, लम्बा किस्म, वेस्ट कोस्ट टॉल, ईस्ट कोस्ट टॉल, लक्षद्वीप ऑर्डिनरी, ई 6 से 7 साल में फल देने शुरू कर दे और 80 साल तक चलित। बोना किस्म चौघाट, ऑरेंज ड्वार्फ, मालायन ग्रीन ड्वार्फ। खेतक तैयारी और रोपण में खाद तैयार केने, रोपण के लेल 1 × 1 × 1 मीटर का खाद 7.5 × 7.5 मीटर या 9 × 9 मीटर के दूरी पर खोदी। खाद में प्रत्येक खाद में नीक जना सरल गोबरक खाद, नीमक खली और माटक मिश्रण करी। समय में गाछ का रोपाई के लेल मानसून को शुरुआत सबसे नीक समय है। पटौनी और उर्वरक प्रबंधन में पटौनी, गर्मी में नियमित पटौनी जरूरी है। ड्रिप पटौनी से लगभग 66% जलक बचत होते आ प्रति पौधा गर्मी में प्रति सप्ताह लगभग 40 से 50 लीटर जलक आवश्यकता होते। उर्वरक में प्रति व्यस्क तार के गाछ के लेल सब साल NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासक संतुलित मात्रा दी का लेप तना का प्रभावित भाग पर लगाबी। आ नारियल का वैज्ञानिक और विस्तृत जानकारी के लिए हम सब कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के दिशा निर्देश से सहायता लो सके छी। जो नारियल के खेती के योजना बना रहल छी तो हमरा सब की जानबा के चाहिए खेत का क्षेत्रफल कते, ओठम का माटि कोन प्रकार के, ओठम पटौनी का अस्थायी व्यवस्था उपलब्ध अछि कि नहीं। नारियल के जे सबसे नीक किस्म अछि ओ अहाँ के जरूरत जलक लेल या तेल खोपरा के लेल पर निर्भर करैत अछि। जो अहाँ मिठगर जल और जल्दी फल दे वाला किस्म चाहे छी तो चावक्कर ऑरेंज ड्वार सबसे उत्तम। पैघ उत्पादन के लेल वेस्ट कोस्ट टॉल सबसे लोकप्रिय है। नारियल के जे प्रमुख और सबसे नीक किस्म के जे वर्गीकरण है वो ए प्रकार है कि पानी और बागवानी के लेल बोना किस्म डॉर वैरायटी, ई किस्म जल्दी फल लगभग 3 से 4 साल में देवे लागे थे और एकर नारियल पेन बहुत मिठगर होइए। चावक्कर ऑरेंज ड्वार्फ ई नारंगी रंग का छोटगर नारियल होइए जेकर जल बहुत स्वादिष्ट होइए। और मलेशियन ड्वार्फ ग्रीन येलो ई तेजी से बढ़े थे और मिठगर जलक लेल दुनिया भर में मशहूर है। तेल और कोपरा उत्पादन के लेल जे लंबा किस्म है टॉल वैरायटी, ई गाछ लंबा होइया 60 साल से बेसी चलैया और एमे तेलक मात्रा बहुत नीक जना है। वेस्ट कोस्ट कॉल ई भारत में सबसे बेसी उगावल जाय वाला किस्म है। ई तेल और खोपरा के लेल बेहतरीन है और लक्षद्वीप ऑर्डिनरी बेहतरीन गुणवत्ता वाला तेल और नारियल उत्पादन के लिए जानल जाते हैं। बेसी उपजा के लिए जो संकर किस्म है वो अहाँ का वैज्ञानिक द्वारा लंबा और बोना किस्म के मिलाकर बनाओल गेल किस्म हाइब्रिड सबसे बेसी उपजा देते। केरा संकरा इस संकर किस्म 4 साल से फल देवे लागे आ चंद्र संकरा इहो जल्दी फल और तेल उत्पादन के लिए अहाँ का बहुत नीक है। आ जो हम सब नारियल के विस्तृत जानकारी अपन क्षेत्रक अनुसार उपयुक्त किस्मक जांच नारियल विकास बोर्ड का आधिकारिक जो मार्गदर्शिका है ओकरा से कह सके छी। अही के संगे आजुक कृषि चर्चा के समय संपन्न भेल। गोपी चंद्र झा के आज्ञा दिया, नमस्कार।

अभी आप कृषि चर्चा का कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को है। अब कुछ ही क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी दस हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल देश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गयी। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है, जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 बजे तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। लोग 1-800-305-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा

0: संभव हो।
1: भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर मनीष कुमार धीरज की भेंट वार्ता। दुर्घटना में घायल होने पर क्या करें? भेंट करता है संजय कुमार। तो ये सुनते हैं डॉक्टर मनीष कुमार धीरज की ये भेंट वार्ता।
4: आज की स्वास्थ्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे दुर्घटना के बाद जख्मी होने की हालत में क्या किया जा सकता है। इस विषय पर हमारे साथ हैं न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष कुमार धीरज। कहते हैं कि दुर्घटनाएं कह कर नहीं आती है, थोड़ी सा भी अगर असावधानी हुई तो दुर्घटना का शिकार हम हो जाते हैं। कभी कभी दूसरों की गलतियों की वजह से भी हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बड़ा ही अहम समय होता है जिस समय दुर्घटना हो जाती है, उस समय से लेकर और हॉस्पिटल तक पहुंचने तक का जो समय है, ये क्या करें दुर्घटना होने के बाद?
5: सर्वप्रथम दुर्घटना होने के बाद यदि आप अकेले हैं, आजकल मोबाइल फोन सबके पास रहता है, अपने निकटतम संबंधियों को सूचित करें, मदद के लिए गुहार लगाएं और पुलिस को फोन कर सकते हैं तो अवश्य फोन करें ताकि आप तक मदद पहुंच सके और आप यथाशीघ्र हॉस्पिटल पहुंचने का यथासंभव प्रयास करें।
4: कई तरह की चोटें होती हैं, शरीर पर चोट हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड पर चोट हो सकती है, लेकिन सबसे जो गंभीर और सांघातक है वो है मस्तिष्क पर लगने वाली चोट। अगर इस तरह की चोट आ जाए तो क्या करना चाहिए?
5: बहुत अच्छा सवाल है। वर्तमान परिस्थिति में जब टू व्हीलर पर हेलमेट पहन करके बैठने की स्थिति देखने में नहीं आती है, मस्तिष्क में यदि चोट है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको चोट लगने के बाद बेहोशी आई हो, यदि चोट लगने की बाद तुरंत बाद की घटनाओं का स्मरण नहीं रहा हो, यदि आपको बार बार उल्टी आ रही हो अथवा नाक या कान से खून बहा हो, मिर्गी का दौरा आ गया हो, तो उस स्थिति में सीटी स्कैन मस्तिष्क का कराना अनिवार्य है और सीटी स्कैन में जो भी निकलता है उसके अनुसार चिकित्सा होनी चाहिए।
4: कई बार जब मस्तिष्क की बात होती है, डॉक्टर जब सुझाव देते हैं कि तत्काल ऑपरेशन किया जाए तो लोग घबरा जाते हैं, और आज भी ये मान्यता है कि मस्तिष्क बड़ा ही जटिल तंत्र है और उसमें ऑपरेशन पता नहीं।
5: नहीं, आज की चिकित्सा जगत में, आज की चिकित्सा शास्त्र में यह अवधारणा बहुत ही गलत है, और हम लोगों ने इतनी दक्षता प्राप्त कर ली है कि मस्तिष्क पर यदि समय रहते हम यदि ऑपरेशन की ज़रूरत है, आम तौर पर यदि ब्रेन में हेमरेज है और उसके थक्के की मोटाई 1 सेंटीमीटर से अधिक है, या मस्तिष्क में जो खिसकाव है अपनी जगह से 5 मिलीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर से अधिक है, तो मरीज किसी भी स्थिति में हो, होश में हो या बेहोश हो या सिर्फ सिर में दर्द की ही शिकायत कर रहा हो, उसे ऑपरेशन करा लेना चाहिए, अन्यथा उसकी स्थिति काफ़ी तेज़ी से बिगड़ सकती है। और ऐसे में ऑपरेशन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन यथाशीघ्र करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और भविष्य की बहुत सारी परेशानियों से।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और इसी के साथ आज का वंदनवार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 होने को है और आइए आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम।

इस झरोखा के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 219। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला गजतत वाद्य। इस कार्यक्रम का भाग 3 आज आप सुनेंगे कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारूबाला खरे की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:00 और 7:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और इसी के तुरंत बाद 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2:00 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात 9:30 पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनेंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस से अमरकांत दुबे की बातचीत का भाग 2 सुबह 10:00। विविधा के अंतर्गत आज दिन में 11:00 सुनिए निर्देशक राज खोसला पर आधारित शोध और आलेख स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दिन में 12:00 सुनिए हिंदी समाचार और 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। कमेंट्स के साथ फेसबुक पर तय कीजिए सुरीला सफर। दिन में 1:00, दिन में 2:15 पर दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर और मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3:00। पर सुनिए नाट्य तरंग में नाटक अभिशप्त गांधार का भाग 2, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम दिन में 4:00। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 3 हम आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छायागीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:00, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:00 सुनिए हिंदी में समाचार और शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। संध्या रंजन में सुनिए चित्रपट संगीत। संगीत सरिता शाम में 6:45 पर आप सुनेंगे, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। विशेष जयमाला आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र दीवान रंजित रॉय, लेफ्टिनेंट कर्नल, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। हवा महल के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटिका कागज के जेवर, लेखन अभिलाष का, निर्देशन पुरुषोत्तम दार्भेकर का। रात्रि के चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा 8:15।

मिनट 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि का छायागीत कार्यक्रम होगा 10 बजे। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 बजे सुनिए ढलती जायरात और रात 11 बजे विविधा। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। और अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 219।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

बक्शीराज गरुड़ काक भुशुंडी से ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुके हैं। भगवान शिव गरुड़ काक भुशुंडी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान धूर्त व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, नहीं उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी नहीं सुनानी चाहिए। इसे सुनने के अधिकारी वे होते हैं जिनकी गुरु चरणों में प्रीति होती है और जो नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म मरण की व्याधि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरद्वाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, कहा, शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है।

0: कृपा मम गत संदेहा राम चरण उपजे नवनेहा।
1: अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है।

अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। इस सभा में सुबह 10 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित कार्यक्रम फुलवाड़ी आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। हेलो जिंदगी, ये कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 11:00। दिन के 12:00 आप सुनेंगे सखी बहिन कार्यक्रम, दिन के 12:30 पर मैथिली नाटक नवीना। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे दिन के 1:10 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुनेंगे दिन के 1:15 पर और दोपहर 2:10 पर हम आपको सुनवाएंगे रोजगार समाचार।

दोपहर 2 बजे एक बार फिर से आप फिल्म संगीत कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। दोपहर 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे विद्यापति गीत, गैर फिल्मी गजल या गीत आप सुनेंगे संध्या 5 बजे, और संध्या 5:40 पर फिल्मी गजल या गीत आपको हम सुनवाएंगे। विद्यापति गीत आप सुनेंगे संध्या 6:10 पर। संध्या 6:30 पर ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम गुनगुनाए मन खेती गृहस्थी। यह कार्यक्रम का प्रसारण समय है संध्या 7 बजे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 7:52 पर। और खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। पुनः फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। और दिल्ली केंद्र से रिले रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्रीय मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को है। अब समाचार होंगे।

0: वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भूले बिसरे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर के शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहर धर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक

आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। और गायक कलाकार भरत लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला
1: के कुछ सदाबहार गीत जो आज भी दिलों में वही मिठास और अपनापन जगाते हैं।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला सुनिहार, समस्त श्रोता लोकनि के आशीषक नमस्कार।
1: और कार्यक्रम में मैं हूँ उपस्थित संगीता। सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आशीष को सस्नेह नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: अब कार्यक्रम में हम सुविचार शामिल करें आशीष, और ये सुविचार है डॉक्टर APJ कलाम का। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, असल में खुद मेहनत करके अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। ये सुविचार है डॉक्टर APJ कलाम का, और यह कितना सामयिक है ये तो हम सभी ही जानते हैं कि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वह उस वक्त स्वतंत्र होता है। धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है और धीरे धीरे जब उसके व्यक्तित्व में आकार प्रकार आता है, तो वो अपने कर्म से, अपने हाथों से अपनी किस्मत को स्वयं लिखता है। और यही वजह है कि हम कर्म से महान बनते हैं, जन्म से महान नहीं बनते।
0: निश्चित तौर पर केकरो ई नहीं कहल जाते जो ना हमरा सब दिस अगर किछ एकटा कहावतो अछि कि जे पुरुख के जे भाग छन से पत्ता तोड़ में कखनो पत्ता उड़ जात, ई कतौ न कतौ इएह गप के सटीकता ई बतबैत अछि कि हमर अहाँ के जे भाग अछि ओ पत्ता उड़बै के लेल हमर अहाँ के कर्म करनाइ जरूरी अछि। कर्म करी ताकि हवा के एहन झोंका आबै कि ओ पत्ता उड़ जाए और भाग जे छै से पलट जाए। ताहि के लेल हरदम प्रयत्न करैत रहबाक अछि। प्रयत्न करैत रहब तखन अहाँ सफल हेबे करब, और सफल होयब तऽ बहुत आदमी एहन होइ छथि जे सफल भऽ कऽ इतिहासमे सेहो नाम करै छथि, और कार्यक्रममे सेहो आइके दिन इतिहासमे क्या महत्वपूर्ण अछि ताहि पर चर्चा कऽ ली।
1: आइ 14 जून
0: आइके दिन 1901 में पहिल बेर गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन भेल छल।
1: और इसके अलावे भी जो

0: जून है वो
1: बहुत महत्वपूर्ण है। और 2004 में पंचशील सिद्धांत के 50वां वर्षगांठ पर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित भेल छल। और 2007 में चीन के गोबी रेगिस्तान में पक्षीनुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म भेटल छल।
0: अच्छा, इसके अलावे और भी कुछ खास है 14 जून
1: और राजस्थान के बांसवाड़ा में 2008 में बांसवाड़ा जिला में 96 मेट्रिक टन सोना के खान के पता चलल छल आइए के दिन।
0: आशीष, आज के दिन को पूरी दुनिया विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मना रही है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ही है रक्तदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता देना। और हम सभी जानते हैं कि यह जीवन रक्षक खून है जो हमारी धमनियों में दौड़ता है और जब कोई भी व्यक्ति संकट में आ जाता है तो यही हमारा जो दान है वह उसके जीवन को फिर बचा लेता है। इसके अलावे अगर हम 14 जून की अन्य घटनाओं पर नज़र डालें तो 1777 में अमेरिकी कांग्रेस ने 13 लाल और सफ़ेद धारियों वाले नए राष्ट्रीय झंडे के स्वरूप को मंजूरी दी थी। 1945 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वावेल ने भारत के शीर्ष नेताओं को जेल से रिहा करने की बैठक की इच्छा जाहिर की। 1999 में थाबो मबेकी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए थे। 14 जून में कुछ प्रमुख व्यक्तित्व का जो जन्म हुआ था, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का जन्म, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून को ही हुआ था। चे गुवेरा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता का जन्म भी 14 जून को हुआ है। और के आसिफ मुगले आजम जैसी कालजयी भारतीय फिल्म के निर्देशक का जन्म 14 जून को ही हुआ था। तो ये थी 14 जून की कुछ संक्षिप्त जानकारी। देश और दुनिया में 14 जून क्यों है खास, और अब कार्यक्रम में समय हो चला है कि हम अपने श्रोताओं को मैथिली सुगम संगीत का आनंद लें दें और सुनवाते हैं

0: बटो ही नहीं जा रे गांव, ये गीत हम सुन रहे थे।
1: भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं शुभाव फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की।
0: हालचाल बदायूं की रचना आशीष कुमार सिंह से।
2: धन्यवाद संगीता जी। आजुक सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि पर आधारित हालचालक संग हम आशीष। सहरसा के निवासी सबके अगला वर्ष सँ पेयजल आपूर्ति के लाभ भेट लगतन। एक लेल 127.45 करोड़ रुपया के जलापूर्ति परियोजना के प्रशासनिक स्वीकृति भेट चुकल अछि। एहि योजना के अंतर्गत 17,454 घर के शुद्ध पानि भेटत। सुपौल में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीर परिवार सहायता योजना 2025 के जागरूकता कार्यक्रम चलाओल गेल। ई योजना सैनिक सबके हुनक परिवार के निःशुल्क विधिक सहायता सलाह आ समर्थन प्रदान करे के उद्देश्य से शुरू कयल गेल अछि। किशनपुर के तुलापट्टी पंचायत में एक दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम किशनपुर के तुलापट्टी पंचायत में एक दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। डॉक्टर दिलीप कुमार बकरी पालन के लाभकारी पहलू सब के संगे संगे आधुनिक तकनीक, संतुलित आहार आ रोग सब के रोकथाम के उपाय सब के जानकारी दलत। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती जिससे आय मध निषेध सिपाही कक्षपाल आ चलंत दस्ता सिपाही पदक लेल आयोजित लेखित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुई वाला अभ्यर्थी सबके सुविधा के ध्यान में रखैत पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल के दिस से आई 14 जून के मंडल के विभिन्न स्टेशन से पटना के लेल परीक्षा विशेष ट्रेन के परिचालन कयल गेल अछि। ई परीक्षा आई 14 जून के दूटा पाली में आयोजित कयल जा रहल अछि। समस्तीपुर मंडल के क्षेत्राधिकार अंतर्गत

0: परीक्षा केंद्र मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और सुपौल जिला में निर्धारित कयल गेल अछि। बहुत पैघ संख्या में परीक्षार्थी सबके आवागमन के संभावना के देखैत रेलवे के दिस से विशेष ट्रेन के परिचालन के निर्णय लेल गेल। परीक्षार्थी सबके सुविधा के देखैत विशेष ट्रेन सबके परिचालन कयल जा रहल अछि। जयनगर के बैरा पंचायत में कृषि जन कल्याण चौपाल के आयोजन कयल गेल। किसान सबके रासायनिक उर्वरक के कम उपयोग आ जैविक खाद के प्रयोग के लेल प्रेरित कयल गेलन। विशेषज्ञ सब चेतावनी देलथि कि बेसी रासायनिक उर्वरक से मिट्टी बंजर भ रहल अछि। बिहार में 31 जगह पर सरकार वर्ल्ड क्लास आधुनिक बस अड्डा बनबे जा रहल अछि। एहिमे पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा जेहन पैघ शहर के संगे संगे मोकामा, भदौनी, तारापुर जेहन छोट नगर सब सेहो विकसित कयल जायत। ई बस पड़ाव सब पर शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स से लऽ कर कैफेटेरिया, एसी और नॉन एसी वेटिंग हॉल, ईवी चार्जिंग के संगे संगे सबटा आधुनिक सुविधा रहत। ई आधुनिक बस अड्डा 5 मंजिल बनाओल जायत। सीतामढ़ी जिला में बिहार शिक्षा परियोजना के मसाल 2024 कार्यक्रम से संबंधित डीसी बिल जमा नहीं करे वाला विद्यालय और कम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर सब के अंतिम अवसर दिल गेलन है। एसएसएस डीपीओ इस संबंध में विद्यालय सब के अंतिम स्मार्ट पत्र जारी करते स्पष्ट कलत कि बहुत बेर पत्राचार स्मरण पत्र पठबे के बावजूद अधिकांश विद्यालय सब सीआरसी दिस से अखन धरि डीसी बिल उपलब्ध नहीं कराओल गेल अछि। सबटा प्रधानाध्यापक आ सीआरसी संचालक सब के 16 जून के यानी परसु धरि 11:30 बजे से 3 बजे धरि जिला शिक्षा भवन डुमरा स्थित स्तरीय कार्यालय में मसाल 2024 के डीसी बिल जमा केनाय अनिवार्य कयल गेल अछि। अपने सब सुन रहल छी हाल चाल।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक। इसकी धुन बनाई है।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: अपने सब सुन रहल छी हाल चाल। केंद्रीय चयन पार्षद के तत्वाधान में मद्य निषेध सिपाही, गृह विभाग, कारा कक्षपाल आ परिवहन विभाग में चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा 14 आ 17 जून के दरभंगा शहर के 24 केंद्र पर आयोजित कयल जायत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कला विज्ञान आ वाणिज्य के सत्र 2025-27 के द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा 22 जून से शुरू होयत। 3 जुलाई धरि 2 पाली में परीक्षा का आयोजन कयल जायत। परीक्षा केंद्र जिलावार बनाओल गेल अछि। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीएड एनएसएस इकाई आ स्वास्थ्य केंद्र के दिस से 15 जून के रक्तदान शिविर का आयोजन कयल जायत। सबटा रक्तदाता सबके डोनर कार्ड और प्रमाण पत्र देल जतन। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत और नाट्य विभाग के कार्यशाला में प्रतिभागी सब 16 जून के नाटक कफन के मंचन करता। प्रशिक्षक कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में प्रतिभागी रंगमंचीय पक्ष सब पर काज कर रहल छथि। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बिरौली समस्तीपुर में कक्षा 11 के विज्ञान आ कला संकाय में बचल सीट सबके में प्रवेशक लेल आवेदन के प्रक्रिया 15 से 25 जून धरि शुरू रहत। छात्र सब 25 जून धरि आवेदन पत्र अपन जमा कर सकै छथि। मोरबा प्रखंड क्षेत्र में भीषण गर्मी के वजह से आंगनवाड़ी केंद्र सब पर उपस्थिति बहुत कम भ गेल अछि। गर्मी के चपेट में अबै से छोट छोट बच्चा सब बीमार भ रहल छथि। एहि कारणे हुनक परिजन सब हुनका केंद्र पर पठबै से परहेज कऽ रहल छथिन। परिजन सबके कहनाई छनि कि भीषण गर्मी के कारण

0: पैघ बच्चा सबके स्कूल बंद कऽ देल गेल अछि, मुदा छोट छोट ननिहाल सबके गर्मी मे सेहत पर असर पड़ि रहल छनि। केंद्र सबके संचालन भोरे 7 से 11 बजे धरि भऽ रहल अछि, मुदा बच्चा सबके सेहत पर गर्मी के असर पड़ला के कारणे बच्चा सब लगातार बीमार भऽ रहल छथि। एहिसँ एहि केंद्र सब पर बच्चा सब जाहिसँ कतरा रहल छथि। सहरसा में जिलाधिकारी दीपेश कुमार के अध्यक्षता में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार लेल बैसार भेल। बैसार में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के उपयोग के बढ़ावा दे पर जोर देल गेल। सुपौल में कोसी बराज के क्षमता के भौतिक सत्यापन जल्दी कैल जाए। जल संसाधन विभाग कुशा त्रासदी पर चर्चा करैत एहि के रिपोर्ट के देखैत वीरपुर बराजक क्षमता के आकलन के निर्देश दलत। घोंघडिया में हाल के अग्निकांड सब के देखैत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत करे के लेल विशेष निरीक्षण अभियान चलाओल गेल। अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी के नेतृत्व में अस्पताल, होटल आ नर्सिंग होम सब के निरीक्षण कैल गेल। सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग बिना मान्यता बा मान्यता समाप्त भ गेल निजी विद्यालय सब के जाँच करतत। सबटा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सब के कार्रवाई तेज करे के लेल निर्देश देल गेलन हैं। सीतामढ़ी जिला में 8 केंद्र पर आई केंद्रीय चयन पार्षद के सिपाही भर्ती के लेल लिखित परीक्षा है। कदाचार मुक्त परीक्षा करबे के लेल पुलिस बल के तैनाती कैल गेल अछि। एहि संग सम्पन्न होइत अछि आजुक हाल चाल।
1: इरफानी के बोल रोशन का संगीत।
2: अरे हमार बाबू जी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: और अब हालचाल के बाद एक बार कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को दे दे मौसम का हालचाल। मौसम का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक अगले 12 से 18 घंटे के भीतर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान सहित कई राज्यों में तेज बारिश और तूफान की आशंका। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चलने की संभावना और स्थानीय तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। तो मौसम की एक संक्षिप्त जानकारी थी और आशीष आज विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में आज का जो दिन है उसको मनाया जा रहा है। हम इसी पर बात कर रहे थे कि रक्त जो हमारी धमनियों में बहता है जिसके बगैर शरीर का कोई भी जो हमारा अंग है वो कार्य नहीं कर पाएगा। अगर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत पड़ जाती है और हम उस वक्त उसे रक्त देते हैं तो वो उसके जीवन को सुरक्षित कर देता है और इसी के कारण इसे जीवन रक्षा दान माना जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और रक्तदाताओं के सुरक्षित जीवन रक्षण, रक्त के दान को करने के लिए प्रोत्साहन और आभार व्यक्त करना है। रक्तदाता से रक्त प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक, अपरिवर्तित रक्त के रूप में सीधे सिरा से ज्यादातर रक्त ले लिया जाना। आमतौर पर इस रक्त को अलग अलग भागों में ज्यादातर लाल रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा में विभाजित किया जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को केवल एक घटक विशेष की जरूरत होती है जिसे हम एक यूनिट कहते हैं। अन्य तरीका दाता से रक्त लेने का है। इसमें एक अपकेंद्रित या एक फिल्टर का उपयोग

0: कर अलग कर उसे वांछित हिस्सों को में संचित कर लिया जाना और बाकी दाता को वापस दे दिया जाना। यह प्रक्रिया ऑफेरेसिस कहलाती है। अक्सर यह काम इसके लिए विशेष रूप से तैयार मशीनों के जरिए की जाती है। और ऐसे समूह जानते हैं कि रक्तदान महादान है, जिसके जरिए हम दूसरों के जीवन को दान दे देते हैं। अतः ऐसा भ्रम जिसके द्वारा लोग रक्तदान करने से डरते हैं कि हम अगर रक्तदान करेंगे तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, पूर्णतः मिथ्या है। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि जब हम रक्त का दान करते हैं तो हमारे रक्त का जो संचार है वह और अच्छी तरीके से गति से चलने लगता है। तो ये जो मिथक है हमारा कि हम खून नहीं देंगे क्योंकि खून की कमी हमारे शरीर को भी प्रभावित कर जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। और हमेशा कम से कम वर्ष में एक बार रक्त का दान जरूर करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी उसके स्वास्थ्य से जनित समस्या से बचाएं, या कहें तो उसे जीवन दान दें।
1: निश्चित तौर पर, और आई के दिन जे विश्व रक्तदाता दिवस है, एकर अगर उद्देश्य वह है कि रक्तदान के प्रति लोग सबके में जागरूकता बढ़ेनाई, सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पाद सबके उपलब्धता सुनिश्चित करेनाई और संगे रक्तदाता सबके सम्मान देनाई। 14 जून के दिन एहि द्वारा चुनल गेल छल क्योंकि यह आइए के दिन रक्त समूह के खोज करे वाला नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंस स्टीनर के जन्म भेल छलन। उनके देखैत आइ के दिन ई दिवस मनाओल जाइत अछि। कोनो दुर्घटना हुए, जेना कि अखन अहाँके संगीता जी चर्चा करै छलथि कि कोनो दुर्घटना हुए, सर्जरी हुए, प्रसव हुए या थैलेसीमिया जेहन रोगमे रोगी सबके तुरंत रक्त के आवश्यकता होइ छनि। एकटा यूनिट रक्त 3 लोग के जान बचा सकै छनि और रक्त के कृत्रिम रूप से नहीं बनायल जा सकैत अछि। एहि के लेल स्वस्थ लोग सब के रक्तदान केनाइ एकमात्र स्रोत अछि। ताहि द्वारा हमर अहाँ के जिम्मेदारी बनैत अछि, खास कऽ के 18 से 65 वर्ष तक के आयु के कोनो स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीना में अपन रक्तदान कऽ सकै छथि। रक्तदान सुरक्षित अछि और एहिसँ शरीर के लाभ होइत अछि, से हम सब अखन चर्चो करैत रही। ताहि द्वारा ई एकटा एहन दान अछि जाहिमे दाता के किछु जाइत नहि अछि, लेकिन लै वला के नबका जीवन भेट जाइ छै।
0: तो ये बहुत बड़ा दान है और हम अवश्य करें यदि हम स्वस्थ हैं। और यदि हम स्वस्थ रहना भी चाहते हैं तो जैसा आशीष अभी आप बता रहे थे कि 3 महीने में ही एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। हमने तो कहा कि 1 वर्ष में रक्तदान होना है, तो ऐसे में रक्तदान जरूर करें। और अब आज रविवार है तो रविवार को, हर रविवार को हम लेते हैं एक हमारी खास कार्यक्रम के तहत एक सोपान को, जिसे हम कहते हैं गत सप्ताह की प्रमुख गतिविधियां।
1: गत सप्ताह के लोग उपस्थित संगीता जी,
0: धन्यवाद।
1: सप्ताह भर के की सब गतिविधि भेल?
0: धन्यवाद आशीष। गत रविवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी से 2026 के पुनः परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा 21 जून को होनी है। अभ्यर्थी अब नीट यूजी 2026 के लिए आवंटित परीक्षा देख सकते हैं। री एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में दोपहर 2 से शाम 5:15 तक 551 शहरों में होगी। गत रविवार को पथ निर्माण विभाग के सचिव के साइट निरीक्षण के पश्चात बिहार में गंगा नदी पर बने अब तक के सबसे लंबे पुल, जिसकी लंबाई 9.75 किलोमीटर है, का शुभारंभ अगले महीने से तय हुआ। ये इसका लक्ष्य है कि इसे अगले महीने में पूरा करके बारिश आरंभ होने से पूर्व राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों के आवागमन में आसानी प्रदान किया जा सके। चंपारण के पंजीयरवा सुगौली प्रखंड के मूल निवासी व देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में भारत के

अगले 3 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे वे पूर्व IAS परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष होंगे। गत शनिवार को इसकी घोषणा की गई। वे पूर्व थल सेनाध्यक्ष श्री उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे अगले इस महीने के 30 जून को। गत शनिवार 13 जून को असम में वायुसेना का AN-32 प्लेन क्रैश होने के कारण 5 जवान शहीद हो गए। इस हादसे के बाद वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। यह विमान लैंडिंग के वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। इस हादसे में बिहार का लाल अग्निवीर दानिश भी शहीद हुआ। ईरान युद्ध को गत सोमवार को 100 दिन पूरे हुए। अमेरिका इसराइल और ईरान के बीच यह युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ। ये इस जंग का असर दुनिया की रसोई, पेट्रोल, शेयर बाजार, हवाई यात्रा और समुद्री ट्रेड तक पहुंच चुका है। इसका सबसे बड़ा असर व्यक्त हो रहा है इस वक्त समुद्री मार्ग हॉर्मुज पर। युद्ध से पहले यहां हर रोज लगभग 100 जहाज गुजरते थे। इसके बाद अब इसकी संख्या घटकर महज 7 रह गई है। यहां से तेल कारोबार लगभग 20% हिस्सा ही गुजर रहा है। इस बाधा से 144 देशों में पेट्रोल, डीजल व गैस महंगे हुए और महंगाई बढ़ गई है। मौसम विभाग IMD के अनुसार मॉनसून सीजन में अल नीनो के प्रभाव की आशंका जताई गई। गत सप्ताह इस आशंका के कारण किसानों और फसलों को लेकर काफी चिंता बढ़ गई। गत सप्ताह 13 जून को भारत मौसम विभाग IMD ने जारी की मौसम अपडेट की जानकारी और इस समाचार के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून देश के कई हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान सहित कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। बिहार के कई जिलों में मॉनसून ने लगभग दस्तक दे दी है। वहीं बिहार के कई जिले इस वक्त तेज तपिश से गुजर रहे हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी आ चुकी है। भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या CEO के द्वारा हरी झंडी मिलने के पश्चात बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज से उनकी पुनः वापसी हो गई, क्योंकि उनकी मांसपेशियों में इस वक्त भी खिंचाव के कारण ये फैसला लिया गया। गत सप्ताह 11 जून यानी गुरुवार को गृहिणियों को लेकर उनको हाउस मेकर की संज्ञा दी और यह ऐतिहासिक फैसला गृहिणियों को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। उन्हें कहा गया कि वो केवल घर नहीं संभालती बल्कि राष्ट्र निर्माता है। सड़क हादसे में गृहिणी की मृत्यु होने पर उनके द्वारा किए जाने वाले घरेलू कामकाज और देखभाल के लिए न्यूनतम आर्थिक मूल्य प्रति माह 30,000 रुपये जारी किया गया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति NK सिंह ने गत सप्ताह इसकी जानकारी दी। 10 जून 2026 को यानी गत सप्ताह भारत के प्रधानमंत्री देश में लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में शामिल हुए। इस दिन उन्होंने 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा किया और यह अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल जिसे पूर्व देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था का रिकॉर्ड तोड़ा। गत मंगलवार को 9 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूरोप की कूटनीतिक यात्रा पर पुनः रवाना हुए, जहां से वे फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। गत सप्ताह 9 जून को विलियमसन द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा से खेल प्रेमियों में मायूसी छा गई। गत सप्ताह पेट्रोल, डीजल और ईंधन की कमी और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने थोक में डीजल पेट्रोल पर रोक लगा दी। ये थे गत सप्ताह

ये जो गाना था लगभग वही है कि अगर इंसान चाहे तो वो अपने को सिर्फ एक पंछी के रूप में कल्पना करे और वो करे जिसकी वाकई ज़रूरत है। एक पक्षी जिस तरीके से स्वतंत्र आकाश में उड़ता है और निर्विघ्न बाधाओं को तय करते हुए आगे बढ़ता है।

0: संस्कृति जब हम अपने मस्तिष्क को कुंठित कर लेते हैं तो कुंठित मस्तिष्क हमेशा हमारे स्वतंत्र विचार को रोक देता है और हम कहते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो तलवार से तो कार्यक्रम में इस वक्त हम समसामयिक जानकारी भी ले लें।
1: लेकिन अपने अगर के जना मानसून का चर्चा करते रही, बरखा का चर्चा करते रही गतिविधियां में, तो एक चिंता के विषय सेहो अछि कि पश्चिमी विक्षोभ जे अछि से पूर्वा के रफ्तार कम पड़ला से कमजोर पड़ चुकल अछि मानसून, और एखन धरि बाढ़ अवधि के शुरू भऽ चुकल अछि, मुदा 28 नदी एखनो धरि सूखल अछि। तो ई एकटा डरावना संदेश अछि। और गप करी तो मैथिली भोजपुरी सहित क्षेत्रीय भाषा सब ठनका के अलर्ट भेट लागत। प्रदेश के जे आप बस पड़ोस सब अछि दिल्ली और मुंबई सनक नजर आयत, ते के लेल काज शुरू कऽ देल गेल अछि। राज्य भर में अगर किछ गप करी तो एखन धरि जनरल धीरज सेठ हेतत नवका सेनाध्यक्ष नियुक्ति भ रहल अछि। आब रेलवे भर्ती परीक्षा अपने करौत, इहो एकटा किछ नव समाचार, नव जानकारी
0: सबके
1: बारे में छलै। और जना एखन चर्चा करैत रही कि जानकारी जरूरी छै, जानकारी अहाँके किछ दिमाग के तेज करैत अछि, और जानकारी तखने रहत जखन अहाँके किछ लिखनाइ और पढ़नाइ आयत। लिखनाइ पढ़नाइ अयला से अहाँ लोक सबके जोड़ सकै छी,
0: अपनी जानकारी से आप दूसरों को भी जानकार बना देते हैं, और यही वजह है कि मानसिक बल जो है वो शारीरिक बल से कहीं ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। हम हमेशा गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता पढ़ते आए हैं, राजा बैठे सिंहासन पर यह ताजों पर आसीन कलम, जो इतिहास बदल देती है वह मेरा स्वाधीन कलम। ये कविता उन्होंने लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। यानी कलम हमेशा अधिक ताकतवर होता है शारीरिक बल या हिंसा की तुलना में। और गोपाल सिंह नेपाली की ये जो लोकप्रिय कविता थी, ये उद्वेलित कर रही थी उस वक्त क्रांतिकारियों को, ताकि क्रांतिकारियों में जन जागरण और स्वदेश प्रेम पनपे, और उनका जो स्वदेश प्रेम था वह किसी भी तरीके से मंद नहीं पड़े, ताकि स्वाधीनता के प्रति जो उनका जोश था वो लगातार रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो देशवासी हैं वो स्वाधीनता के लिए अपनी कोशिश लगाएं। तो हम हमेशा कहते हैं कि कलम किसी की गुलाम नहीं होती, वो अपनी मर्जी से चलती है, और दुनिया के बड़े से बड़े सच को कलम सामने लाती है, जिससे बड़ा से बड़ा बदलाव आता है। यानी कलम में ही वो ताकत है जो समाज के बड़े से बड़े परिवर्तन को लाती है, और जिसे समाज अंततः गत्वा स्वीकार करती है। यह कलम ही है जो बड़ी से बड़ी क्रांति का आधार रही है, और बड़े से बड़े ताकतवर सत्ता को एक झटके में पटकती है, और इस बदलाव से हर महत्वपूर्ण अवसर को प्राप्त किया है।
1: निश्चित तौर पर जना कि अपने कहलो की सत्ता के लेल अगर तलवार के बल पर अगर सत्ता ले छी, तो ई अस्थायी होइत अछि। जेहन जेहन अहाँके शासक जे सत्ता ले छथि कमजोर पड़ै छथि, हुनकर सत्ता सेहो समाप्त भऽ जाइ छथि। मुदा इतिहास गवाह रहल अछि कि अत्याचारी शासक तलवार के बल पर जे टिकै छथि, ओ जनता के बीच में कखनो जगह नहि बना पबै छथि।
0: चाहे वो सैन्य तंत्र हो या फिर तानाशाह, तो हर ताकतवर से एक बड़ा ताकतवर हो जाता है। ये समय चाहे बहुत पूर्व काल का हो या मध्यकाल का हो या आधुनिक काल का, हर बड़े ताकतवर का एक बड़ा मालिक उससे भी बड़ा ताकतवर आ जाता है। अतः ताकत से कुछ भी नहीं होता, ताकत लोगों के समूह में है, और इस समूह को तैयार करता है हमारा जो दार्शनिक है, हमारे जो कवि हैं, हमारे जो लेखक हैं, जिनके लेखनी में, जिनकी वाणी में बहुत जोश होता है, जो संगठित करते हैं समाज को और उन्हें उद्वेलित करते हैं बदलाव के लिए, और यही बदलाव बड़े से बड़े

0: समय को फिर से वापस अच्छे समय में वापस लाते हैं।
1: निश्चित तौर पर तलवार घायल कर सकती है, मुदा कलम मन समाज और इतिहास के बदल देते है। कलम विचार ज्ञान और संस्कृति के आगू बढ़ते है। गप करी महात्मा गांधी के, स्वामी विवेकानंद के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, सब जतेक महापुरुष छले से तलवार नहीं उठेलत, मुदा अपन लेखनी और विचार से पूरा देश के जागृत कर देने छलत।
0: और हर बड़े से बड़े बदलाव के लिए हम हमेशा, चाहे आरंभ काल से हम देखें, हर बड़े से बड़े बदलाव में या तो कभी चाणक्य रहे या कभी बिस्मार्क रहे, या फिर जो कूटनीतिक आधार है स्वामी हमारे बहुत सारे लोगों का, उनका बल रहा है। तो आशीष,
1: निश्चित
0: बातों ही बातों में बहुत आगे बढ़ गए हैं,
1: लेकिन एखनो किछ समय अछि हमरा सबके, किछे कि हम सब गप के किछे समेटी अपन। तो आइ के युग में जे छे, आइ के युग के अगर दृष्टि से देखी तो तलवार के जगह बंदूक और मिसाइल लौ चुकल अछि, मुदा कलम के जगह इंटरनेट, अखबार, अहाँ के किताब सब और सोशल मीडिया लौ चुकल अछि। एकटा लेख, एकटा पोस्ट या एकटा किताब लाखों लोग के सोच बदल सकते थे। शिक्षा, विज्ञान और लोकतंत्र के नींव कलमे से राखल जा सकते थे। हमर सब के जे चर्चा एखन हम सब करते रही, तो कतौ न कतौ अगर हम सब कलम के दिशा में आगू बढ़ी तो हम सब समाज के बदल सके छी।
0: और देखिए कि ये कलम केवल कलम से नहीं है अभिप्राय, इस कलम में हमारी कविता होती है, इस कलम में हमारा संगीत है, इस कलम में हमारा चित्र है, इस कलम में कार्टून है, इसी कलम में लेखनी है, लेख हैं, बड़े बड़े लेख हैं, इसी कलम के द्वारा बड़े बड़े उपन्यास लिखे जाते हैं, बड़े से बड़े फिल्म बनकर आते हैं जो समाज को एक नई राह यानी रहनुमा बनकर प्रदर्शित होते हैं और उन्हें आगे लेकर चलते हैं, ताकि वो उस विषय पर ध्यान दें और उस विषय पर उनका ध्यान केंद्रित किया जाए।
1: और कार्यक्रम में सेहो ध्यान
0: केंद्रित कर रहे हैं संगीत पर, क्योंकि संगीत भी बहुत बड़े बदलाव का संकेत है।

0: आप समय विदा लेकर लेते हैं।
1: का संकेत है, इसलिए बरखा रानी का ये जो गीत है कि जम कर बरसो, यानी आने वाली है अगर बारिश तो जम के बरसनी चाहिए।
0: निश्चित तौर पर रात भर हम सब ठनकत रही है मेघ, मुदा बरखा नहीं भर रहा है। हाँ, चाहे छी कि जतेक जेसी बेसी आवे
1: कि बारिश आए और लोगों को राहत मिले गर्मी से। और अब इसी शुभ संदेश के साथ हम कार्यक्रम से इजाजत लें। नमस्कार।
0: नमस्कार।

नमस्कार मिथिला, अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकती है, बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481। हमारा दूसरा नंबर होगा 9403 9 3 3। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें, आज ही रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे।

0: फूल प्रकृति में घोराए लगैत अछि। ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तबुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तऽ खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तऽ हमरा लोकनि खायब की?
3: मामा बने जाने
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: जिंदगी है तो है समस्याएं, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलू जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलू जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
4: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत किसी में नहीं।
4: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: सिलेंडर मुफ्त बिजली योजना जोड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुँचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। इससे हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 अर्थात 1296 kHz और न्यूज़ॉन AIR ऐप पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजे
2: ये है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, थोड़ी ही देर में आप
1: हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के,
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे
6: दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते हैं। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते हैं। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंडल जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित में जाएं।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा दिशा में प्रगति की है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों की।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
6: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला

0: अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार की विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायु सेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने अचले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देश बंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमा मौसमियात IMD के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जुनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जुनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म होने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आब नए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और खवातीन के ICC G20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस में अपने कयाम के दौरान वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे और आइंदा G7 समिट से कबल वो सदर मैक्रों के साथ बाहमी तआवुन के अहम शोबों और आलमी उमूर पर दोतरफा बातचीत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम स्लोवाकिया का दौरा करेंगे जहां वो स्लोवाक क़यादत के साथ दोतरफा मीटिंगें करेंगे। कल मारूफ होटल नीक्रेस्को में मुनक़िदा एक कम्युनिटी इस्तक़बालिया तकरीब में भारतीय बिरादरी की बड़ी तादाद ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तक़बाल किया। वजीर आजम मोदी ने भारतीय बिरादरी के अफराद से पुरजोश अंदाज में खुशगवार मुलाकात की और रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से महजूज हुए। इन प्रोग्रामों में भारतीय क्लासिकी रक्स की मुख्तलिफ शक्लें जिनमें कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम शामिल हैं पेश की गईं। ये रक्स फ्रांसीसी और इतालवी फनकारों ने पेश किए। ये पुरजोश इस्तकबालिया भारत और फ्रांस के दरमियान मजबूत सकाफती और अवामी रवाबित की अक्कासी करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ नीस में पैलेस देस एक ऑडिशन में भारत इनोवेट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत के स्टार्टअप और इख्तराई इको निज़ाम को उजागर किया जाएगा जहाँ तकरीबन 120 स्टार्टअप आलमी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी कायदीन के सामने अपनी इख्तराआत पेश करेंगे। तकरीब के बाद वजीर आजम मोदी और सदर मैक्रों विला कैरलोस में दो तरफा बातचीत करेंगे। ये इस साल भारत और फ्रांस के ताल्लुकात को खुसूसी आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी की सतह तक बढ़ाने के बाद पहली मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दफा, टेक्नोलॉजी, तजारत और इख्तरा के शोबों में ताउन के अलावा अहम इलाकाई और आलमी हालात वाक़ियात पर भी तबादले ख्याल किए जाने का इम्कान है। इसके बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत स्लोवाकिया के लिए रवाना हो जाएंगे। नीज से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
0: स्लोवाकिया में भारत की सफीर अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक और तआवुन के नए मौके फराहम करेगा और इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में भी मुआविन साबित होगा। मोहतरमा अपूर्वा श्रीवास्तव स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में आकाशवाणी के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू कर रही थीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इससे हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशन को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते फ्रांस में मुनक़िद होने वाली G7 समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق ان ملاقاتوں میں اقتصادی ترقی، سپلائی چینز، مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری میں اشتراک اور عالمی سلامتی سے متعلق

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुरमुस को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वजा मुआहदे का मुवाजना साल 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुकाम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आयतुल्ला अली खामिनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक़िद की जाएगी। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव ने आज खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के लोगों से अपील की है कि वो रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जाधव ने कहा कि अतिया किए जाने वाले खून के हर कतरे में किसी ज़रूरतमंद को सेहतयाब करने और एक ख़ानदान की खुशियों को वापस लाने की ताकत होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आगे आएं, जिम्मेदाराना तौर पर खून अतिया करें और कीमती जानों को बचाने में अपना रोल अदा करें। मर्दों के क्रिकेट में कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए 195 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने 22 ओवर्स 5 गेंदों में जीत हासिल कर ली। कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों में नॉट आउट 84 रन बनाए। शुभमन गिल को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में 17 जून को खेला जाएगा। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज बर्मिंघम में एजपेस्टन के मकाम पर ग्रुप ए के मुकाबले में भारत रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा दौरे से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोज़नामा इंकलाब की सुर्खी है, G7 ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को मिलेगी नई क़ुव्वत। तजारत, टेक्नोलॉजी, इख्तरा और आलमी उमूर समेत मुख्तलिफ मौजूआत पर तबादला ख्याल का इम्कान। फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला आर्मी चीफ मुकर्रर किए जाने की खबर को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा इंकलाब ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये किया है। अखबार लिखता है, मुस्तकबिल के दिफाई चैलेंजेस से निमटने के लिए तीनों अफवाज के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी। G7 इजलास के मौके पर अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। मुआहदा होने की सूरत में दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह करेंगे। इसरो के चेयरपर्सन वी नारायणन ने कहा है कि खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो चांद पर उतरने वाला ऐसा खलाई जहाज तैयार कर रहा है जो 200 दिन तक काम कर सकेगा। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों में जुनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जनूबी इलाकों तक पहुंचने के लिए हालात साजगार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा आज तय पा जाएगा और इसके फौरन बाद सभी के लिए आबनाए हुरमुस को खोल दिया जाएगा। और धर्मशाला में बारिश से मुतासिरा पहले एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो

0: किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
3: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
4: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
3: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
4: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
3: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ, 5,000 बच गए।
7: तो नई साड़ी ले ले?
6: ना, पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और?
6: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
7: बढ़िया,
6: जाओ भाई।
8: RBI कहता है,
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
11: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
12: हर घर सूर्य घर।
13: आकाशवाणी at 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जहानाबाद के शुभम कुमार और भोजपुर के दानिश आलम समेत 5 जवान शहीद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया शोक। नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पेड़िया पेंटिंग को मिला GI टैग। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID अनिवार्य किया। अब समाचार विस्तार से। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि इसरो ने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से चलने वाला चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर केवल 14 दिनों तक ही काम कर पाया था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला यह लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक मदद मिलेगी। असम के जोरहाट में कल भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में बिहार के 2 जवान समेत 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। हादसे में जान गंवाने वालों में बिहार के शुभम कुमार और दानिश आलम भी शामिल हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के बनवरिया गाँव

0: निवासी थे। वहीं अग्निवीर वायु दानिश आलम भोजपुर जिले के कोयलवर प्रखंड के कायम नगर के रहने वाले थे। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की गई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश शहीदों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व के साथ याद रखेगा। उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र शहीदों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण को सदैव श्रद्धा पूर्वक स्मरण करेगा। बिहार के तीन पारंपरिक उत्पादों नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान मिलेगी। बिहार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, कलाकारों और संबंधित संस्थाओं को बधाई भी दी है। श्री चौधरी ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल और ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य की लोक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराएं बिहार की अमूल्य धरोहर हैं तथा GI टैग मिलने से इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण के साथ वैश्विक बाजार में नई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID बनवाना अनिवार्य कर दिया है। समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी करते हुए 30 जून तक सभी छात्रों की अपार ID तैयार करने का निर्देश दिया है। बिहार बोर्ड ने स्कूल प्रधानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी छात्रों की अपार ID बनवाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही UDIS कोड के साथ अपार ID का विवरण उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। यह कार्रवाई शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से एकीकृत और सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1,278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आज ही कृषि विभाग के कार्यक्रम में खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह वाहन राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार GST, कैशलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के GST ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में GST संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं

0: देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी हैं। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं श्रम बाजार विशेषज्ञ प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी उच्चत स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

शर्मा को केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी उच्चतर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के 19 जिलों तक मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मॉनसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
2: राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि खेल व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता और मानसिक दृढ़ता के विकास के लिए प्रभावी माध्यम है। उन्होंने पटना में खेल भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि खेल केवल एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मजबूत राष्ट्र का निर्माण भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई है। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वे इस आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
3: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा, उसका अध्ययन करेंगे। अभी हमारे पास ये जानकारी आई है, हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए, मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है उस पर बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बाल हृदय योजना के तहत कल 32 बच्चों को अहमदाबाद के लिए रवाना किया। अहमदाबाद में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों

0: का बेहतर और निःशुल्क इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बाल हृदय योजना के तहत अब तक 3,101 बच्चों का सफल इलाज कराया जा चुका है। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने कहा है कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मल्टी ट्यून हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रेशर हॉर्न और ट्यून्ड हॉर्न बजाने वाले प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव ने कहा कि इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राज्यव्यापी विशेष जांच और प्रवर्तन अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच अब तक खेले गए 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को केवल 3 मैचों में सफलता मिली है। वहीं आज एक अन्य मैच में नीदरलैंड्स का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने आईआईटी पटना की रिपोर्ट पर सुर्खी लगाई है, राज्य के 23 बड़े पुलों की स्थिति बेहद गंभीर, 10 पर चल रहा है काम। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार के विकास के लिए सभी को 20 घंटे करना होगा काम। दैनिक जागरण का शीर्षक है, आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी खबर पर लिखा है, फ्रांस से 12 समझौते संभव, रफाल के सोर्स कोड लेने पर भी होगी बात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। असम के जोरहाट में वायुसेना के विमान दुर्घटना में जहानाबाद के शुभम कुमार और भोजपुर के दानिश आलम समेत 5 जवान शहीद, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया शोक। नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को मिला GI टैग। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID अनिवार्य किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
4: बाढ़ से बचने के उपाय, आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या TV देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
5: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
6: आ गए सैलरी?
7: हाँ।
6: आ? नए झुमके?
7: ना, पहले बचत।
6: पहले झुमके।
7: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
6: लेकिन झुमकों का क्या?
7: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
8: RBI कहता है,
9: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
11: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी

0: पानी जमा ना होने दे। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, रक्तदान के माध्यम से न सिर्फ जरूरतमंद व्यक्ति की जीवन रक्षा की जा सकती है बल्कि रक्तदाता को भी इससे स्वास्थ्य संबंधी कई फायदे होते हैं। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 06272222481। हमारा दूसरा नंबर है 9430029353। कार्यक्रम हेलो जिंदगी के प्रसारण का समय याद रखें, आज ही रविवार 14 जून 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।

0: बातों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
2: नाचो रस बरसी,
0: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी

0: तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: मीडियम वेव 231.5 meters अर्थात 1296 kilohertz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण पटना केंद्र से।

अहमियत का हामिल इसलिए है कि कई बार हम देखते हैं कि मरीज को सही वक्त पर सही ब्लड ग्रुप का खून ना मिल पाने पर वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। आपको बताएं सामिन कि हर साल 14 जून को आलमी यौम अतियाए खून यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जिंदगियों की हिफाजत के लिए मनाया जाता है। इसका सबसे अहम मकसद हंगामी हालात, हादसात, कैंसर या दिगर बीमारियों में मुबतला मरीजों के लिए महफूज खून की दस्तियाबी को यकीनी बनाना है। इसका आगाज़ 2004 में WHO के ज़रिए किया गया। वैसे बातें और भी हैं, फ़िलहाल वक्त का इशारा है कि एक और गज़ल से अंजुमन को मुअत्तर किया जाए। ये समाअत करते हैं एक प्यारी सी गज़ल।

0: एक बार फिर हम हाजिर हैं अंजुमन लेकर। सामिन, आपको बताएं कि एक बोतल खून बैक वक्ती लोगों की जानें बचा सकती है। यह कहना गलत ना होगा कि इंसानी जिस्म में खून की रगें सबसे कीमती असासा हैं। इसके ज़रिए इंसानी जान बचाने को सबसे बड़ा सवाब करार दिया गया है। कहते हैं दोस्तों कि जो किसी ने एक इंसान की भी जान बचाई तो मानो उसने सारे इंसानों की जान बचाई। आपको बताएं कि खून देने वाले यानी डोनर को भी कई तरह की बीमारी होने के खतरात कम हो जाते हैं। खून का अत्याग करने के बाद जिस्म फौरन नए खून के खलियात बनाना शुरू कर देता है, जिससे जिस्म में ताजगी और तवानाई बरकरार रहती है। साथ ही वज़न में इजाफा नहीं होता, मोटापा काफ़ी हद तक आपसे दूर रहता है, क्योंकि अतिया करने से जिस्म में मौजूद इजाफी कैलोरीज कुदरती तौर पर जलती है। तो जहां आप दूसरों की जान बचाने के लिए खून का अतिया करते हैं, वहीं आपकी खुद की सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। जी हां सामीन, हमारी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इससे कबल आज की ख़ास पेशकश सेहतनामा की तरफ रुख करते हैं। समाज करते हैं नौजवानों और बच्चों में मुकम्मल गजाइत पर मबनी ये गुफ्तगू सेहतनामा।
1: सेहत और तंदुरुस्ती इंसानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। एक तंदुरुस्त तवाना शख्सियत मुल्क और कौम का बेहतरीन सरमाया है, जबकि गैर सेहतमंद इंसान की ज़िंदगी काफ़ी दुश्वारियों से भरी होती है। सेहत का दारोमदार मुतवाजन ग़िज़ा पर मुनहसर करता है। अच्छी सेहत के लिए मुतवाजन ग़िज़ा का लेना काफ़ी अहम है, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब हम इस बात से वाकिफ़ हों कि हमें किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। सामीन, इसी मालूमात में मज़ीद इजाफे के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मधु किया है पटना के जाने माने डाइटिशियन सैयद मुमताज़ करीम को। तो डॉक्टर साहब, हम अपने स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि उम्दा सेहत क्या है और इसके लिए हमें क्या इकदाम उठाने चाहिए।
2: सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। उम्दा सेहत के लिए सबसे पहले अहम जो ज़रूरी है कि आप जो ग़ज़ा ले रहे हैं वो ग़ज़ा क्या ले रहे हैं, कितने अमाउंट में आप ले रहे हैं। जैसे हमारा जो जिस्म है उस जिस्म में पानी
1: जी,
2: कार्बोहाइड्रेट
1: जी,
2: प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स है। तो उस ग़ज़ा को जो आप लेना चाह रहे हैं, क्या आपके बॉडी के लिए वो सूटेबल है या नहीं, ये देखना ज़रूरी है। अगर कोई बीमारी नहीं है, एक आम नौजवान आप हैं
1: जी,
2: तो आम नौजवान अगर है तो कितने अमाउंट में हम कौन सा चीज़ ले रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले एक BMI बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके वो निकालते हैं। अगर एग्जांपल ले, एक 22 साल का नौजवान है और उन्हें 2000 कैलोरी का रिक्वायरमेंट है। 2000 कैलोरी में अनाज कितना लेना है, प्रोटीन कितना मात्रा में लेना है, फैट कितना मात्रा में लेना है, दूध कितना लेना है।

0: हैं, इसको एक कैलकुलेशन करते हैं, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम उनको बताएंगे कि आप इतना लें, हमें चाहिए 2000 कैलोरी, तो अनाज मुझे लेना है 60 ग्राम यानी फॉर द एग्जांपल, मगर वो अनाज से ज़्यादा वो जंक फूड ले रहे हैं।
1: जी जी जी,
0: क्योंकि अभी जो उन्होंने खाया क्या उसमें वो न्यूट्रिशन है, क्या उसको लेने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, सिर्फ पेट भर गया वो उनका मकसद है।
1: जी यकीनन डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ग़िज़ा की मकदार सबसे अहम है, हम क्या खा रहे हैं ये भी काफ़ी अहम है। तो डॉक्टर साहब, नौजवानों के लिए जो प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें तो वो आपकी नज़र में क्या होगा?
0: अगर हम एक नौजवान के बारे में बात करते हैं, वो सुबह उठते हैं नॉर्मल एक गिलास वो पानी पी लें, नॉर्मल गिलास पानी पीने के बाद फ्रेश हो जाए, नट्स ले लें, नट्स लेने के बाद फिर वो एक नॉर्मल वॉकिंग करें, एक कुछ एक्सरसाइज जो होम में जो अपने घर पे भी वो कर सकते हैं वॉकिंग की शक्ल में, जैसा उनके लिए सहूलत हो, नहीं कि 3 घंटे के अंदर वो नाश्ता कर लें। क्योंकि अभी जो देखा जा रहा है एडल्टों में, खासकर लड़कियों में, वो सुबह का नाश्ता स्कीप कर देती हैं, यानी छोड़ देती हैं। उनको अभी तो लॉकडाउन चल रहा था, इसमें तो वो तो घर पे ही थी, मगर इससे पहले जो हम लोग ने देखा एक सर्वे किया था, उस सर्वे में ये देखा कि जो लड़के हैं वो या लड़कियां हों जो कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, वो क्लास की वजह से सुबह का नाश्ता छोड़ ही देती हैं। अगर इन बिटवीन अगर उन्हें कुछ ख्वाहिश होती खाने की तो बाहर का जो ओपन मार्केट में जो खुला फूड रहता है वो ले लेते हैं, तो पेट तो उनका भर जाता है मगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉलेज लाइफ में आप सुबह का ब्रेकफास्ट को स्कीप एकदम ना करें, ब्रेकफास्ट करके ही कॉलेज को अटेंड करें, अगर फिर भी जल्दी है तो ब्रेकफास्ट को कैरी करें, और डेली एक फल जो सीजनल फल होता है वो एक फल जरूर वो लें। इसी तरीके से प्रॉपर वे में वो लंच करें, इवनिंग में भी नहीं होता स्नैक्स कुछ भी ले सकते हैं, स्प्राउट्स हो गया या भुना चना वगैरह हो गया इस तरीके, और रात के खाने को थोड़ा हल्का ले। यहाँ पर क्या होता है कि लोग सुबह का नाश्ता बहुत कम अमाउंट कम मात्रा में लेते हैं और रात के खाने को काफ़ी हेवी कर देते हैं, जबकि रात के खाने को काफ़ी कम में लेना, क्योंकि रात में जो आप ले रहे हैं वो लेने से आप क्या एक रेस्ट कर रहे हैं, एक आराम ही कर रहे हैं, वहाँ पर आपका कैलोरी बर्न नहीं हो रहा है। सुबह का नाश्ता आप हेवी लेते हैं तो होल डे आपका बॉडी का क्या कैलोरी बर्न हो रहा है, आपको एनर्जी उससे जा रहा है, रात में तो सिर्फ सोने के अलावा कुछ है नहीं नॉर्मली का, मगर यहाँ हम क्या करते हैं उल्टा करते हैं, इस चीज को भी चेंज करना होगा।
1: जी हाँ जी, बहुत ही सही बात आपने कही कि बैलेंस डाइट इसमें काफी अहम रोल है, जिसमें घर के नाश्ते और घर के खाने को प्रीफर करें, एक फल जरूर लें और बाहर के खाने से बिल्कुल परहेज करें, और कोशिश करें कि कुछ वर्जिश भी हो।
0: जी,
1: तो वर्जिश में अगर आप कहेंगे तो हल्की फुल्की वर्जिश ऐसी कौन सी हो जो आज के मसरूफियत वाली जिंदगी में आसानी से कर सकते हैं?
0: वर्जिश में सबसे इजी वर्जिश नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं या स्टिचिंग वो कर सकते हैं, वो इजी वे में 10 मिनट में एंड हो जाता है और आपके घर पे ही हो जाता है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी जिम वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, बात हो रही है न्यूट्रिशन की, जिसमें बच्चों की और नौजवानों के सेहत के मुतालिक गुफ्तगू है, तो इसमें जो बैलेंस डाइट है, तो बैलेंस डाइट के लेने में इंसान कभी कभी कोताही भी कर लेता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे उस कमी को हम फुलफिल कर सकते हैं?
0: डेली उनका जो डाइट हैबिट्स है वो अगर वो प्रॉपर वे में ले रहे हैं और कभी कभी ऐसा स्कीप हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है, कभी अगर वो स्कीप हो जाता है तो वो देखें कि हमने क्या स्कीप किया। जैसे कि लोग आज की डेट में प्रोटीन बहुत लेस अमाउंट में ले रहे हैं, अनाज की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा लेते हैं मगर प्रोटीन कम लेते हैं, मगर मेरा ख्याल ये है कि जोर होना चाहिए। अगर वो प्रोटीन वाला भोजन अगर नहीं करते हैं, या अगर सपोज वो दाल दोपहर में वो जैसे आपने कहा कि अगर वो छोड़ देते स्कीप कर देते हैं, दाल उन्होंने नहीं लिया दोपहर में खाने में, दाल नहीं है तो रात में एक वो अंडा ले लें, वो भी प्रोटीन है उसमें, या फिर सत्तू दाल की रोटी ले ले उसमें भी प्रोटीन हो गया। तो इस तरह प्रोटीन वाला भोजन उनको प्रॉपर वे में उनको करते रहना चाहिए अपना, जिससे थोड़ा सा बॉडी काफ़ी मेंटेन रहता है।
1: जी डॉक्टर साहब, यूथ और बच्चे यानी हमारी नई नस्ल, इनकी सेहत हम तमाम लोगों के लिए काफ़ी अहम है, अगर बैलेंस डाइट की बात करें तो मुतवाजन ग़िज़ा, ये उनके लिए प्रॉपर क्या सजेस्ट होता है?
0: बैलेंस डाइट अर्ली मॉर्निंग से लेके रात तक, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह में अगर वो नाश्ता करते हैं, नाश्ते में वो 2 रोटी लेते हैं, 3 रोटी लेते हैं, मैं एक 22 साल के नौजवान का मैं आपको डाइट बताता हूँ, अगर 22 साल का नौजवान नाश्ते में 3 रोटी लेता है, 3 रोटी के साथ वो 150 ग्राम कर्ड्स वो ले, या 200 ml वो दूध ले लें, या एक अंडा वो ले, दूध अंडा या दही, इस 3 में से कुछ एक वो ले। इसी तरीके से दोपहर

0: खाने में एक बॉल अगर वो चावल ले रहे हैं, उस चावल के साथ वो दाल ले, सब्जी ले, सब्जी के साथ वो मट्ठे को जरूर ले, जिसको छाछ बोलते हैं, छाछ हो गया, रायता हो गया, ये इसका इंटेक जरूर करें। और साथ ही साथ दाल जो ले रहे हैं वो दाल का भी मादा को वो बढ़ाएं, वो कि दाल कम से कम लोग यूज करते हैं
1: प्रोटीन का इंटेक।
0: हाँ, रात का वो खाना ले रहे हैं तो रात के खाने में अगर सुबह में उन्होंने दही लिया है नाश्ते में तो रात में वो दूध ले लें, अगर सुबह में उन्होंने दूध लिया है तो रात में वो दही लें, यानी प्रोटीन युक्त जो बोलते हैं वो होना जरूरी है
1: जी। प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स के साथ साथ तमाम ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जो उनकी सेहत के लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी अदम मौजूदगी के बिना पर हमारा जिस्म बिल्कुल नहीफ और कमजोर हो जाएगा।
0: वो तो प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे बॉडी को मेंटेन करता है और बैलेंस रखता है। प्रोटीन ज्यादा भी जिस्म के लिए खराब भी है और कम भी है। अगर कम ले रहे हैं तो आपका जो बॉडी जिस्म है वो एक ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाएगा। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डे बाय डे वो खराब होता चला जाएगा, फिर आप माल न्यूट्रिशन में आ जाएंगे।
1: जी, माल न्यूट्रिशन की डॉक्टर साहब बात हुई तो हम आपसे इस मौजू पे भी वजाहत चाहेंगे कि माल न्यूट्रिशन असल में है क्या।
0: माल न्यूट्रिशन यानी एक नौजवान है, वो सारा कुछ खाता है फिर भी उसका ग्रोथ प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। ग्रोथ होना चाहिए ए बॉडी के हाइट के अकॉर्डिंग, जो वेट होना चाहिए वो वेट नहीं है, वो अंडर वेट है। ये जो 42-45 kg है यानी ये माल न्यूट्रिशन में है, यानी गजा तो लिया है, खाना तो खाया है, मगर उन्होंने बैलेंस डाइट नहीं लिया है, जिसकी वजह से ये माल न्यूट्रिशन में आ गए हैं।
1: जी, एडल्ट और टीनेजर में ख़ास तौर पे हमें इस तरह की कमी देखने को मिलती है कि वो अपने गजा से, अपने काम के मुनासबत से समझौता कर लेते हैं। आपने अहम जानकारी दी कि खाने के मुतालिक कोई भी समझौता ना करें और बैलेंस डाइट का जो रूल है वो फॉलो करें। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने वर्जिश की बात की और आज हमारे नौजवान वर्जिश की तरफ भी आमादा हैं, लेकिन वर्जिश के साथ साथ कुछ दवाइयों का इस्तेमाल भी वो कर लेते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह भी है। हम आपसे चाहेंगे कि आप उस पर भी कुछ रोशनी डालें।
0: खासकर हमारे जो टीनेजर हैं जो जिम जाते हैं, जिम जाने के दौरान जो वहाँ पर ट्रेनर रहते हैं उन्हें तरह तरह का मशवरा देते हैं कि आप ये दवा लेंगे तो आपका ये मसल्स ग्रो करेगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसे नौजवानों से सलाह देता हूँ, आप ऐसी दवाओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस दवाओं का इस्तेमाल करने से अभी तो फ़र्क आपको अच्छा लगेगा देखने में, मगर आने वाले दिनों में आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, बॉडी में जॉइंट पेन जैसी बीमारियां आपको हो सकती है। बॉडी को डेवलप कर देगा मगर वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। जैसे ही आप वो दवा को छोड़ेंगे वैसे ही आप जैसे पहले थे उससे भी ख़राब आपका जिस्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप कुछ लेना है तो आप घर का बना हुआ ग़ज़ा है उसको लें, या प्रोटीन वाले अगर भोजन लेना है आप 2 अंडा नहीं देके आप 4 अंडा लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर आप बाज़ार में बहुत सारी दवाएं मिल रही हैं जो डिफरेंट टाइप्स की, ये प्रोटीन लेने से ये डेवलपमेंट होगा, ये प्रोटीन लेने से ये डेवलपमेंट होगा। मैं सलाह देता हूँ ऐसे प्रोडक्ट को वो ना लें आप, और घर का बना हुआ ही प्रोटीन वाला भोजन वो ज़्यादा से ज़्यादा करें।
1: जी, बहुत ही अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी नौजवानों और बच्चों के मुतालिक। जिस्मानी तहफ़ सबसे ज़्यादा अहम है, नाश्ते को बिल्कुल स्किप ना करें और वर्जिश करें जिससे कि हमारा जो नशोनुमा है वो खूबसूरत भी हो और ज़ाहरी के साथ साथ अंदरूनी तौर पर भी हम सेहतमंद रह सकें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बेहद मशकूर और ममनून हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
2: सामिन, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, इससे कबल आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक प्यारी सी गज़ल, आइए समात करते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है, मेरी वफाओं का सिला कब मिला, मेरी वफाओं का सिला कब मिला, तू जफाओं के साथ ही हर पल मिला।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये आवाज़ थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की फिल्म हाथी मेरे साथी में। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और

धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म लैला मजनू में।

ये आवाज़ें थी महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की फिल्म पेंटर बापू में। आइए अब सुनते हैं अनवर को फिल्म हम हैं लाजवाब में।

ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म अपनापन में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवाड़ी। सूत्रधार हैं रजनी कुमारी और प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद।

0: जय हिंद प्यारे बच्चों।
1: जय हिंद लीली।
0: आपका अपना साप्ताहिक कार्यक्रम फुलबारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी रजनी दीदी। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, माता पिता का कहना अवश्य मानते होंगे, है ना? उनका आदर सम्मान करते होंगे और सुरों की मीठी खुशबू और मुस्कान की रंग बिरंगी बहार लेकर हाजिर है आपका अपना

प्यारा साप्ताहिक बाल कार्यक्रम फुलवारी, जहाँ खिलते हैं नन्हे सपने, महकते हैं प्यारी बातें और गूंजती हैं बच्चों की मधुर मुस्कानें। तो आइए, ज्ञान, मनोरंजन और कल्पनाओं की इस सुंदर बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपकी रजनी दीदी और आज के इस कार्यक्रम में हम साथ साथ करेंगे ढेर सारी बातें, सुनेंगे कहानियाँ, कविताएं और रोचक जानकारियाँ। हर बार की तरह आज का यह कार्यक्रम भी लेकर आया है उत्साह, उमंग और खुशियों के रंग। तो बच्चों, हो जाइए तैयार, अपनी कल्पनाओं के पंख फैलाइए और उड़ चलिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू हो रही है बच्चों की अपनी दुनिया, खुशियों की प्यारी बगिया फुलवारी। तो बने रहिए हमारे साथ और मुस्कुराते रहिए और शांति भी बनाए रखिए, ताकि हमारा कार्यक्रम ध्यान से सुन सके, है ना? तो बच्चों, आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और आज हम बात करेंगे गर्मी की छुट्टियां और नानी दादी के घर की सुनहरी यादों की। बच्चों, आप सबकी भी गर्मी की छुट्टी प्रारंभ हो गई होगी, है ना? ऐसे में आप अपना ख्याल भली भांति रखते होंगे और साथ ही साथ मौज मस्ती भी करते होंगे, है ना? अपना समर वेकेशन होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क की तैयारी भी करते होंगे। गर्मी में अपना बचाव के साथ साथ आम और लीची जैसे रसीले फलों का स्वाद भी लेते होंगे, है ना बच्चों? मजा आ रहा है ना गर्मी छुट्टी का? प्यारे बच्चों, गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही मन में सबसे पहले कौन सी बात आती है, सोच? जी हाँ बच्चों, नानी या दादी के घर की स्वादिष्ट पकवान और मस्ती से भरा माहौल, है ना? नानी या दादी हमें अपनी प्यारी कहानियाँ सुनाती हैं, कभी कभी राजा रानी की कहानी तो कभी पंचतंत्र की सीख देने वाली बातें। उनकी बातें, कहानियाँ और स्नेह बहुत प्यारी होती हैं। गांव की गलियों में घूमना, आम के पेड़ों की छांव में खेलना, जामुन तोड़ना और दोस्तों के साथ अपना समय बिताना छुट्टियों को यादगार बना देती है। तो आप लोग भी मौज मस्ती भी करिए और रसीले आमों का आनंद भी लीजिए और साथ ही साथ होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क भी जरूर पूरे कीजिए। बच्चों, छुट्टियां केवल खेलने के लिए ही नहीं होती, बल्कि कुछ नया सीखने का अवसर भी देती है। ये छुट्टियां लंबी होती है, इसमें आप चित्रकला, संगीत, पुस्तक पढ़ना और पौधे लगाना जैसी अच्छी आदतें भी अपना सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, है ना? तो प्यारे बच्चों, इस गर्मी की छुट्टियों की खुशियां सीख और परिवार के प्यार से भर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस गर्मी की छुट्टियों को खुशियों, सीख और परिवार के प्यार से भर दीजिए। प्यारे बच्चों, इसी संदेश के साथ मनोरंजन की दुनिया में ले चलते हैं और सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: अच्छा लगा ना बच्चों ये गाना। कार्यक्रम में अब सुनते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति पर आधारित बच्चे मन के सच्चे।
1: नमस्ते बच्चों।
2: नमस्ते दीदी।
1: कैसे हैं आप लोग?
2: अच्छे हैं।
3: अच्छे हैं।
1: अपना ख्याल रखते हैं ना?
2: हाँ।
1: गर्मियों से बचने के लिए क्या क्या करते हैं?
2: घर में रहते हैं।
1: और आपकी तो गर्मी छुट्टी चल रही है ना?
2: हाँ।
1: तो गर्मी छुट्टी कैसे एंजॉय करते हैं आप लोग?
3: जाते हैं,
4: घूमने जाते हैं और खेलते हैं।
1: और होमवर्क भी बनाते हैं, है ना?
2: हाँ।
1: प्रोजेक्ट वर्क मिला है कि नहीं मिला है?
2: हाँ, मिला है।
1: तो प्रोजेक्ट वर्क बनाने में मम्मा हेल्प करती है कि नहीं?
2: हाँ।
1: और अपने छोटे भाई बहन से भी, बड़े भाई बहन से भी हेल्प ले लिया करिए, है ना? आपका क्या नाम है, पहले अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम सुष्मिता ठाकुर है।
1: और क्या सुनाना चाहती हैं आज आप?
4: मैं आज एक भगवान का गीत सुनाना चाहती हूँ।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा, सुनाइए।
4: बाबा यो दमरू की है।

0: বাবায় ডামরু কিয়ে বজেল হাম তো আইবতে ছেলন।
1: বাহ, বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছি ভয়েস মে আপনি গানা গাই আর ভগবান ভোলেনাথ কো সমর্পিত এ গানা বহুত আচ্ছা। আপনার কে নাম হ্যাঁ?
2: বৈভব কুমার।
1: अरे वैभव कुमार, बहुत अच्छा नाम है। और कौन से कक्षा में पढ़ते हैं आप? आप भी कुछ सुनाना चाहते हैं?
2: हाँ।
1: तो सुनाइए। और क्या सुनाना चाहते हैं?
2: प्रार्थना गीत।
1: प्रार्थना? अरे वाह, तो सुनाइए।
2: तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो तुम्ही अवंधु जगा, तुम्ही साथी तुम्ही सारे, कौन अपना सिवा तुम्हारे।
1: वाह वाह, बहुत अच्छा।
3: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, कैसी हो?
3: अच्छी है दीदी।
1: पढ़ाई लिखाई चल रही है?
3: जी दीदी।
1: और कुछ सुनाना चाहती हैं आप? पहले अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम रानी कुमारी है।
1: कौन से विद्यालय से पढ़ती हैं?
3: राजकीय श्यामा पाठशाला।
1: किस कक्षा में पढ़ती हैं आप?
3: कक्षा 7 में पढ़ती।
1: और क्या सुनाना चाहती हैं?
3: मैं कहानी सुनाना चाहती हूँ।
1: तो सुनाइए।
3: बहुत समय के बाद थी, एक गुरु जी रहते थे और एक अच्छा चांद रहता था, बुरा चांद रहता था। उसके बाद धन रहता था, उसके बाद कुछ कपड़े और खाने पीने के सामान रहते थे। उस काले को बहुत घमंड था। गुरु जी चले गए, जब तो एक गरीब आदमी ने बोला, कुछ धन दे दो बाबू, मुझे बच्चे के लिए जरूरत है, बीमार है मेरा बच्चा,
1: मांगने के लिए आया।
3: तो काला चांद बोला क्या, नहीं।

0: दूंगा। तो अच्छा चांद बोला कि जो भिखारी था वो अच्छा चांद के पास गया।
1: हाँ,
0: बोला क्या तुम मुझे धन दे दो? नहीं, मेरे पास तो कुछ खाने पीने के सामान है, भोजन है, उस कपड़े हैं।
1: हाँ,
0: वो तो काले चांद के पास है। सब एक एक करके मांगने लगा मगर नहीं, वो काला चांद नहीं दिया। एक दिन वो सब वहाँ पे खड़ा था, एक दिन पहाड़ी से पत्थर गिरने लगा, दोनों चांद गिर गया। चांद वालों ने अच्छे चांद को बचाया, बुरे चांद को नहीं बचाया। क्यों सो तुम घमंड करते?
1: क्योंकि अच्छा चांद जो था सो लोगों की सहायता करता था।
0: उससे मैं ये सीखती है हमें कभी घमंड करना नहीं चाहिए।
1: हाँ।
0: और दूसरों की मदद करनी चाहिए,
1: जितनी भी हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए, तब आपको भगवान भी मदद करेंगे और लोग भी मदद करेंगे, है ना?
0: जी दीदी।
1: तो हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा लोगों के लिए हेल्पफुल रहिए, है ना? अच्छी अच्छी बातें सीखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कहानी आपने कही।
2: मेरा नाम सुष्मिता शेखर झा है।
3: हाँ हाँ।
2: मैं सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक संगीत सुनाने जा रही हूँ।
3: सुनाइए।
2: रे बाबा तेरी क्या ही बात है, भोल शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तू साथ है, हो दूर हो के भी तू साथ है, खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा अंश हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी सारी जिंदगी सजी है, लगी मेरी तेरे संग लगी हूँ मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, हे नवन कुंड नाथ प्राण अरविंद।
3: बहुत अच्छा गाना आपने सुनाई।
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते।
3: क्या? हाँ हाँ।
4: मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ।
3: आप क्या सुनाना चाहते हैं?
4: एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ।
3: सुनाइए।
4: हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाय, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राय, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाँक बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत,
3: हाँ हाँ।
4: एक से एक मिले तो इन सब बस में कर ले किस्म, साथी हाँक बढ़ाना। साहिल लुधियानवी। यह कविता साहिल लुधियानवी के द्वारा लिखी गई है।
3: और
4: यह कविता साहिल लुधियानवी के द्वारा लिखी गई है।
3: और आपका नाम क्या है?
4: मैं पुष्कर कुमार इस कविता को आप सबके सामने प्रस्तुत किया हूँ।
3: वाह, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। और सब मिलकर जो कोई काम करते हैं, कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर जाते हैं, तो सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, एक साथ होकर के आगे बढ़ना। नमस्ते, आप क्या सुनाना चाहती हैं गुड़िया?
5: एक मैं पढ़ती हूँ।
3: हाँ हाँ।
5: आज मैं एक कविता सुनाने वाली।
3: सुनाइए।
5: कविता का नाम सुना।
3: हंसिए नहीं सुनाइए। धीरे धीरे
5: बताया कि अब हम गरीब नहीं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी जाएंगे। पत्नी ने कहा कि एक अंडे से कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता। किसान ने कहा कि सोचो जब ये मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है, तब हम इसके पेट से सारे मौजूद निकाल लिया जाए। किसान ने चाकू लेकर मुर्गी का पेट चीर दिया और मुर्गी मरे, लेकिन कोई सोने का अंडा नहीं मिला।
3: अरे वाह।
5: हमें ये सीख मिलती है।
3: हाँ हाँ।
5: कि लालच करना बुरी भला।
3: अरे वाह गुड़िया, आपने कितनी अच्छी सीख देने वाली कहानी सुना डाली। लालच बुरी बात है ना? लालच नहीं करना चाहिए, जैसे कि किसान ने किया। मुर्गी रोज अंडा सोने की अंडा देती थी और लोभ में आकर के, लालच में आकर के उसने मुर्गी को ही काट डाला, और वह जो रोज अंडा पाता था सोने का, अब वो मर गई बेचारी मुर्गी। अब तो अंडा भी नहीं आएगा, अफसोस के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वाह, बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई। आपका क्या नाम है?
6: नमस्ते दीदी, मेरा नाम गोविंद कुमार है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ।
3: सुनाइए।
6: कहानी का नाम है चतुर खरगोश।
3: सुनाइए।
6: जंगल में एक शेर रहता था, वो

0: तो सभी जानवरों का शिकार करके खा जाता था। हाँ, एक दिन जंगल ने एक सभा बिठाया और उसमें शेर को बुलाया और कहा, महाराज हम आपके पास खुद आ जाएंगे, आप कृपया शिकार ना करें। ऐसा ही हुआ, रोज को एक जानवर इस शेर की गुफा में चला जाता और शेर उसे खा जाता। ऐसा ही हुआ, एक दिन खरगोश की बारी आई, वह जानबूझकर देरी से गया और जब वह गुफा में पहुंचा तो शेर ने पूछा कि तुम इतनी देरी से क्यों आए। तो खरगोश ने कहा कि मैं देरी से नहीं आया, मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया था, उसने कहा कि मैं ही जंगल का राजा हूँ। तो शेर ने कहा, मैं कैसे मानूं? तो उसने खरगोश ने कहा, महाराज आप खुद ही चलकर देख लीजिए। तो शेर भी गया और कहा, कहाँ पे है? तो वह बोला कि इस गुफा के अंदर है। तो शेर जैसे ही पहुंचा और उस गुफे के अंदर देखा तो उसे अपनी ही परछाई नजर आई और उसने अपनी दूसरे शेर को समझकर उसमें छलांग लगा दिया और वो खुद डूब कर मर गया।
1: हाँ, वो भ्रम में आ गया कि दूसरा शेर भी अंदर में है और छलांग लगा दिया, लेकिन सूझबूझ से उसने इतनी बड़ी समस्या से राहत पा ली, है ना। अगर समझदारी और सूझबूझ के साथ रहें और सूझबूझ से काम ले तो कठिन से कठिन समस्या भी आसानी से हम लोग पार कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई। बच्चों, अभी आप नन्हे मुन्हे छोटे बच्चों की प्रस्तुति सुन रहे थे। आइए अब रजनी दीदी आप सभी को एक प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए और अपने रेडियो सेट के और भी करीब आइए, और शोरगुल बिल्कुल नहीं, है ना बच्चों। कहानी का शीर्षक है ईदगाह। ईद का दिन था, गांव में चारों ओर खुशी का वातावरण था। बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं बच्चों में एक छोटा सा लड़का हामिद भी था। हामिद के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। घर में बहुत गरीबी थी, खाने पीने की भी कमी थी, फिर भी हामिद खुश रहा करता था। दादी अमीना के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से हामिद को मेले के लिए 3 पैसे दिए। हामिद उन 3 पैसों को बहुत संभाल कर रखता था और अपने दोस्तों के साथ ईदगाह की ओर चल पड़ता है। ईदगाह में सभी लोग नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद बच्चे मेले में पहुंचते हैं। वहां तरह तरह की दुकानें थीं, कहीं खिलौने बिक रहे थे, कहीं मिठाइयाँ, तो कहीं झूले लगे हुए थे। हामिद के दोस्त अपने पैसों से खिलौने, मिठाइयाँ और दूसरी चीजें खरीदने लगते हैं। कोई सिपाही का खिलौना खरीदता है तो कोई वकील का, कोई मिठाई खाता है तो कोई झूला झूलता है। हामिद भी सब कुछ देखता है, लेकिन वह अपने पैसे सोच समझकर खर्च करना चाहता है। उसे याद आता है कि उसकी दादी जब रोटियां बनाती हैं तो तवे से रोटी उतारते समय उनके हाथ जल जाते हैं। घर में चिमटा नहीं है, इतना छोटा सा बच्चा, दादी के लिए इतना प्रेम उसके हृदय में है। तभी उसकी नजर एक लोहे के चिमटे पर पड़ती है। दुकानदार उसकी कीमत 3 पैसे बताता है। हामिद तुरंत चिमटा खरीद लेता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि मेले में कोई चिमटा खरीदता है भला? क्या हामिद को अपने निर्णय पर गर्व होता है? वह सोचता है कि चिमटा उसकी दादी के बहुत काम आएगा। जब हामिद घर लौटता है तो दादी अमीना पहले से नाराज होती है कि उसने मिठाई या खिलौना क्यों नहीं खरीदा। लेकिन जब हामिद बताता है कि उसने चिमटा इसलिए खरीदा ताकि रोटी बनाते समय उनके हाथ न जले, तो दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे हामिद को गले से लगा लेती हैं। उन्हें महसूस होता है कि उनका छोटा सा पोता कितना समझदार और संवेदनशील है। गरीबी के बावजूद उसके मन में अपने लिए नहीं बल्कि अपनी दादी के लिए प्रेम और चिंता है। और कहानी का अंत दादी के स्नेह और हामिद के त्यागपूर्ण प्रेम के साथ होता है। हामिद का छोटा सा चिमटा मेले का सबसे मूल्यवान उपहार से बढ़कर भी साबित होता है। तो बच्चों, सच्चा प्रेम, त्याग, संवेदनशीलता

और बड़ों के प्रति सम्मान जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। आप लोगों को भी सच्चा प्रेम, त्याग की भावना और संवेदनशीलता, बड़ों के प्रति आदर सम्मान, ये सब गुणों का समावेश अपने गुणों में करना चाहिए और बड़ों के प्रति कृतज्ञता, आदर सम्मान भाव रखना चाहिए। बच्चों, इस ज्ञानवर्धक और सीख देने वाली कहानी के बाद आइए अब समान ज्ञान की बातें करें। समान ज्ञान के अंतर्गत आज हम ऐसे मित्र के बारे में बात करेंगे जो बिना कुछ मांगे हमें जीवन देता है। क्या आप जानते हैं? वह है पेड़। हाँ बच्चों, पेड़ पौधे हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। बच्चों, सुबह उठते ही हम खुली हवा में सांस लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, जो प्राणवायु कहा जाता है, कौन प्रदान करता है, वह कहाँ से आता है? इसीलिए पेड़ों को धरती का फेफड़े भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। बच्चों, पेड़ पौधे हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि फूल, लकड़ी, औषधियाँ और छाया भी देते हैं। गर्मियों के दिनों में, जैसे आजकल जब तेज धूप पड़ती है, तब पेड़ की ठंडी छाया हमें राहत देती है, है ना बच्चों? क्या आप जानते हैं कि पक्षियों का घर कहाँ होता है? पेड़ों पर। तोता, मैना और अनेक पक्षी पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं। सोचिए बच्चों, यदि पेड़ नहीं होंगे तो इन जीवों का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। पेड़ वर्षा लाने में भी मदद करते हैं। पेड़ वातावरण में नमी बनाए रखते हैं, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसके अलावा पेड़ मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, इससे पानी के बहाव में बहने से रोकते हैं। प्यारे बच्चों, आज की दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में अधिक से अधिक पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। एक पेड़ अपने जीवन काल में हजारों लोगों को स्वच्छ हवा देने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, क्या करना चाहिए हमें? हमें हर वर्ष कम से कम एक पौधा तो अवश्य लगानी चाहिए, है ना? और लगाए गए पौधों की देखभाल भी आवश्यक है। अगर हम देखभाल नहीं करेंगे, पौधे सूख जाएंगे। इसीलिए पौधे लगाएं और उसका अच्छी तरह से देखभाल करें। हमें किसी को भी पेड़ काटने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, हरे पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए, है ना बच्चों? याद रखिए, एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे और पर्यावरण को हरा भरा बनाएंगे। तो बच्चों, इसकी शुरुआत इस गर्मी छुट्टी से ही करें। पेड़ पौधा लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे पेड़ पौधे के महत्व के बारे में, अब समान ज्ञान में थोड़ी करंट अफेयर की बातें जानें। तो आइए आज बिहार के मंत्रिमंडल की कुछ प्रमुख सदस्यों के बारे में जानते हैं। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी CM हैं। जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं और राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायस हैं। तो बच्चों, आज के सामान्य ज्ञान अंक में बस इतना ही। प्यारे बच्चों, आज के फुलवारी कार्यक्रम में हमने गर्मी की छुट्टियों की मस्ती, नानी दादी के घर की मीठी यादों को याद किया, महसूस किया, मीठी कहानी सुनी। हमारे नन्हे मुन्ने साथियों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को और भी रंगीन बना दिया और मधुर संगीत सुना, है ना? आज हमने समान ज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जाना और वर्तमान घटनाओं के क्रम में बिहार के मंत्रिमंडल की जानकारी भी प्राप्त की। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद के साथ मुझे यानी अपनी रजनी दीदी को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय, नई उमंग, नई जानकारियां और नई कहानियों के साथ। तब तक

फुलवारी रियाप नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण हेलो जिंदगी। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी।

0: मुस्कान भरे, चलो ना सब मिलकर रक्तदान करें। गिन रहे जो अंतिम सांसें जिंदगी की, गिन रहे जो अंतिम सांसें जिंदगी की, उनके नसों में फिर से प्राण भरे, चलो ना मिलकर महादान करें। चलो ना सब मिलकर रक्तदान करें। हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर की मात्रा में बहने वाला रक्त हमारे जीवन का आधार है। बीमारी, ऑपरेशन या दुर्घटना में हुए रक्तस्राव की स्थिति में शरीर में खून की कमी हो जाए तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। इस आवश्यकता की पूर्ति शरीर तत्काल नहीं कर पाता और इससे होने वाली संभावित मृत्यु को टालने के लिए आपात स्थिति में दूसरे व्यक्ति के खून की ज़रूरत पड़ जाती है। ब्लड ग्रुप के मुताबिक जो व्यक्ति खून देता है उसे ब्लड डोनर यानी रक्तदाता और रक्त दिए जाने की प्रक्रिया को रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन कहा जाता है। दीगर बात यह है कि एक समय था जब अत्यधिक रक्तस्राव या रक्त की कमी से अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त के एबीओ ग्रुप की खोज की और इस खोज ने खून की कमी से होने वाली मौत से बचाव को लेकर एक क्रांति ही ला दी। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के दिन 14 जून को हर साल विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा 2004 में शुरू हुई। श्रोताओं, आज 14 जून है, विश्व रक्तदाता दिवस, रक्तदान को लेकर जागरूकता का बेहद खास दिन। सवाल यह है कि क्या हमें इस रक्तदान के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसकी तकनीक और सावधानियों के बारे में, साथ ही रक्तदान से जुड़ी तमाम भ्रांतियों और इसके निवारण के बारे में कितनी जानकारी है? जिंदगी की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी ज़रूरी जानकारी को आप तक पहुंचाने का हमारा भी एक प्रयास है, ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से। रक्तदान क्यों है महादान, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आप श्रोताओं को ज़रूरी जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रीजनल ब्लड बैंक यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर संजीव कुमार। श्रोताओं, रक्तदान को लेकर आप अपनी किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा डॉक्टर संजीव कुमार से व्यक्त कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जवाब ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आप इसी समय हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, नंबर हम बताते हैं 0627222481, 0627222481, ये हमारा बेसलाइन नंबर है। एक दूसरा नंबर भी है आपकी सहायता के लिए 9430029353, 9430029353। आज की हेलो जिंदगी का विषय रक्तदान क्यों है ज़रूरी, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। डॉक्टर संजीव कुमार जी, एक बार फिर से आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में और कार्यक्रम हेलो जिंदगी में आपका स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं सर?
1: ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।
0: रक्तदाता दिवस है आज, शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आकाशवाणी परिवार की तरफ से तमाम श्रोताओं को और आपको भी सर। बहुत सारी बातें होंगी रक्तदान को लेकर, लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, सवाल आएंगे भी और उन भ्रांतियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जिन भ्रांतियों को लेकर लोग हिचकिचाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, जीवन रक्षा के लिए डोनेशन नहीं देते हैं ब्लड का, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन एक सहस्य जिज्ञासा ये हमारे श्रोताओं के पास होगी जो लोग पहली बार आपको सुन रहे होंगे, डॉक्टर संजीव कुमार कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आते हैं और जहाँ तक आप पहुँचे हैं विशेषज्ञता के तौर पर, ये सफ़र कैसा रहा संक्षेप में बता दें।
1: जैसे कि आपने मेरा परिचय दे चुका, मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार हुआ और मैं DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रीजनल ब्लड सेंटर

रो रही हैं आँखें जो, रो रही हैं आँखें जो हैं जो उदास मुरझाए चेहरे, आइए उन पर फिर

0: में 2021 से इंचार्ज के रूप में वहाँ पदस्थापित हूँ।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
0: मैं बेसिकली यहीं दरभंगा का ही रहने वाला हूँ।
1: अच्छा अच्छा जी।
0: दरभंगा में बिनीपुर के बगल में मजौरा गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं।
1: शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई आपकी?
0: शिक्षा दीक्षा हमने पहले तो वाटसन स्कूल मधुनी है, वहाँ टेंथ किया मैंने। उसके उपरांत मैं DM कॉलेज पटना से 12th किया
1: जी।
0: उसके बाद मैंने मेडिकल में गया, जहाँ बाहर्स किया मैंने।
1: अच्छा, एक श्रोता जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, पहले उनसे बात कर लें क्योंकि फ़ोन कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी।
0: जी
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बता दें।
2: मोहन पासवान, गांव बसतपुर से बोल रहा हूँ सर।
1: हाँ मोहन पासवान जी, बताइए क्या जिज्ञासा है आज हेलो जिंदगी में।
2: जी सर, जिज्ञासा है कि सर रक्तदान से किसी व्यक्ति का जीवन बच जाता है, एकदम दान देने से शरीर के अंग अंग भी बच जाते हैं, जो दान देते हैं उनको खून से लोग बढ़ते हैं और उनके खरीद खून शरीर से निकला हुआ खून जब नए खून शरीर में बनता है तो तरोताजा हो जाता है, कई प्रकार की बीमारी ठीक हो जाते हैं।
1: सही बता रहे हैं।
2: इसीलिए माना जाता है कि रक्त दान बढ़ा दान हो सकते। दूसरा है सर कि सर खून देने वाले व्यक्ति को खून दान देने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है सर, जिससे रक्तदान देने के बाद उसे किसी प्रकार का हानि न हो। दूसरा है सर कि सभी लोग प्राकृतिक के वनस्पति और जीव जंतु का ही भोजन करते हैं, तो फिर रक्त के समूह में अंतर क्यों हो जाता है सर? सर
1: नहीं, ये सवाल थोड़ा और स्पष्ट कर दें, हम समझ नहीं पाए।
2: सर सभी लोग प्राकृतिक वनस्पति पर ही एवं जीव जंतु पर ही निर्भर है, जो भोजन करते हैं।
1: जी जी।
2: तो फिर ये रक्त समूह में अंतर क्यों हो जाता है सर?
1: रक्त में अंतर, ग्रुप में अंतर। अच्छा अच्छा, टेक्निकल जी, रक्त समूह में ये फर्क क्यों होता है? ठीक है जी।
2: सर कि घर को स्कूल और गांव को कॉलेज माना गया है, तो रक्तदान के साथ साथ अन्न दान देने के लिए लोगों को किस प्रकार से जागरूक किया जा सकता है सर?
1: घर घर में जागरूकता होनी चाहिए ऐसा आप चाहते हैं, है ना? किस तरह से ये जागरूकता हो। सुनिएगा मोहन पासवान जी, लबो लुबाब आपका जो है ना पूरे कार्यक्रम का आपने एक तरह से यहाँ नींव रख दी है, तो चलिए एक एक कर हम चर्चा करेंगे पूरे कार्यक्रम में। आप सुनिएगा रेडियो को अच्छी तरह से, ठीक है ना?
2: जी धन्यवाद सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मोहन पासवान जी नमस्कार जी, बताइए। हेलो, नहीं नहीं पूछना नहीं, आपको धन्यवाद हमने दिया है, है ना? आभार व्यक्त किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मोहन पासवान जी सवाल करते हैं तो एक सवाल नहीं करते हैं, हमेशा दो तीन सवाल करते हैं, और इनकी जिज्ञासा जो होती है मूलतः पूरे कार्यक्रम की जो एक रूपरेखा जो होनी चाहिए वो रख दिया करते हैं। इनका ये तो कहना था कि कैसे रक्तदान से पहले हमको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए, ये पहला सवाल था। सभी लोग शाकाहारी मांसाहारी भोजन करते हैं लेकिन रक्त समूह अलग अलग क्यों हो जाता है? खाना पीना तो हम लोगों का अमूमन एक ही है, ऐसा इनका कहना है। अच्छा सवाल है ये। और इन्होंने कहा कि घर जो है वो शिक्षा की इकाई है, अगर वहाँ तक जानकारी पहुँचे और जागरूकता हो घर घर में, ये कैसे होगा? ये सवाल। एक और श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेसरा छत्तीसगढ़ से।
1: एक बार फिर से अपना नाम बता दें।
3: योगेश जांगड़े, बेमेसरा छत्तीसगढ़।
1: जी योगेश जी, बताइए क्या क्या जिज्ञासा है?
3: हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे भ्रांतियाँ तो बहुत सारी सुनते हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं क्या इससे हमें फायदा भी होता है क्या ब्लड डोनेट करने से, शारीरिक या मानसिक रूप से?
1: बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर संजीव बता दें, क्या जो ब्लड डोनेट लोग करते हैं अमूमन तो भ्रांति तो यही है कि भाई देह का खून चला जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, पता नहीं उतनी भरपाई जो है कब हो पाएगी, ये सारी चीज़ें दिमाग में नाचती रहती हैं, लेकिन क्या कोई फ़ायदा

0: है इसका, सुनिएगा योगेश जी जी, सुनिए जी, रेडियो पर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
1: योगेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मतलब रक्तदान देने से क्या फ़ायदा हो सकते हैं
0: जी।
1: पहले तो जानना चाहिए कि रक्तदान कौन कर सकते हैं।
0: हुँ.
1: उसमें एक लेन में देखा जाए तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो रक्तदान करें। उस स्वस्थ व्यक्ति में कुछ नियम है, जैसे कि एज 18 साल से लेके 60 साल की आयु वाले व्यक्ति, कोई भी चाहे महिला हो पुरुष हो, वो रक्तदान कर सकता है।
0: एक और श्रोता जुड़ गए हैं, श्रोता जुड़ते जा रहे हैं। पहले सवाल हम ले लेते हैं क्योंकि जानकारी की बातें तो क्रमशः चलती ही रहेंगी, लेकिन श्रोताओं के फ़ोन कॉल कट जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। और जिन जो श्रोता अभी फ़ोन लाइन पर हैं उनसे कहेंगे कि रेडियो की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें या बहुत कम कर दें, दिक्कत हो रही है हमें जी। नाम बताएं अपना। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार, मैं वैद्य सुनील कुमार मिश्रा बोल रहा
0: हूँ।
2: नमस्कार संजय जी।
0: जी जी नमस्कार। रेडियो की आवाज़ बंद कर देंगे वैद्य जी तो सहूलियत हो जाएगी। रेडियो की आवाज़ बंद कर दें, हमें सहूलियत हो जाएगी आपसे बात करने में। रेडियो की आवाज़ बंद कर दें, रेडियो की आवाज़ बंद कर दें। आपके अगल बगल में रेडियो बज रहा है ना, उस वजह से जी। कैसे हैं वैद्य सुनील कुमार मिश्रा जी, कैसे हैं ये बताइए।
2: बस आप लोग जैसे रखे हुए हैं चल रहा हूँ।
0: चलिए अच्छी बात, हम लोग तो अच्छे ही से रखते हैं भाई और रखना चाहते भी हैं। क्या जिज्ञासा है आज इस कार्यक्रम में?
2: ये तो है कि आज आज का विशेष दिवस पर बहुत ही अच्छा जो है विषय रखा गया है
0: जी। धन्यवाद।
2: और डॉक्टर साहब को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद, इतने महत्वपूर्ण जानकारी आज दे रहे हैं।
0: धन्यवाद।
2: जानना था ये कि कितने उम्र तक के लोग जो है रक्तदान दे सकते हैं
0: जी, बताइए डॉक्टर
1: साहब। वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुन लीजिए, जो डिपेंड करता है आप कब कितने बार दे। कोई अगर पहली बार रक्तदान कर रहे हैं तो उनका बिहार में या देश इंडिया में दिया गया 18 साल से लेके 60 साल के आयु वाले रक्तदान कर सकते हैं।
2: 60 साल
1: जी, 60 जी,
0: 60 साल। लेकिन एक
1: लेकिन
0: और
1: जो जी जो रेगुलर डोनेट करते रहते हैं वो 65 साल तक रक्तदान कर सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा,
0: दो बातें उभर के।
2: डायबिटीज है,
1: डायबिटीज अगर है किन्हीं को, अगर वो दवा खा रहे हैं नॉर्मल हैं उनका रहता है डायबिटीज, तो वो रक्तदान कर सकते हैं
0: जी। तीन बातें, तीन बातें वैद्य जी आई सामने कि 18 से लेकर 60 वर्ष तक स्वस्थ व्यक्ति, जो आगे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि उनके लिए मानक क्या है, कैसे लोग जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं सिर्फ उम्र के अलावे, उम्र के अलावे जो बात बाकी बातें हैं उसकी चर्चा कार्यक्रम में करेंगे। आपने उम्र का सवाल किया है तो ये 18 से 60 साल है कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, पहली बात। दूसरी बात कि जो लोग रेगुलर एक अंतराल पर साल में दो बार एक बार नियमित रूप से रक्तदान कर रहे हैं वो चाहे तो 60 साल के बाद भी 65 साल की आयु तक रक्तदान कर सकते हैं, है ना।
2: कितना गैप होना चाहिए ड्यूरेशन?
1: एक अगर कोई मेल मेंबर अगर ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो पुरुष के लिए 90 दिन के बाद दोबारा डोनेट रक्तदान कर सकते हैं, और महिला है तो 4 महीने के बाद, यानी कि महिला साल में 3 बार और पुरुष साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन अंतर 90 दिन कराना चाहिए
0: जी,
1: मेल में और 120 दिन महिला में।
0: 3 महीने पुरुषों के लिए अंतर होना चाहिए और 4 महीने महिलाओं के लिए, ठीक है। वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: याद कर लीजिएगा,
0: जरूर जरूर याद, हमेशा स्मरण करते हैं आपका भी वैद्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैद्य सुनील कुमार मिश्र जी बतौर विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में आते भी रहे हैं और इसी बाबत उन्होंने कहा कि हमें भी याद करते रहे तो अच्छी बात है। और रक्तदान को लेकर आज बहुत सारी बातें होंगी, एक बात जो है वो पहले कर ले, लेकिन लगातार जो हमारे श्रोता है जुड़ रहे हैं इसीलिए जी जी जी नमस्कार। हेलो
3: डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब को आकाशवाणी केंद्र को इस
0: शाम तो
3: सभी को प्रणाम करता हूँ सर।
0: जी जी, प्रणाम हमारा भी और डॉक्टर साहब की तरफ से भी, लेकिन ये प्रणाम जो है वो किन की तरफ से आ रहा है, अपना नाम बता दीजिए।
3: आप लोग बहुत अच्छी प्रोग्राम रखे हैं, रक्तदान महादान है, और रक्त दान करने से क्या होता है किसी एक मरीज को जिंदगी बच जाता है, किसी को काम आ जाता है, उसका बाल बच्चे आगे बढ़ जाता है।

0: सही बात है।
1: और कभी कभी रक्त के चक्कर में कोई बहुत आदमी गुजर जाता है, उनके समय पर सहायता नहीं मिल पाता है, तो
0: जी
1: रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान बहुत पुण्य की काम है सर,
0: सही बात है, लेकिन
1: दुनिया में बहुत पुण्य की काम है, पुण्य की काम हर इंसान को करना चाहिए।
0: इतनी अच्छी बातें करने वाले आप हैं कौन, अपना नाम बता देना।
1: हम यही चाहते हैं कि मतलब हर इंसान में रक्तदान करे, और किसी को मुसीबत जिसको आ गया है तो उसको काम आ जाए, उसका बाल बच्चे का भी भविष्य बन जाएगा और उनका भी जान बच जाएगा।
0: चलिए, आपका संदेश लोगों तक पहुंच गया है, लेकिन श्रीमान अपना नाम बता दें, आप अपना नाम बता दें।
1: मेरा नाम है चंदेश्वर शाह, ब्रह्मपुर पूर्वी जाले प्रखंड से बोल रहा हूँ सर।
0: चंदेश्वर शाह जी, बहुत अच्छे विचार और नेक विचार हैं आपके, है ना। हम चाहेंगे कि, और डॉक्टर साहब के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि आप अपने इलाके में, अपने गांव में जितनी बातें आप अभी कर रहे हैं ना, वो भी अपने गांव के लोगों को भी आप जागरूक रखें, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, समझे ना। डॉक्टर साहब भी यही बार बार कहते रहे हैं अनेक आयोजनों में भी, और आज भी वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे ही इस तरह की। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? चंदेश्वर शाह जी को तो पता है कि ये रक्तदान महादान क्यों है और क्यों जरूरी है, लेकिन ये संदेश जो है अगर ये अपने इर्द गिर्द भी दें तो ज़्यादा बेहतर है।
2: चंदेश्वर जी को तो पहले नमस्कार मेरा। देखिए, आपने कहा कि जी, आपने बिल्कुल कहा बिल्कुल बिल्कुल, उसमें थोड़ी थोड़ी अगर जानकारी सबों को रहती है तो, आपने जैसे कहा आपको बहुत कुछ जानकारियाँ हैं इस बारे में, तो हम चाहते हैं कि हर एक गाँव देहात दूर तक के जो सुदूर लोग हैं, हम सूचना मतलब जानकारी पहुंचा पाएँ कि ब्लड देने से क्या फ़ायदा है, नहीं है, इसका रक्त का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए लोगों में जो भ्रांतियाँ हम लोग दूर कर पाएँ, जहां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा स्कूल जहां जहां बैठ के जहां तक होता है हम लोग लोगों को जानकारी दे पाएँ, जागरूकता कर सकें हम लोग।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदेश्वर शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर जरूर, चलिए, आपने कार्यक्रम की तारीफ की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुनते हैं आप और लोगों को भी जागरूक करते रहें, ये हमारी आकांक्षा है आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोगों को कुछ जानकारियां हैं, अच्छी अच्छी जानकारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई तरह की भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आते हैं मोहन पासवान जी के उस सवाल पर, उनका कहना है कि रक्तदान से पहले किस किस तरह की सावधानी होनी चाहिए, रक्तदाता बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। इसी सवाल को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके वहाँ ले जाते हैं कि रक्तदान कौन कर सकता है, क्यों ज़रूरी है, ये पहले बता दीजिए डॉक्टर साहब, रक्तदान क्यों ज़रूरी है, आज हम उसकी चर्चा क्यों इतना कर रहे हैं।
2: रक्तदान जनरली देखा गया है कि हमारे इंडिया में खासकर महिलाओं में, बच्चों में खून की कमी पाई जाती है
0: जी।
2: सौ समय मतलब नियमित आहार नहीं लेना, समय से खाना नहीं खाना, अपने स्वास्थ्य प्रति जागरूक नहीं है लोग, इस कारण से उनको होता है, खून की कमी होती है। और दूसरा मैंने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, रक्त के लिए रक्त ही
0: चाहिए। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है,
2: कोई व्यवस्था नहीं है।
0: अगर शरीर में पानी की कमी होती है तो पानी का बोतल जो है वो तो मिल जाता है, जो चढ़े डीएनएस चढ़े एनएस चढ़े जो भी चढ़े वो जरूरत के मुताबिक, लेकिन खून के लिए आदमी के खून पर ही निर्भरता अभी तक।
2: जब होता है कि हमें रूबरू होना पड़ता है हॉस्पिटल में, कभी गर्भवती महिलाएं आती हैं जो बहुत ही रक्तस्राव हो रहा है, कभी किन्हीं को गोली लगा हुआ है तो उनको ब्लड बहुत रक्त जा रहा है,
0: किसी दुर्घटना में
2: कोई एक्सीडेंटल आ जाते हैं, कोई ट्रेन के पैर कट गया था उनका बहुत ज़्यादा रक्त जा रहा था, कोई है नहीं साथ में, तो उस टाइम पे रक्त ही उसका एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो उसमें देना चाहिए। इसीलिए पहली बात, दूसरी बात, जो रक्त देने से किसी भी तरह कोई दिक्कतें नहीं होती, रक्त नियमित रूप पे रक्त जो स्वस्थ मन पड़ेगा, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनका हमने कहा था तीन चार बातें ध्यान रखना है, कौन कर सकते हैं, पहले तो एज है
0: जी,
2: एज में 18 जो नियमित करेंगे सो 18 साल से लेकर 60 वर्ष तक,
0: सही,
2: तो जो परिवार करेंगे जो नियमित करते रहते हैं उन्हें 65 साल तक वो कर सकते हैं,
0: सही,
2: पहली बात
0: जी।
2: दूसरी बात, कितने अंतराल पे कर सकते हैं, पुरुष जो हैं वो 90 दिन पे और महिला जो है सो 120 दिन पे, यानी तीन महीने और चार महीने का रहता है, पुरुष तीन महीने और महिला है चार महीने का,
0: ठीक।
2: उसका वेट वजन जो है वो एक्यूट इमरजेंसी के लिए हम रखा गाइडलाइन दिया गया 45 किलो, लेकिन हम लोग 50 लेके चलते हैं कि 50 किलो तक जो वजन रहना

0: सही, किसके लिए? जो रक्तदाता है,
1: अच्छा महिला या पुरुष
0: कोई हो, उसे
1: कोई भी हो, लेकिन वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए।
0: जी ये सब क्राइटेरिया है। अब किन्हीं को है कि मतलब जैसे इससे पहले हमसे पूछा गया था, जो वैद्य जी थे सुनील जी, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो डायबिटिक का भी है जो हमने कहा कि जो अगर दवा खा रहे हैं, रेगुलर अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनका डायबिटिक जो है सो नॉर्मल रेंज में रहता है दवा खाने में, तो रक्तदान कर सकते हैं। जो इंसुलिन पे हैं वो नहीं दे सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जिनका बीपी बढ़ा हुआ है तो वो रक्तदान कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा रहेगा, किसी को अब 220 और 120 आ गया तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो नहीं करेंगे। जिनका लो बीपी है वो
1: नहीं करेंगे,
0: रक्तदान नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लड देने से क्या होता है, ब्लड
1: बीपी और बीपी लो
0: होने पर कर सकता है, ये होता है, ये सब है।
1: और आपने एज फैक्टर बताया कि भाई 18 से लेकर 60 साल, और नियमित रूप से अगर जो रक्तदान कर रहे हैं वो 65 साल तक भी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए है 4 महीने के अंतराल पर वो चाहें तो कर सकते हैं दोबारा, और पुरुषों के लिए 90 दिन यानी 3 महीने का समय रखा गया है कि अगर आपने एक बार रक्तदान किया है तो 3 महीने के बाद करें, ये बातें हैं। लेकिन सवाल ये है, आपने कहा कि जो डायबिटिक हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद रक्तदाता जब रक्तदान के लिए जाता है, उपस्थित होता है, तो कुछ उनकी जांच की जाती है उनके रक्त की, ये जांच क्या है? और लोगों के मुंह से हमने सुना है और कई विशेषज्ञ बताते हैं कि ये वो जांच है जिससे रक्तदाता को भी फायदा हो जाता है, ये क्या
0: हमारे
1: है?
0: हमारे यहाँ जब भी आते हैं, हमने जब भी लेते हैं, तो पहले होता था कि किट से होता था, एलाइजा मेथड से हर एक आदमी का, जो पहले तो हम ब्लड कितना लेते हैं, लोगों में भ्रांति है कि मेरे पास खून कम है, इतना सारा ब्लड निकल जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, तो
1: डॉक्टर साहब इस बात को हम फिर समझेंगे, मतलब कार्यक्रम में इस चर्चा को जारी रखेंगे। एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार।
2: नमस्कार, समझा रहे हूँ
1: जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं दिनेश मिश्रा सरसापाई से बोल रहा हूँ सर।
1: जी दिनेश मिश्रा जी, बताइए क्या जिज्ञासा है?
2: एकदम ठीक है सर, समीचीन विषय से ये आज का बिलोंग कर रहा है, ऐसा जो सारे प्रोग्रामिंग ऐसी ही होती है आज के जो है जिंदगी में।
1: जी जी,
2: लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा रखे हैं,
1: धन्यवाद।
2: लेकिन एक जिज्ञासा है मेरा,
1: जरूर बताइए।
2: खून का रंग तो लाल ही होता है अमूमन, सफेद कण और लाल रक्त कण ये हो जाता है, ये दोनों क्या चीज है? लाल रक्त कण और सफेद रक्त कण। और दूसरा सवाल है कि लोगों में जागरूकता भी आ रही है, लोग जगह जगह रक्तदान भी कर रहे हैं
1: जी,
2: लेकिन जब हॉस्पिटल की बात आती है तो कोई मरीज जब भर्ती रहता है और उसे खून की आवश्यकता होती है तो फिर अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है
1: जी,
2: तो उसमें लोगों का मन जो है तो टूट जाता है, इसके लिए मतलब डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
1: जी दोनों ही सवाल आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और दिनेश मिश्रा जी सेवानिवृत्त हैं, शिक्षक हैं, और कार्यक्रम सुनते हैं लगातार हेलो जिंदगी, और आज के विषय को लेकर ये अलग से साधुवाद हमें दे रहे हैं, ये हमें अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि ये कार्यक्रम उनके लिए और श्रोताओं के लिए कितना उपयोगी है, ये जानकर हमें बहुत तसल्ली होती है। दिनेश मिश्रा जी सुनिएगा, डॉक्टर साहब बता रहे हैं रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल के बारे में, सवाल है आपका कि ये है क्या, और इसके साथ साथ आप
2: जानना
1: चाहते हैं, और साथ ही आपने जानना चाहे कि अस्पताल में अगर कोई मरीज भर्ती है और उसे रक्त की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आपने एक शब्द का इस्तेमाल आपने किया है कि वहाँ भागदौड़ करनी पड़ती है, अगर प्रचलित भाषा का इस्तेमाल करें तो टपला खाना पड़ता है, इस तरह की लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। ये प्रक्रिया क्या है अस्पताल के लिए वो डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे आपको, सुनिएगा आप रेडियो पर सुनिएगा, क्योंकि एक और श्रोता हमारे दूसरे फोन लाइन पर है, उनसे भी बात कर लेते हैं, सारी बातों को हम क्रम से एक एक करके लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। एक और श्रोता जुड़ गए, उनसे भी जुड़ जाए। जी नमस्कार, हेलो, जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: महाकांत सिंह बोल रहा हूँ सर।
1: महाकांत सिंह जी कैसे हैं?
3: बढ़िया सर।
1: जयपुर राजस्थान से है ना?
3: हनुमानगढ़।
1: हनुमानगढ़ जी जी। क्या जिज्ञासा है?
3: आज आज आप हैं प्रोग्राम में।

0: इसलिए सुन रहा हूँ बीच बीच में हेलो जिंदगी की जो गुणवत्ता है उसको आप लोग गिराते हैं सर।
1: नहीं ऐसा नहीं है और ऐसी टिप्पणी हम चाहेंगे भी नहीं
0: है तो हेलो जिंदगी है नहीं तो कोई फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है।
1: नहीं ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि
0: सहेली बन के रह जाता है। अच्छा, सर, वो प्रोग्राम हेलो जिंदगी नहीं रहता है।
1: महाकांत सिंह जी अगर इसी पर चर्चा करेंगे तो बहुत बहुत कीमती समय है ये आज के कार्यक्रम का। जिज्ञासा व्यक्त करें और जो आपकी दिक्कत है आप चाहें तो हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कार्यक्रम में इन सब बातों के लिए जगह दें तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। हाँ ये है ज़रूर कि हम जितने लोग हैं सब चाहते हैं कि हमारे श्रोता तल्लीनता से कार्यक्रम सुने, कार्यक्रम का लाभ उठाएं। अपनी कोशिश होती है, पूरी की पूरी कोशिश होती है। अगर हम खड़े नहीं उतर पाते हैं तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। आपकी नज़र में अगर ऐसा है तो ठीक है।
0: आकाशवाणी में हेलो जिंदगी या जो भी प्रोग्राम आप प्रस्तुत करते हैं वो एक बहुत ज्यादा श्रोता उससे जुड़ जाते हैं।
1: धन्यवाद। और जिज्ञासा व्यक्त कीजिए अगर तारीफ की है तो।
0: सर जानकारी सब बता दिए है, बस एक जानकारी पूछ रहा हूँ सर की
1: जरूर।
0: साल में 4 बार बता दिए हैं वो भी सही है
1: ठीक।
0: कितने साल तक शुगर का मरीज रक्तदान कर सकता है?
1: अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ ये जिज्ञासा इनको, मान लीजिए कोई डायबिटिक है वो बार बार करना चाहते हैं तो कब तक कर सकते हैं? आखिर उसकी कोई सीमा रेखा है या फिर वो सिर्फ जांच पर
2: है? उसकी जांच पे है कि मतलब अच्छा। नॉर्मल रेंज में है
1: हाँ
2: तो कर सकते हैं। एक होता है कि जो स्वस्थ आदमी है हर 3 महीने चल करते रहते हैं, लेकिन इनका एक करते रहते हैं खान पान सही रखते हैं तो शुगर में भी कमी आ सकती है। ब्लड देने से जिनका बीपी है, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब में कमियां, बहुत कमियां देखी गई है। तो रक्तदान करने से फ़ायदे हैं। एक जो रक्तदान करते हैं उनका हम लोग पहले आपको बताया कि मतलब
1: जी फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। एक और श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर प्रयास कर रहे थे, हालांकि हमसे जुड़ाव नहीं हुआ है। महाकांत सिंह जी का ये सवाल था कि अगर कोई डायबिटिक है ना तो अगर वो चाहें तो एक कोई तो होगा गाइडलाइन कि आप 50 के बाद मत कीजिए क्योंकि आप डायबिटिक हैं, ऐसा सवाल उनका ये था जी।
2: डिपेंड करता है कि सामने जो रक्तदाता उनका उनके शरीर का
1: जी
2: कैसा अलाउ कर रहा है।
1: अगर
2: आपको है डायबिटिक है लेकिन वो स्वस्थ है
1: जी,
2: वो नॉर्मल रेंज में रहता है, उनका हेमोग्लोबिन 12 ग्राम से ऊपर रहता है
1: जी,
2: अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे हैं तो रक्तदान कभी कर सकते हैं।
1: सही बात है। एक और श्रोता जुड़ गए जी। नमस्कार रेडियो की जी, अरुण कुमार रेडियो की आवाज़ थोड़ा कम कर दें अरुण कुमार लालदास जी।
3: हाँ जी, अरुण कुमार लालदास जी सुंदरपुर जिला से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि रक्त जो होते हैं कुछ ग्रुप होते हैं, वो कितने तरह के ग्रुप होते हैं, तो इसमें से रेयर ग्रुप किसको कहा जाता है?
1: चलिए बढ़िया सवाल है। अरुण कुमार लालदास जी नमस्कार आपको, और सवाल के लिए हम डॉक्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि कितने ग्रुप होते हैं। वहाँ हम जा ही रहे थे, उन्होंने कहा था कि शाकाहारी और मांसाहारी जो भी खाना खाते हैं हम सब समान ही खाते हैं, लेकिन ग्रुप अलग अलग है।
2: ऑलरेडी बना हुआ कि एक माता हर एक, आपने पहले ही शुरुआत जब हुआ कार्यक्रम तो आपने पहले ही कह दिया था कि इसके जो जनक हैं कार्ल लिस्टनर, उनके 1901 में उन्होंने 4 तरह का ग्रुप खोज किया, ओ ए बी और ए बी, ये 4 तरह के ग्रुप आया था। उसी में आर एस फैक्टर होता है जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है
1: जी,
2: तो किन्हीं का ओ पॉजिटिव होता है, किन्हीं का ओ नेगेटिव होता है, किन्हीं का ए पॉजिटिव होता है, किन्हीं का नेगेटिव होता है, किन्हीं का बी पॉजिटिव होता है, किन्हीं का बी नेगेटिव होता है, किन्हीं का ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव होता है।
1: ये सही
2: होता है। पहले होता था क्या ओ ग्रुप को
1: नहीं, उनके उनका एक सवाल था अच्छा, मोहन पासवान जी का कि ये ग्रुप अलग अलग क्यों हो जाता है भाई, हम लोग तो आदमी सब लोग हैं।
2: ये तो बना हुआ है ना, लेकिन अलग है। अब वो ये जेनेटिक होता है कि उसमें हर एक माता और पिता से ब्लड आते हैं, माँ और में कौन सा ग्रुप था, पिता में कौन सा ग्रुप, उस हिसाब से फिर
1: फिक्स होता है।
2: लेकिन जो 4 ग्रुप बने हुए हैं
1: अच्छी
2: इस तरह से खोज किया गया, तो साइंटिफिक
1: जी
2: उस तरह से दिया गया।
1: बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, वो अगर पूरा डीप अगर हम जाएं तो एक कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसमें, क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति कहाँ से होती है ना, उसमें फर्क कहाँ से आते हैं। और लेकिन एक बात तय है

0: प्रसाद, जन्म से जिस आदमी का जो ब्लड ग्रुप है वो आजीवन वही बना रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, ये बात तो तय है। तो जेनेटिक बात है कि अब बाय बर्थ जिनका जो है वैसा ही रहेगा, है ना। आरएच फैक्टर की जहाँ तक बात है उसकी भी चर्चा हम करेंगे कार्यक्रम में आगे। आपने कहा ओ ए बी और ए बी, ये चार ग्रुप हैं, और इसी चार ग्रुप वाले जो हैं कौन किसको ब्लड दे सकते हैं कौन किसको ब्लड नहीं दे सकते हैं, ये अगला सवाल है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये भी है कि ये आरएच फैक्टर जो है वो होता क्या है, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव।
1: आरएच फैक्टर, आरएच होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है, किसमें है किसमें नहीं है। अच्छा। है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये होता है जो होता है उसमें एंटीबॉडी पर डिपेंड करता है।
0: अब हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम में कि कौन ग्रुप के लोग किस ग्रुप को दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर किनको कहा जाता है, ये सारी चर्चा करेंगे। लेकिन एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे हम बात कर लें। ये बताते हुए कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र मीडियम वेव के 231.5 मीटर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR इस ऐप पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी में आज का विषय है रक्तदान क्यों है ज़रूरी। बतौर विशेषज्ञ आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा। श्रोताओं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, फ़ोन नंबर 9430029353, इस नंबर पे। दूसरा नंबर है 0627222481। एक श्रोता इस समय फ़ोन लाइन पर है, उनसे हम कहेंगे कि एक बार फिर से नंबर हम बता देते हैं, उसके बाद आपसे हम जुड़ जाते हैं। 9430029353, 9430029353। दूसरा नंबर है 0627222481। हेलो, हेलो।
2: हाँ सर
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: हमारा नाम देवेंद्र गुप्ता हुआ, देवेंद्र प्रसाद गुप्ता।
0: देवेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, रेडियो सेट की आवाज कम कर दें।
2: जी सर, हम जो है ना रत्नपट्टी से बोल रहे हैं, मेरा दुकान है छात्र बंधु भगत सिंह चौक।
0: अच्छा अच्छा जी, गुप्ता जी आप तो हमारे हमारे नियमित श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं।
2: आप संजय जी बोल रहे हैं?
0: जी जी, मैं संजय ही बोल रहा हूँ।
2: एक मैटर पर सर।
0: हाँ बताइए।
2: कि हमसे से थोड़ा वजन हमारा बढ़ गया।
0: अच्छा जी,
2: तो हम सोचते हैं कि रक्तदान करेंगे तो वजन कम करेगा क्या?
0: अच्छा, रक्तदान के फायदे तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये सब फायदे हैं कि रक्तदान करने से आपका थायराइड, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और
2: रक्तदान करने से वजन कम हो।
0: जी डॉक्टर साहब बताइए।
1: सबसे पहले देवेंद्र जी आप नमस्कार, जब चाहिए आपका एज क्या हो रहा है परिसर, उम्र कितना?
2: वजन
0: उम्र उम्र कितनी है आपकी, उम्र बता दीजिए डॉक्टर साहब को।
2: 67।
1: नहीं आप नहीं नहीं दे सकते।
0: देखिए वजन की बात तो आप चिंता बाद में करिएगा देवेंद्र जी, है ना। आपकी उम्र 65 से ज़्यादा हो गई, 60 से ज़्यादा हो गई, तो आप रक्तदान के बारे में अभी मत सोचिए, क्योंकि गाइडलाइन यही है कि 60 से ऊपर जो लोग हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं, है ना, पहली बार। और जो लोग लगातार कर रहे होते हैं उनके लिए 65 साल उम्र, डॉक्टर साहब बता चुके हैं इस कार्यक्रम
2: में। कभी जीवन में किए नहीं, लेकिन इधर इच्छा जाहिर हुआ कि अभी वजन पेपर में भी पढ़ते रहते हैं रक्तदान का फायदा वगैरह, हम सोचे कि इधर परफेक्ट हूँ आप लोगों से।
0: देखिए देवेंद्र जी, कई बीमारियां ऐसी हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ना, ब्लड प्रेशर और कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जो लोग डोनेट करते हैं ब्लड उनमें उसका खतरा कम हो जाता है, हार्ट अटैक का भी खतरा कम हो जाता है, ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं। लेकिन एक बात के लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं देवेंद्र जी, कि आपकी उम्र तो अब रक्तदान के लिए नहीं है, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं जो कि आपको तसल्ली देगी और आपको मानसिक रूप से जो है एक अलग तरह का सुख भी देने वाली बात हम बता रहे हैं, वो ये कि आप लोगों को जागरूक करिए, है ना। उम्र दराज लोग अपने से छोटे लोगों को, समाज के लोगों को, गांव टोले मोहल्ला के लोगों को अगर जागरूक करें तो इसके बड़े फायदे हैं, है ना। कम से कम अगर ये कर लीजिए तो हम समझेंगे कि हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र।
2: हाँ।

0: अच्छा
1: चलिए, मोटापा को देवेंद्र जी, देवेंद्र जी खान पान तो थोड़ा संयमित हो और बाकी चीज़ें, लेकिन अगर मोटापे की चर्चा हम करेंगे तो कार्यक्रम में सारी चर्चा वहीं से शुरू हो जाएगी और हमारे श्रोता जो है, जो लोग ओवरवेट है वो लोग फ़ोन लगाना शुरू कर देंगे। तो मोटापे पर हम कार्यक्रम करेंगे निकट भविष्य में, मोटापे पर भी कार्यक्रम करेंगे और उस कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा। हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि मोटापे से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, ये सारी बातें होंगी। बहरहाल आपने कार्यक्रम में शिरकत की है, उसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत थैंक यू। ज़्यादा उम्र के लोग हैं और देखिए प्रेरणा इसे कहते हैं, एक जगी कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, और एक फायदे की बात अपने लिए उन्होंने सोच ली कि मेरा मोटापा कब होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर साहब, किस ब्लड ग्रुप के लोग जो है ना, वो किसको अपना खून दे सकते हैं
2: अभी के समय में? जिनका जो ग्रुप है वही ग्रुप चढ़ता है।
1: ठीक,
2: वैसे पहले था कि जो यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप को कहा जाता है और रिसिपिएंट एबी वाले को कहा जाता है
1: जी।
2: एबी वाले जो हैं सो लेने वाले हैं, सभी से ले सकते हैं, और ओ ग्रुप जो है वो सभी को दे सकते हैं, उसमें भी अगर आ रहे वो निगेटिव है तो सभी को दे सकते हैं
1: जी।
2: लेकिन ये एक्यूट इमरजेंसी, मान लें किसी ब्लड बैंक में ऐसा हुआ कि जो ग्रुप हम ढूंढ रहे और नहीं है मेरे पास कोई ब्लड ग्रुप
1: जी,
2: तो वो निगेटिव है, यूनिवर्सल डोनर है, हम दे सकते हैं।
1: अच्छा, लेकिन प्रयास यही होता है कि सेम ब्लड ग्रुप हो तो बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। अब एक एक सीधा सा सवाल यह है, एक श्रोता जुड़ गए हैं, उन्हें हम कहेंगे थोड़ी देर इंतज़ार कर लेंगे। एक सीधा सा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है ना, जैसे खून हमने दिया इंस्टेंटली, जो रक्तदाता है और जो रक्त लेने वाला आदमी है, क्या वो एक साथ ले सकता है? एक दूसरा मेथड क्या है कि ब्लड बैंक में जो इकट्ठा किया हुआ है खून वो चढ़ाया जाता है, ये बातें क्या है, क्या ये अनुमति है, क्या कि नियम क्या है?
2: नियमता होना चाहिए कि जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक हैं उनमें जो ब्लड या ब्लड अवयव रक्त अवयव जो रखे हुए हैं वो रक्त लेके मरीज को चढ़ावे तो ज़्यादा सुरक्षित है।
1: और
2: वो पिक्चरों में होता है कि आप यहाँ लेटा हुआ उसमें दोनों चढ़ रहा, वो नहीं होता है। सामने वाला जो उन्होंने रक्त दिया उनका तो हम जाँच नहीं करेंगे, उनके शरीर में कौन सी बीमारियां हैं,
1: होता है, जुड़ जाते हैं, फिर इसी चर्चा को बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: नमस्कार, हमारा नाम उमा शंकर ठाकुर है।
1: उमा शंकर ठाकुर जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: बालूघाट वार्ड नंबर 6 है,
1: दरभंगा से। बताइए क्या जिज्ञासा है उमा शंकर जी?
3: कहना था
1: जी,
3: मान लीजिए हमारा 7 वर्ष से उम्र ज्यादा हो गया तो हम खूनदान नहीं कर सकते हैं।
1: नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। आपके लड़के होंगे, आपके परिवार में जो लोग होंगे उन लोगों को प्रेरित करिए, अपने अगल बगल के लोगों को प्रेरित करिए कि वो रक्तदान करें, और जहाँ जो ज़रूरत है, जिस जो व्यक्ति मान लीजिए रक्त के बिना जिनकी हालत बहुत ख़राब है, अगर ब्लड बैंक में उनका दिया हुआ रक्त जमा है तो वो काम आ जाएगा और पीड़ित मानवता की सेवा हो जाती है इससे। ऐसा नहीं है कि किसी को आज जरूरत है
3: जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेन जो है ना मुख्य ध्येय यही है, मानवता की रक्षा हो, आदमी की जान बचे, ये मुख्य ध्येय है। जो लोग इसे बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसकी बात हम यहाँ करने की स्थिति में है भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमा शंकर ठाकुर जी। बहुत लोग इस तरह की मंशा पाले रहते हैं कि हमें इतना धन प्राप्त हो जाए तो हम ब्लड किसी को दे देंगे और हमारी कमाई हो जाएगी, ऐसा ध्येय लेके चलना चाहिए नहीं, क्योंकि ये होना भी नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है।
2: कहा गया है कि रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। हम आप जाते हैं किसी के बेटी में विवाह में कुछ खर्चा करते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन इसका विकल्प नहीं है।
1: दान देने के बाद नहीं, दान देने के बाद प्राप्ति की बात कहाँ होती है? अगर हमने डोनेट किया है तो वो डोनेट है, दान है, शब्द पर ध्यान देने की जरूरत है। दान दी हुई चीज़ें हम वापस कैसे ले सकते हैं, उस बदले में हम क्या कामना करें, ये भी बात है। एक श्रोता और जुड़ गया है। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
4: हेलो
1: जी नमस्कार, रेडियो की आवाज़ बंद कर दें। हाँ हरे राम पासवान जी, बताइए कैसे हैं
4: सर? आप लोग अपना आशीर्वाद।

0: चलिए ऊपर वाले की कृपा।
1: ब्लड ग्रुप कहाँ पर सर चेक करवा दे जो पता चल जाएगा कि है कि जी है।
0: हाँ, हरे राम पासवान जी पूछ रहे हैं सर कि ये अपने रक्त की जांच कहाँ करावे कि पता चल जाए कि ग्रुप कौन सा है।
2: उनके यहाँ जो कोई भी झंझारपुर में जो रजिस्टर्ड जांच घर खुला होगा उसमें जांच करवा सकते,
0: किसी भी जांच घर में ये जांच हो जाती है हरे राम पासवान जी, किसी भी जांच घर में, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ भी ब्लड बैंक है, जहाँ भी ब्लड बैंक है, जहाँ पर आप चाहें रक्तदान देना, वहाँ भी ये जांच हो जाती है। उसके साथ साथ और भी जांच हो जाती है, उसके साथ साथ HIV की जांच, हेपेटाइटिस की भी जांच हो जाती है,
2: मलेरिया, सिफिलिस,
0: ये सारी जांच होती है। इस पर अभी हम डॉक्टर साहब से चर्चा करने ही वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरे राम पासवान जी। कौन कौन सी जांच हो जाती है रक्तदाता
2: जब हमने क्यों रक्तदान किया, तो हम किन्हीं भी मरीज को अगर रक्त देते हैं तो उससे पूर्व हम 5 से 6 तरह की जाँच करते हैं। पहले तो उस बैग में जो रक्त लिए, संग्रह किए, उनका कौन सा ग्रुप है, पहले ब्लड ग्रुप हो गया जिन्होंने दिया, साथ में फ्री में बिना किसी का हम उनका हेपेटाइटिस बी,
0: हेमोग्लोबिन,
2: हेपेटाइटिस सी, HIV, मलेरिया और सिफिलिस,
0: अच्छा,
2: ये जांच करते हैं। अगर किन्हीं में ब्लड में ये आता है तो वो जो रिक्वेस्ट फॉर्म भरे रहते हैं उस फॉर्म में ब्लड वॉलंटियर जो ब्लड जो फॉर्म भरा रहता है रक्तदाता फॉर्म
0: जी,
2: उसमें उनसे हम मोबाइल नंबर लेते हैं, सब कुछ देते हैं। अगर किसी भी रक्तदाता में वो ब्लड निकलता है कोई चीज़ हेपेटाइटिस बी सी चाहे कुछ भी, उनके मोबाइल पर नंबर हम सूचना देते हैं, उनको ला के यहाँ पर DMCH में फ्री इलाज होता है।
0: अच्छा अच्छा,
2: यही फायदे उनको।
0: बिल्कुल, बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपने दिया रक्त दान, लेकिन दान देने के साथ उसकी हो गई 5-6 जांच, हेमोग्लोबिन का लेवल, ब्लड ग्रुप, साथ में हेपेटाइटिस बी सी और HIV, मलेरिया, सिफिलिस, इतनी जांच हो जाती है रक्त की। इसमें से अगर कोई बीमारी निकल गई आपकी, मलेरिया निकल गई, सिफिलिस निकल गई, HIV आप पॉजिटिव पाए गए या हेपेटाइटिस पॉजिटिव पाए गए, इन सब केसेस में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक कॉल जाएगा, मैसेज जाएगा, आप सरकारी अस्पताल में आकर पूरा इलाज करा सकते हैं, है ना, इतनी सुविधा। और आपको अलग से फिर जांच की क्या ज़रूरत है, हॉस्पिटल ही आपको बता रहा है ना कि आपको ये बीमारी है, आइए जांच कराइए, जांच करा ही चुके हैं, अब उसके आगे की जांच करा सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। एक श्रोता जुड़ गए हैं जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: हाँ, मैं शिवशंकर झा बोल रहा हूँ सर।
0: शिवशंकर झा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: हाँ, मैं अपना गांव लदरगांव से बोल रहा हूँ
0: जी। क्या जिज्ञासा है
3: सर? मेरा प्रश्न ये कि ये है कि कोई अगर बैलेंस डाइट खाना खाता है
0: जी,
3: ठीक है, हाँ, मतलब बढ़िया भोजन करता है, फल खाता है, सेब खाता है, संतरा खाता
0: सही,
3: है
0: सही,
3: तो उसका ब्लड, और एक जो साधारण अति साधारण खाना खाता है, मतलब जो है साधारण खाना खाता है, मतलब जो बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है, तो दोनों के ब्लड में क्या अंतर होंगे कि मतलब क्या?
0: मैं समझ गया आपके सवाल, आपके आपके सवाल के जड़ में हम पहुंच गए हैं। शिवशंकर झा जी, आप ये पूछना चाहते हैं कि आपने खुलकर बताया नहीं है, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई ब्लड डोनेट करता है और ब्लड डोनेशन के बाद उसकी जो भरपाई होनी चाहिए, तो जिसकी डाइट अच्छी है तो उसकी भरपाई तो अच्छे तरीके से हो जाएगी, लेकिन जिसकी डाइट उतनी अच्छी नहीं है तो उन्हें तो दिक्कत होगी, ये हमें लगता है डॉक्टर साहब ये सवाल पूछ रहे हैं।
2: नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो अगर कोई भी, हमने पहले कहा कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनका 12 ग्राम से ऊपर है ब्लड, वो रक्तदान कर, सारे 12 से ऊपर रहना चाहिए, रक्तदान करते हैं, उन्हें 30 से 36 घंटे में वो ब्लड पुनः उतना मैनेज कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं।
0: देखिए, समझिए इस बात को शिवशंकर झा जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि जो जो लोग एनेमिक हैं, जिनका खान पान अच्छा नहीं है, उनका जो ब्लड हेमोग्लोबिन लेवल जो है वो तो नीचे रहेगा, है ना, इस बात को समझिए। जो ऑलरेडी जिनका खान पान सही नहीं है, उनके शरीर में जो खून की जो मात्रा है वो ऑलरेडी कम होगी, और जब वो मात्रा हेमोग्लोबिन लेवल कम होगी तो उनसे रक्त तो लिया ही नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जब रक्तदान करता है, स्वस्थ व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जिसका हेमोग्लोबिन लेवल

0: मेंटेन्ड है उसके शरीर से लिया हुआ। देखिए पहली बात तो समझ लीजिए कि कितना खून आप देते हैं, कितना देते हैं, एक यूनिट में सर कितना होता है खून?
1: एक यूनिट हम लोग लेते हैं तो दो तरह के बैग आते हैं, लेकिन मेरे यहाँ DMCH में 350 ml, यानी कि जो आपके शरीर में है उसका लेस देन 10%, 4.5-5 लीटर खून रहता है, उससे लेस देन 10% ब्लड आपका निकलता है।
0: मात्र 350 ml खून एक यूनिट में लिया जाता है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वो 36 घंटा आते आते है ना, जो ब्लड सेल्स हैं, जो नया ब्लड सेल बनना शुरू होते हैं, जैसे आपने खून दिया और जो कमी आई उसकी भरपाई शरीर अपने आप करता है, और जो नया ब्लड सेल है वो उसकी जो बनने की जो सीमा होती है ना, जो गति होती है, वो तेज हो जाती है और 36 घंटे में उसकी भरपाई हो जाती है। बावजूद इसके अगर आप रक्तदान के बाद अपना खान पान बैलेंस रखते हैं, बढ़िया रखते हैं, तो मदद मिलेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। पहले भी रक्तदान से पहले भी आपको स्वस्थ रहना है, रक्तदान के बाद भी आपको स्वस्थ रहना है, और जो मानक हैं उसको लेकर के भी अब हम कार्यक्रम में वही चर्चा करेंगे कि रक्तदान को लेकर लोगों के मन में किस तरह के संशय हैं, किस तरह की मिथ्या बातें हैं, किस तरह के मिथक हैं, किस तरह की भ्रांति है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल शिवशंकर झा जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, आपके लिए आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब ये बात हो रही थी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वही खून देगा, ब्लड बैंक की हम चर्चा कर रहे थे और डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन की बात हमने कही थी कि कहीं कहीं लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं कि एक दो मरीज पड़ा हुआ है, एक लेने वाला और एक देने वाला, और ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, एक से जा रहा है दूसरे पर जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी उसके लिए क्या, हाँ बताइए डॉक्टर साहब उसके लिए।
1: जो मैंने पहले भी कहा, किसी भी, देखिए आप रक्तदान क्यों कर रहे हैं? किडनी की जिंदगी बचाने के लिए,
0: सही,
1: कुछ पैसों के लिए, कुछ ये के लिए। अगर आप बिना रक्त जांच किए हुए, उसके अवयव को जांच किए हुए आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो हो सकता है उनकी जानने बचा रहे, कोई और बीमारी उनको ऐसा दे रहे हैं, परमानेंट लाभ बीमारी दे रहे हैं उनके शरीर में,
0: सही,
1: तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हम नहीं जाँच करते हैं,
0: अगर
1: सामने वाले का HIV हो,
0: कोई HIV पॉजिटिव है,
1: हेपेटाइटिस बी हो, तो जिंदगी भर के लिए हो गया, बीमार हो गया,
0: सही बात है,
1: उनको जान तो बचाए नहीं, उनको एक तोहफा दिए और बीमारी का,
0: तो रक्षा में तो हत्या हो गई,
1: बिल्कुल,
0: ये तो बात है। तो इस तरह की बातों से बचना है, पहली बात, जो मानक हैं, जो सही जगह है वहीं पर रक्तदान करें, हर जिला अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल है,
1: जिला में रक्त ये ब्लड बैंक खोल दिया है, हर एक जिला में,
0: वहाँ जाइए,
1: सरकारी सब खुला हुआ है, वहाँ जाइए,
0: बिल्कुल वहाँ जा करके, और कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी रक्तदान शिविर लगाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप उनके लिए मतलब रक्तदान न करें, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मानक जो है, जो नियम कायदे बनाए गए हैं, वो उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपकी जवाबदेही है, ये जानना जरूरी है। ये सिर्फ रक्तदान देकर निवृत्त हो गया ऐसा नहीं है। आप पूछिए कि हमारे रक्त की कौन कौन सी जांच आप करवा रहे हैं, अगर आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, डॉक्टर साहब ने बताया है कि इस तरह की जांचें होनी चाहिए और उतनी जांचें नहीं हो रही है, तो आप मत दीजिए रक्त, क्या जरूरत है, आप पहले पूछिए कि आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, मेरी रिपोर्ट्स आप भेजेंगे, तब रक्तदान करें तो ज़्यादा बढ़िया है। दूसरी बात कि लोगों को खबर हो जाती है अपने ही बारे में, हम चले दूसरे की ज़िंदगी बचाने और हम HIV पॉजिटिव है ये पता चल गया, हेपेटाइटिस बी है या सी है ये पता चल गया, मेरा हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो डाउन है वो पता चल गया, तो इसके तो दोहरे फायदे हो गए और ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है ना कि रक्तदान को लेकर के जो भ्रांति है वो ये है कि शरीर का खून चला जाएगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे, शरीर में ताकत की कमी हो जाएगी। जो मेहनत कश लोग हैं वो तो सीधे बोलते हैं कि भैया हमको तो बहुत मेहनत का काम करना रहता है, हम खून देंगे तो हम जिएंगे कैसे, हमारे बाल बच्चा का क्या होगा। इस पर भी चाहेंगे आपसे जवाब, लेकिन उसके पहले एक सवाल ले लेते हैं, हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: जी मैं सिमरन झा, मधुबनी जिला के मधेपुर।
0: एक बार फिर से अपना नाम बता दें।
2: जी
0: अपना नाम बता दें एक बार फिर से।
2: नित्य मोहन झा
0: है ना?
2: जी,
0: बताइए क्या सवाल है, क्या जिज्ञासा है?
2: मेरा सवाल सर ये, हम लोग तो गाँव में हैं
0: जी,
2: तो यहाँ पर तो शिविर हम लोग तो करते हैं कि हम लोग अगर खून देना होगा तो हम कहाँ जाके

0: जहाँ कर सकते हैं।
1: देखिए हर जिले में जिला अस्पताल है, डॉक्टर साहब बताए हैं, वहाँ पर रक्त अधिकोष है, वहाँ ब्लड बैंक है, वहाँ जा करके आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं।
2: देखिए नित मोहन जी, रक्तदान के लिए होता है कि अगर आप या तो जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है उसमें जाकर रक्तदान करिए, या नहीं कोई संस्था है जो लगाना चाहते हैं शिविर, अगर मध्यपुर लगाना चाहते हैं और 25-30-40 रक्तदाता हैं ब्लड देने के लिए, तो आप एक एक लेटर दीजिएगा ब्लड बैंक को और टीम वहाँ आपके यहाँ पहुँच जाएगी, आपके घर पहुँचेगी ब्लड लेने के लिए।
1: अगर आपने गाँव के लोगों को जागरूक कर लिया ना नित्य मोहन जी, है ना, तो एक शिविर भी लग जाएगा आपके लिए आपके गांव में,
2: लोग देखेंगे
1: और लोग देखेंगे तो जागरूकता आएगी, है ना। तो इसका लाभ उठाइए और लोगों को जागरूक भी कीजिए। और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी आज के दिन विश्व रक्तदाता दिवस के तौर पर आज का दिन है, तो आज के दिन ये विशेष रूप से रक्तदान क्यों है ज़रूरी, इस पर भी ध्यान देना है। और ये भी ज़रूरी है कि रक्तदान क्यों है महादान, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। भ्रांतियों को लेकर चर्चा कर रहे थे, कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं जिससे लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है?
2: सबसे पहले कि जागरूकता में है कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, जिस कारण से लोग होता है कि हम ब्लड देंगे खून कम हो जाएगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, मजदूर वर्ग हैं हम काम नहीं कर पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पहले ही कहा कि कौन ब्लड दे सकते हैं, जिनका 12 ग्राम 12.5 ग्राम से ऊपर रहेगा खून, उसे कोई भी हो वो रक्तदान कर सकते हैं। एक दूसरी बात, जो लाल रक्त कण हैं उनका जीवन जो होता है 90 से 120 दिन का होता है। आप ब्लड दें ना दें, उनका टूटना और बनना ये प्रक्रिया।
1: अच्छा एक सवाल भी आया था, श्वेत रक्त कण,
2: हाँ
1: वाइट ब्लड से
2: लाल खून भी होता है और वाइट भी होता है। लाल रक्त कण जो RBC जो कहते हैं, रेड ब्लड सेल, तो उसके बारे में बताते हैं कि 90 से 120 उसका लाइफ होता है। आप दीजिए नहीं दीजिए, उसका टूटना और फिर नया बनना ये प्रक्रिया शरीर में चलते रहता है। हम जो बैग में लेते हैं 350 ml, उस बैग से हम एक मशीन होता है कंपोनेंट मशीन, उस मशीन में डाल के वाला करते हैं वाइट, जो ब्लड आपने कहा हमने वो प्लेटलेट बनाते हैं और प्लाज्मा बनाते हैं। जब कभी डेंगू फैलता है जी, प्लेटलेट लेवल घटता है तो वही प्लेटलेट जो है काम आता है। यानी एक आदमी से हम अगर लिए उस टाइम पे हम ब्लड, हम तीन चीज़ बनाए तो तीन आदमी की जान बच सकती है उसमें।
1: अच्छा एक यूनिट में
2: जी तीन आदमी जान बच,
1: तीन व्यक्ति की जान बचाई जा सकती
2: जी,
1: है
2: जी बिल्कुल,
1: अलग अलग तरीके
2: जी,
1: से प्लेटलेट्स, जिसका प्लेटलेट्स काउंट कम है वो प्लेटलेट्स चढ़ा करके, जिसे ब्लड की जरूरत है उसे चढ़ा करके, तो ये फायदे हैं।
2: ये बर्न केस है उसमें प्लाज्मा और चढ़ता है,
1: प्लाज्मा उसको लेकर के भी। तो एक तो बात आपने कर दी डॉक्टर साहब, सारे लोगों को ये आपने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि रक्तदान कौन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते हैं, रक्तदान को लेकर के जो है कौन कौन सी जांच होती है, रक्त अधिकोष में जो जमा होता है क्या उसकी भी लाइफ होती है?
2: हमारे शरीर में जब तक ब्लड है वो सुरक्षित है जी, आप कभी भी रक्तदान कर सकते हैं।
1: नहीं एक ब्लड बैंक में जो रखी हुई हाँ, जी, जी,
2: लेकिन जब एक शरीर से निकल गया बैग, बैग में जब हम बैग ले लिए तो उसके अलग अलग उसके लाइफ होते हैं।
1: अच्छा।
2: जो RBC वाले लिए हम होल ब्लड जिसको होते हैं या उसका लाइफ 35 दिन का होता है। अच्छा। जिस दिन से निकाले उस दिन से हम 35 दिन तक
1: उसका इस्तेमाल कर लेते हैं,
2: उसको हम लोग 35 दिन का उसको इस्तेमाल कर लेना है। जो प्लेटलेट है उसका लाइफ मात्र 5 दिन होता है।
1: अच्छा।
2: 5 दिन अगर खत्म कर तो खराब होगा। प्लाज्मा है उसका लाइफ 1 साल होता है।
1: अच्छा जी। तो जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बात और भी है कि आपने ये बताया कि रक्तदान देने को लेकर के इतनी बातें हैं, लेकिन एक सवाल जो आया था ना कि हॉस्पिटल में अस्पताल में जब हम जाते हैं किसी अपने परिजन अपने घर के परिवार के किसी लोग को या किसी भी परिचित के लिए खून की ज़रूरत जब पड़ जाती है तो बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, ये भागदौड़ क्या है?
2: ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए पहले भी कहा गया अभी मैं बोल रहा हूँ कि रक्त कहीं बनाया नहीं जाता है,
1: ठीक,
2: इसलिए इसको रक्तदान महादान कहा जाता है। और जो मिथक था वो हम तोड़ देते हैं, हम अगर रक्त देते हैं तो हमें आपको ब्लड दिया जाता है। अगर DMCH में आप

0: हैं, तो एक्सचेंज आपने जो ब्लड दिया बदले में जो आपको डिमांड है वो ग्रुप आपको दिया गया
1: जी।
0: प्राइवेट में। कोई भर्ती होता तो गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग फी 500 रुपये लगता है, वो भी नहीं लगेगा आपको, यहाँ डीएमसीएच से फ्री है,
1: अच्छा
0: फ्री ब्लड दिए देना पड़ेगा, मतलब मिल जाएगा आपको, फ्री में ब्लड चढ़ेगा, सब इलाज फ्री में सब कुछ होगा।
1: अच्छा, बड़े बड़े शहरों में तो कई जगह पर ब्लड बैंक हैं जहाँ से ज़रूरत के मुताबिक खून उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जहाँ पर कम है तो ऐसी स्थिति में लोगों को दूसरी जगह उसके लिए व्यवस्था करनी होती है, तो क्या व्यवस्था है उसमें, रिक्विजिशन लेकर जाना पड़ता है?
0: उसमें जो है, अगर मान ली कोई दूर दराज में है, दरभंगा शहर में ही मेन टाउन में 5 ब्लड बैंक हैं, लेकिन कोई बिरौल खुजरस्तान से आते हैं
1: जी,
0: तो उनको जो है हॉस्पिटल का रिक्वेशन फॉर्म आना चाहिए, साथ में पेशेंट का ब्लड सैंपल चाहिए,
1: ठीक,
0: और कोई रक्तदाता से जो ब्लड देंगे,
1: ये लेकर अगर आ जाए आपके यहाँ डीएमसीएच में तो उन्हें
0: उपलब्ध जी उपलब्ध जो ब्लड रहता है उनको दिया जाता है।
1: अच्छा, एक बात और भी, जो नेगेटिव खून, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, जिसकी उपलब्धता कम होती है, उसको लेकर के एक बड़ा

0: खून उपलब्ध हो जाता है
1: जी।
0: लेकिन जहाँ पर कम है तो ऐसी स्थिति में लोगों को दूसरी जगह उसके लिए व्यवस्था करनी होती है, तो क्या व्यवस्था है उसमें, रिक्विजिशन लेकर जाना पड़ता है?
1: उसमें जो है, अगर मान ली कोई दूर दराज में है, दरभंगा शहर में ही मेन टाउन में 5 ब्लड बैंक हैं, लेकिन कोई बिरौल खुजरस्तान से आते हैं
0: जी,
1: तो उनको जो है हॉस्पिटल का रिक्वेशन फॉर्म आना चाहिए, साथ में पेशेंट का ब्लड सैंपल चाहिए,
0: ठीक,
1: और कोई रक्तदाता से जो ब्लड देंगे,
0: ये लेकर अगर आ जाए आपके यहाँ DMCH में तो उन्हें
1: उपलब्ध जो ब्लड रहता है उनको दिया जाता है।
0: अच्छा, एक बात और भी, जो नेगेटिव खून, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, जिसकी उपलब्धता कम होती है, उसको लेकर के एक बड़ा उहापोही की स्थिति हो जाती है, ऐसे में क्या
1: तो करें? लेने वाले भी कम और देने वाले भी कम, क्योंकि बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो जब रहता है तो उन्हें दिया जाता है ब्लड। जैसे कि पहले अपने कहा कि जो ब्लड निकल गया शरीर से उसका लाइफ होल ब्लड का हो गया 35 दिन के लिए, तो हमको उसको निकालना है, लेकिन कभी कभी दिक्कतें होती
0: हैं। चलते आज के दिन विश्व रक्तदाता दिवस है, क्या कहना चाहेंगे, कौन सा संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
1: हर एक बार अलग होता है, इस बार जो हमारा है कि वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, जो थीम जो है, वन ड्रॉप ह्यूमैनिटी जो है वो गिव ब्लड और सेव लाइफ। तो जो कोई भी मेरे रक्तदाता हैं, रक्तवीर हैं मेरे, वो अपने स्तर से दूसरे को कन्विंस करते हुए, हम लोगों से जहाँ तो होगा, पत्राचार के माध्यम से, रेडियो से, दूरदर्शन से, जैसे भी जिस मीडिया से सूचना दे के रक्तदान करवाएं। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, इससे अपने भी अपना भी फायदा और दूसरे को भी जान बचता है।
0: तो ये कहते हुए कि अपना लहू भरकर लोगों को बांट गए पैमाने, लोग दुनिया भर को याद रहेंगे हम जैसे दीवाने लोग। हेलो जिंदगी में आज का विषय था रक्तदान क्यों है महादान। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार, इंचार्ज रीजनल ब्लड बैंक DMCH दरभंगा, आपने अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण समय आज के दिन खासकर हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप लोग धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, मिलेंगे अगले रविवार को दिन में 11 बजे किसी और विषय, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक असद दाऊद के साथ साथ आप सबको विश्व रक्तदाता दिवस की शुभकामना देते हुए संजय को विदा दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: अपना सब लेल समय निकालब ओहो बड्ड पैघ कला अछि। काजक ततबा भार रहैए जे ठोर पर हँसी सदिखन बिलैले रहैत अछि। एहि गपसँ अहाँ सब सहमत छी आ कि नहि? हम ई गप तैँ कहलहुँ जे एक दिन हमरा ओहिठाम एकटा सखी बुलऽ अयली। मुँह पर हुनका 12 बजैत, हमरा हँसैवला स्वभाव अछि। हुनका देख कऽ हमरो अपना आपके बदलऽ पड़ल। हम पुछलियनि जे मुँह किया एतेक लटकल अछि, एहिसँ स्वास्थ्य पर असरि पड़ैत अछि। कहलनि, की कहू, घरक दायित्वसँ ततेक ओझरायल रहै छी जे कखन अपना लेल समय निकालू से फुराइते नहि अछि। आ अपन सखी सबसँ गप कऽ सकी आ हँसि बाजि सकी। पहिने सखी सभक सङ्ग खूब खेलाइ छलहुँ, सभक सङ्ग घूमै छलहुँ। कखन भोरसँ राति होइ छलै से नहि बुझै छलहुँ। कितकित, गोटरस, कबड्डी, कमलक फूल, कते रास खेल सब छलै जे खेलाइ छलहुँ। आब तऽ ई खेल सब बुझाइए लुप्ते भऽ गेल। ने आब ओ देवी ने ओ कराह, जीवनक गुणधुनमे सदिखन लागल रहैत छी। हुनका कहलियनि जे खूब हँसैत रहू जाहिसँ कि स्वास्थ्य नीक रहत। तखन ओ कहली जे अहाँ ठीके कहै छी, हँसनाइ 100 रोगक दवाई अछि आ गीत गुनगुनेनाइ निरोग रहबाक लेल एकदमसँ अनिवार्य अछि। गीत नाद सुननाइ आ गेनाइ स्वास्थ्य लेल बड्ड पैघ उपचार अछि। आत्माके परमात्मासँ जुड़बाक माध्यम अछि संगीत। अपन सभक संस्कृतिमे संगीत मात्र कला नहि अपितु भक्ति, ध्यान, योग आ दैवीय ऊर्जाक माध्यम सेहो अछि। भगवान श्री कृष्णक प्रिय वाद्य यंत्र बाँसुरी जे स्नेह, प्रेम, राग आ सहजता आ आत्मीयताक प्रतीक अछि, जीवनके मधुर तखने बना कऽ राखि सकैत अछि जखन मोनसँ पवित्र होय। राग द्वेष नहि रहय तखने गीतक राग, लय, ताल आ एकर धुन बुझि सकैत छी। अपन भावनाके बुझेबाक लेल गीत सबसँ सशक्त आ पैघ माध्यम अछि। तऽ सुनै छी ई सोहर सुषमा कुमारीके स्वरमे, मुदा पहिने ई संदेश।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: ये था हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला कार्यक्रम सखी बहन।
1: सखी बहन, नमस्कार सखी बहन, की हाल समाचार अछि? नीके छी ने? रवि दिन ठीक 12 बजे अहाँ सबसँ गप करै लेल आबि जाइत छी। सब गोटेकेँ हार्दिक स्वागत अछि अहाँ सभक अपन कार्यक्रम सखी बहिनमे। कहैटा लेल रवि छुट्टीके दिन अछि, कखनो अपना सब लेल फुर्सत भेनाइ दुर्लभ चीज अछि, अलभक लाभे बुझू एकरा।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: संदेश से पहले हमरा लोकन ई गीत सुने छलूं। हमरा आशा अछि जे ई गीत अवश्य सब गोटे के नीक लागल हैत। ई गीत सुनकर केहन लागल कहब तखने न बुझो में आयत, से अवश्य कहब। हमरा तो बड्ड नीक लागल, पसीन तो सबक अपन अपन होई छे, की सखी ठीके कहलो न। काज रोजगार से हो अपना सब रुचि अनुसारे करे छी, पसीनक हिसाबे करे छी। जाहि काज में मोन लागे वह काज करबाक चाही, तखन ओ काज अबूह नहीं लगैत अछि। आजुक समय में ई नहीं छे जे सरकारी नौकरी भेटत तखने काज करब, दोसर काज नहीं करब। स्वरोजगार सबसे पैघ माध्यम अछि, कौशल विकास दिस सब गोटे आगू बढ़ रहल छी। घर बैसल बहुत तरहक काज अपन बहिन सब कऽ रहल छथि, आ अपन घरक अर्थव्यवस्था सेहो सुदृढ़ कऽ रहल छथि, आ दोसरो के रोजगार दऽ रहल छथिन। एहि विषय से संबंधित आजुक कन्या अपन विचार अहाँ सबके कहती। आजुक कन्या छथि विनीता जी, जे कुशल गृहिणी त छथिये, संग संग घरेलू उद्योग में हिनक सहभागिता रहै छनि। समय निकाल कऽ एहि में ओ सदिखन लागल रहै छथि। तऽ सुनै छी हिनक गपक किछु अंश, मुदा पहिने ई संदेश।
0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट

0: अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: नमस्कार, हम विनीता सिंह। घरेलू उद्योग में महिला के भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि। महिला घर में बैसकर अपन उद्योग शुरू कऽ सकै छथि, एहि ले हुनका रोज के काज में से कनी टाइम निकाल कर अपन घरे में घरेलू उद्योग शुरू करै छथि, जैसे हुनका आर्थिक मजबूती के संग संग सम्मान सेहो प्राप्त होइ छनि। महिला के द्वारा घर पर अचार, पापड़, मोमबत्ती, सिलाई कढ़ाई करे से परिवार के अतिरिक्त आय सेहो होइ छे, जैसे जीवन स्तर में सुधार होइ छे। अपन कमाई करे से महिला सब के आत्मविश्वास सेहो बढ़े छन। घरेलू उद्योग के माध्यम से महिला सब में जे हुनर होइ छे ओकरा संरक्षण सेहो होइ छे, जेना बुनाई, मधुबनी पेंटिंग, कढ़ाई और एकटा वैश्विक बाजार तक पहुंच जाए छे, जैसे ई सब घर तक सीमित नहीं रहकर दोसर लोग तक सेहो पहुंच जाए छे। घरेलू उद्योग के माध्यम से बहुत महिला समूह से जुड़ कर साबुन, वॉशिंग पाउडर, जैविक खाद जेना बनबै छथि, एहि से ओ अपना संग संग महिला सब के सेहो काज में लगबै छथिन, जैसे आइ काल्हि घरेलू उद्योग के सरकारी योजना के बहुत लाभ भेटै छै, जेकर कारण ओ बहुत कम लागत में घरेलू उद्योग शुरू कऽ सकै छथि आ अपना के सशक्त बना सकै छथि। अपन मिथिला में बहुत महिला घरेलू उद्योग के माध्यम से बिरिया, अदौरी, कुमरौरी, चिप्स आ अम्मट के बिजनेस करै छथि, जेकर कारण एक तो हुनका नीक बाजार भेट जाय छन आ दोसर जे लोग घर से दूर रहे कारण ई चीज के मोन लागल रहे छे जे काश ई सब चीज हमरा होते से आप हुनका सबके आसानी से भेट जाय छन।
0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
2: विकसित भारत आ स्वस्थ भारत तखने भ सकैत अछि जखन सब महिला सब आत्मनिर्भर हेती आ अपन स्वास्थ्य के प्रति सजग हेती, ओकरा नीक रखबा लेल सब दिन योगा सेहो करती। जेना प्रतिदिन अपना सब खूब नीक नीक खेनाए बनबै छी, भोजन करै छी, ओहिना व्यायाम ओतबे आवश्यक अछि। ओना अपना सब भोर से लऽ कऽ राति धरि खटिते रहै छी, मुदा शरीरक वजन घटे के नामे नहि लैत अछि। एकर कारण अछि चिंता, तनाव आ उचित समय पर खेनाई नहि खाइ छी, कोनो रूटीन नहि अछि। एहनो बहिन सब छथि जे मशीन पर निर्भर नहि छथि आ सबटा काज अपन हाथे से करै छथि, हस्तकला में निपुण छथि, कुरूस के काज करै छथि आ ओहि से टेबल क्लॉथ, पर्दा, पैर पोछना ई सब बनबै छथि। आ केओ बहिन अदौरी, कुम्हरौरी, पापड़, अचार से सब बनबै छथि। एहिमे उपयोग होइवला सामान सबके जे छै एकर जे मसल्ला होइए तऽ ओकरा सिलौटे पर पीसै छथि। तऽ जतेक अपना सब शारीरिक परिश्रम करब ओते शरीर से स्वस्थ रहब। जेना पहिलका लोक सब सबटा कुटिया पिसिया हाथे से करै छलथि, शारीरिक परिश्रम

परिश्रम जतेक करब ओतेक स्वस्थ रहब आ स्वस्थ मनोरंजनक समावेश रहत ओते सुख शांति आ समृद्धि सदिखन बनल रहत आ जखन मन प्रसन्न रहैए तऽ निरोग रहबे टा करब तखन। तऽ आब कार्यक्रममे सुनै छी फिल्म संगीत, स्वर छनि लता मंगेशकरके। तऽ सुनी ई गीत।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: किहनो विकट से विकट समस्या क्या ने रहे, गप्पे केला सा एक दूसरा के बुझला सा समाधान होते सखी सब। सखी जेका व्यवहार सब संबंध में भ जाते तो जिंदगी एकदम सुचारू ढंग से चलते, आसान भ जाते आ प्रसन्नता से भर जाते। कखनो मोन घोर नहीं रहिए, किएक तो जखने मोन में कोनो तरह के चिंता फिकिर पैस जाइए तो अनेरो अहाँ के काज करमा में मोन नहीं लागत। अखन कहलो गेल जे धियापुता जखन पैघ भ जाए तो मित्रवत व्यवहार करी, तो मित्रता माने समानता। तैं अपना सब प्राय देखै छी जे गप अपन माता पिता से नहीं करे छी ओ अपन सखी संग करे छी। सखी संग बहुत रास गप अपना सब के भ जाइए, मन होइए जे सबटा गप हुनका कहि दी, किएक तऽ ओहिमे कोनो तरह दबाव नहीं रहैए। सखी बहिन भानस भ जाइए तखने गप्पो करे में मन लगैए, आब सखी से गप करे लागब आ भानस नहीं करब तो फिर घर के जे छे संतुलन से बिगड़ जात। तो हम आब गेलहुँ आ भनसा घर में, तो सखी सब अहाँ सब की सब बनबे छी आ कौन कौन काज में रुचि अछि, ओकरा अहाँ अपन पत्रक माध्यम में वा ईमेल के माध्यम में अवश्य सूचित करी। तो उठाओ कलम आ लिखू पता, कार्यक्रम सखी बहिन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड 8460004 आ ईमेल के पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तब बिसरब नहीं सखी, किएक तऽ अहाँ सबक सुझाव आ प्रतिक्रिया के प्रतीक्षा रहित अछि। जा धरि कहब नहि तऽ बुझब कोना। आ सखी बहिन भानस भ जाइए तखने गपो करे में मोन लगैए, नहीं तो ओही पर मोन टांगल रहैए। हमरा तो एहि बीच में ततेक केस झड़ लागल जे की कहूँ, अहूँ सब किछु उपाय बताबी जे केस नहि झड़ै, किएक तऽ जखन भानस करऽ जाइ छी तऽ अरवैध के केस खेनाइए में पड़ि जात। तऽ बुझिते छियै मोन केहन बिचकि जाइए, अपनो तऽ होइते जे खा रहल छथि हुनको मोन घोर भऽ जाइ छनि, तैं भानसो करऽ में मोन नहि लागि रहल अछि। की कहूँ, खेनाइ बनबै काल ध्यान राखऽ पड़ैत अछि ने। हम किछु उपाय केलहुँ से अहाँ सबके कहैत छी, आ अहाँके जे किछु उपाय बुझल अछि से अहाँ अवश्य कहब सखी। जखन रौदमे बाहर निकली तऽ माथके सूती कपड़ासँ खूब नीकसँ झाँपि ली। पानिक सेवन तऽ गर्मीमे सब गोटे बेसी करिते छी, नहियो प्यास लागल रहैए तैयो अपना सब पानि पी लै छी, कमसँ कम 8-10 गिलास पानि पीब ली। आ अखन खीरा तरबुज्जा जतेक पानिवला फल सब अछि ओकर सेवन कयलासँ सेहो पानिक कमी दूर होइए। पानिक कमीसँ केश एकदम रुख भऽ जाइए आ कमजोर भऽ कऽ पातर भऽ जाइए। खेनाइमे प्रोटीन लेल दालि खेनाइ अछि, हरियर तरकारी फल इहो अवश्य खेबाक अछि, किएक तऽ एहिमे पोषक तत्व बेसी रहैत अछि जे केशके झड़ैसँ रोकैमे मदद करैत अछि। आ सङ्ग सङ्ग एलोवेरा जेल के सेहो व्यवहार करब सखी। दही आ बेसनमे कनि नेबो गाड़ि देबै आ ओकरा कमसँ कम 15-20 मिनट तक केशमे लगा कऽ छोड़ि देबै। आ नारियल तेल के सेहो व्यवहार करब, अखन देहो सबमे जे लगा लेब तऽ ओहिसँ की हैत जे देह नोचत नहि, पसीनासँ सेहो जे

से एकदम से केस चिट चिट भ जाइए त केस के हरदम बान के राखब से बड आवश्यक है। केस फहरा के नहीं चलब नहीं तो बेसी केस खराब हैत। हमर प्रयास रहते जे सब बहिन सब एहि कार्यक्रम सब बान्हल रहत कतौ जात नहीं आ कार्यक्रम सुनैत रहत। अहिना तो देखू सखी बहिन भानस भात में आइ हम एकटा चीज बनेलू नव चीज सीखलूँ एकटा सखी से खेसारी साग के बिरिया बनेलू। ओ बिरिया जखन खूब निक से सुखा गेल तहन ओकर तरकारी तो बनबते छी आलू बिरिया सरसो द क आ एकर बिरिया के की केलूँ आइ हम एकर सन्ना बनेलूँ। तो बिरिया के की केलूँ खूब निक से करू तेल में ओकरा भूजि लेलूँ आ भूजि क ओकरा एकटा बाटी में निकाल क आ खूब निक से ओकरा सानि दिलिए। ओहिमे हरियर मिर्चाई कनी नेबो आ कनी प्याज अगर खाइ छी तो दियो ओहिमे आ खूब निक से ओकरा सानि लियो। देखबे केहन चटकदार ओ लागत। ओकरा चौरक रोटी संगे जे खाएब या मकई के रोटी तो ओकरा संगे जे खाएब तो बड स्वादिष्ट लागत। हमर सभक कार्यक्रम अहिना निरंतर अहाँ सब सखी बहिन सुनैत रही आ अपन विचार अपन सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पठबैत रही। तो समय आ अनुशासन से बान्हल रही यह जीवन के गति दैत अछि। जेना नदी कखनो रुकैत नहि अछि आ कठिन रास्ता से निकलैत निरंतर बहैत रहैत अछि। ओहिना सखी बहिन अपनो सब अहिना मेहनत आ परिश्रम से आगू बढ़ैत रही सदिखन प्रसन्न आ स्वस्थ रही यह मंगल कामना के संग अहाँ सब से लै छी विदा। एहि कार्यक्रमक प्रस्तुतकर्ता असद दाऊदक संग हमरा यानी नीतू के चलबाक आज्ञा दिय। नमस्कार सखी बहिन। सखी

बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम सखी बहन, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। लीजिए अब सुनिए मैथिली नाटक नबीना।

0: नवीना नवीना के बाप कता गल थुन ककरो से महिषो दुहाली तथिन से नहीं एहन ताल नहीं देखल के बजट की हो
1: की
0: कहे छा महिष दुहल जत कि नहीं बाप कता छथुन
1: दलाने पर ताश खेलाई खाती
0: हाँ ताशे खेलने गुजर चलता हमरा की अब ये बउआ तो कहे छे एक नौकर महिषे दुहल राख ला हिनका बुते कोनो काज नहीं हेतन
2: की ठीक कहे बड अनखोल कहने छी
0: भोरे से हल्ला कर रहल छी आ एखन धरि महिषो ने दुहल गेले एहि घरक रक्षा भगवान एक हाथ छै
2: हाँ ओ चिंता बुझू जे अही के नहीं हमरो अछि इदम लखना के तब भोरे ढलेल बा कहि आयल हेतै है ओ आबिते हैत
0: बेटी से विवाह जो कर भेल जाइए मुदा अहाँ के तकर कोनो चिंता नहीं
2: हाँ से तो सत्य एतेक दिन तो बुझू जे हम स्वयं ध्याने नहीं दे छलो कारण नवीनाक पढ़ाई चौपट भ जतेक मुदा आब तो बुझू जे ओ मैट्रिक पास कइए गेल अछि
0: कतौ कोनो बार ध्यान में आयल कि नहीं
2: हो ध्यान में तो आयल अछि अवश्य रामपुर में बुच बाबू के एकैटा बेटा छ जमीन जथा सेहो बुझू जे 5-7 बीघा हेबे करते बर एहि साल बीए में नाम लिखौलक अछि आपत्ति एतबे छै कि

0: जे ओ कनेक बछौने सन लगे छे।
1: नहीं गे दाई, हम ई काज नहीं करब।
0: से किया किए
1: अहाँ के तक खाली खर्चा डर हो मुदा काल भेने सब दूर छिया कर लागत तेकर चिंता नहीं होइए।
0: से धैर्य यथार्थे कहे छे, दोसक मुंह में झीक देव बुझू जे बड्ड कठिन होइ छे।

0: भौजी, ये भौजी।
1: हाँ हाँ, या एलो।
2: ओ नवीना दाई, आओ आओ ए पतिया पर बैसू। अच्छा कहू बउआ, गरीबक आंगन में पैर देवाक मन कोना भ गेल?
0: अहू बड़ गप दै छियै भौजी। अच्छा छोड़ू, अहाँ जे बहिना के दस्ताना बनेनाइ सिखा देलियनि से हमरो सिखा नहीं दिया?
2: अवश्य सिखा देब। अहाँ सबटा सामग्री लऽ कर एक दिन चैन से आओ, हम छानि देब आ किछु आगाँ बढ़ा देब।
0: अच्छा,
2: अपने सबटा भऽ जायत।
0: हाँ भौजी।
2: हाँ हाँ,
0: एकटा बात पूछू।
2: की?
0: हम सब कॉलेज में नहीं पढ़ सकै छी की?
2: किएक नहीं पढ़ सकै छी? हमर तऽ भाय बहिन सब मधुबनी कॉलेज में पढ़ैया। ऐ धन सम्पत्ति कोनो चीज छैक, जे बनि जायत से बनि जायत।
0: मधुबनी में तो अहाँ के नहिरा के डेरा अछि ने, तैं सुविधा अछि। हम सब कोना कत डेरा दऽ सकबै? आ रिक्शा से यदि गामे से जाय आबी तो 15 टका रोज ओकर भाड़ा लागत। बाबूजी से कंजूस छे जे खर्चक नाम सुनकर आगा पढ़ेबाक नामे नहीं लै छथि।
2: अय दाय, अहाँ कनेको चिंता नहीं करी, हम अहाँक माँ से गप करी छी। जखन पढ़वाक इच्छा अछि तो बाबूजी किएक नहीं कॉलेज में नाम लिखा देता?
0: हाँ ये भौजी, कनी अहीं गप कऽ कऽ देखियौ।
2: हाँ हाँ,
3: गोर लगै छौ दीदी।
2: नीके रह बाब, कोना कोना एल? हाल समाचार नीक छे ने?
3: हाँ हाँ, हाल समाचार तो बड़ बढ़िया।
2: माँ बाबूजी सब नीके छथुन की ने?
3: हाँ, सब बड़ प्रसन्न छथुन। दीदी,
2: हाँ,
3: ई बालिका के छलथुन?
2: ई छली नवीना, ओइ टोलक उमेश बाबू के बेटी। मुदा से किएक? तोरा पसिन पड़ गेलखुन की?
3: एह, तोरा तो तेसरे अर्थ लाग जाय छौ। तो कॉलेजक नाम लेलही ने, तैं हमरा उत्सुकता भेल।
2: हाँ रे बउआ, ओ बेचारी मैट्रिक में फर्स्ट भेली है, आगा पढ़वाक इच्छा छन मुदा बाप पढ़ावे नहीं चाहे छथिन।
3: मुदा उमेश बाबू तो सुनै छी बड़ धनिक लोग छथि, बेटा मेडिकल में पढ़े छन, तखन बेटी के पढ़वा में आँखि किएक लगै छन?
2: बाप रे, दूर से अहिना सबके सब धनी के बुझ पड़ै छै, मुदा जकरा बाहरी आमदनी नहीं छै तकर कोन हाल छै से तो हम ही सब जनै छी। उमेशो बाबू लोकनिक आब ओ हाल नहीं ने छन?
3: ऐसे जे होइन, मुदा ओहन बढ़िया बेटी के पढ़ेबा में कंजूसी नहीं करबाक चाहिए।
2: अच्छा छोड़ ए बात के, अपन पढ़ाई लिखाई हाल का। अरे कहिया धर एम ए पास करबे? हे तोहर विवाह दुरागमन देखल मोहन लागल।
3: हाय रे मिथिलाक नारी समाज, केवल सौखे चहनता में लागल रहत, भविष्यक कोनो चिंता नहीं। आ ताहि पर सब विध व्यवहार भेले ताके, भने घर में किछ रहे कि नहीं रहे। दीदी, हमर विवाहक अखन कोन समय भेले के? अगला साल एमए के परीक्षा हैत, फिर 2-3 साल पीएचडी में लागत, तकर बाद नौकरीक जोगाड़, आ तकरे बाद विवाहक कोनो चर्चा हेबाक चाहिए कि नहीं?
2: दाय गे दाय, ता धरि तो बूढ़े भ जेबे रे, विवाहो दुरागमन समये पर निक लगै छै। मुदा आइ काल्हि तऽ दुनिया उल्टा भ गेलैया, बुढ़वा बुढ़िया सबक विवाह होइ छै। पछिला मास कारी बाबूक धाकर सन बेटी के विवाह भेलनि, आ से जमाइयो तेहने भेलनि, बड़का बड़का मोछ वाला। मुदा एहन कतौ विवाहो भेलैया?
3: दीदी, विवाह करब कोनो कठिन नहीं छै, कठिन छै ओकर प्रतिपाल करब। तैं जा धरि अपन पैर पर नहीं ठाड़ भ जाय ता धरि विवाह नहीं करबाक चाही। हम ओहो लोक में से नहीं छी जे विवाह दुरागमन धिया पुता आ पढ़ाई लिखाई सब सासुर के भरोसे करैत।

0: डार में दम्मे ने अब बाजार में धक्का।
1: दाई गे दाई, हमर भै ससुर के किछ खर्च नहीं हो देते, बात बात में सासुरे को पाट लेते। एह एहन कल जुगाड़ नहीं देखल।

0: की कहु भोला बाबू हमरा बुझू जे अहां लोकनिक आशीर्वाद से तीन टा कन्या अछि हम चाहे छी जे ओकरा लोकनिक विवाह में हमरा बुझू जे अधिक खर्च नहीं करा पड़े मुदा बेटी सब कहुना सुखित घर घर में चल जाए हो
1: और जे किने से सब किछ ठीक भ जते उमेश बाबू अपने चिंता नहीं कैल जाओ पहिने जे किने से ई त कहल जाओ जे अपने के काज केहन कर चाहे छी
0: देखू भोला बाबू हम ई नहीं चाहे छी जे बर बहुत रास पढ़ल लिखल फेले ताके हाँ बुझू जे पढ़ल कम्मो होइक तै नहीं हर्ज मुदा जमीन जथा किछ अवश्य हेबाक चाही बुझलौं कि नहीं वही दुआरे पूछू जे हम बेटी सबके बेसी पढ़वैयो नहीं चाहे छी
1: जे किने से अपने कन्या सबके अधिक कियाक ने पढ़वो चाहे छी उमेश बाबू ओ आब त जे किने से बर सब पहिने ही पूछ देत छै कि जे कन्या कतेक पढ़ल छै
0: से नहीं बुझलौं घटक राज हमरा लोकनि के आब तो ओ सामर्थ रहल नहीं जे बुझू जे 70-80 हजार टका गइन क बेटीक विवाह कर
1: हाँ
0: जो बुझू जे अधिक पढ़ा देबे तो ओहने बड़ो न ताक पड़त
1: हाँ
0: रमेश बाबू अपन बेटी के एमए तक पढ़ौने छल तै हुनका ओकरा जोगर बड़े ने भेटे छल न
1: बड़े ने भेटे छल और तखन फिर कोना की भेलन
0: हेते न की रमेश बाबू सोचे छला जे हमर बेटी ते एमए अछि तै एकरा में टका लगबाक नहीं चाही मुदा जखने कोनो सुयोग परक बाप लग जाय छला न तो बुझू जे ओ अपन मुहे घुमा ले छला
1: कहो
0: आ कहे की छले न
1: हाँ
0: हमरा बेटा के एहि साल विवाह नहीं करबाक अछि
1: तखन त जे किने से रमेश बाबू के बड़ झंझट भेल हेतन ओ फिर कोना की भेलन
0: ओ जी हेतन की झक मार का बेचारे के एक ता इंजीनियर बड़ खेतु 1,00,000 टका गनो पड़ले आ घर में जतक जे छले न
1: हाँ
0: से सबटा ओही में झोंका पड़ले
1: ए जे किने से कोनो बात नहीं आब बेटियो जे किने से हुनके न सुख करते न रमेश बाबू की जान बचता नहीं तो सबटा सधिए जे
0: ओ जी सधते न की कपारियो है आब तक दोसर बेटी विवाह कोना हेतन से बुझू जे तीनू लोग सुझे छन हुनका ओ जखने पहिल में उत्ते खर्च पड़ी गेल तो दोसर बेटी के तो बीए में रोक ले लन
1: हाँ
0: आ तेसर के बुझू जे आईए में लटकौने छै
1: जे किने से सब बात बुझ गेलौ अपने जे किने से निश्चिंत रह
0: हाँ हाँ भोला बाबू हमरा बुझू जे अहाँक बहुत भरोसे हम चाहे छी जे 3-4 वर्ष में कहुना तीनू बेटी पार लाग जाए बस हम गंगा स्नान कर ले आ अहुक जे उचित पारिश्रमिक हैत से त भेटबे करत
1: हाँ हाँ से सब त जेखिन से हेबे करते के सबटा भगवती खात में छन अच्छा नमस्कार
0: मुदा ध्यान रखबे कने भोला
1: बाबू
0: नमस्कार

0: आब हम बुझलहुँ कि नहि अहाँ किएक नवीनाके कॉलेजमे नाम नहि लिखाबऽ चाहैत छी। सदिकाल अहाँ हिसाबे जोड़ैत रहैत छी, अहाँ सन कंजूस संसार भरिमे दोसर नहि हैत।
1: ये दुनिया संसार कोना चलैत छै से की बुझबै कहाँ। हमरा लोकनि जी जानसँ कमाइत रहू आ अहाँ लोकनि बुझू जे ओकरा चुल्हिमे खूब फूकैत रहू।
0: हँ यौ, हमरा लोकनि फूकनी छी कि नहि, कहलकै जे ओझा लेखें गाम बता आ गामक लेखें ओझा बता।

0: कनेक हमरा जोड़ाउ त की सब फुक के उड़ा देलौ
1: आहा हम त केवल अही के नै न कह रहल छी हम त समस्त मैथिलानी के कह रहल छी विश्व भर में सबसे अधिक पावन तिहार बुझु जे एतै होइत अछि
0: आन देशक मोगी सब के ने एतेक लुइर छै आने हृदय में दरेगे छै ओ सब की बुझते कहल के जे बानर की जान गेले आदिक स्वाद तखन अहाँ सब गाल जतेक बजा दी गाल वाला जीत गए आ माल वाला हार गए तकरे पर करे छी
1: आ एकरे कहे छे उनटे जोर कोतवाल के डाटे हम निको गप कहे छी ना तब बुझू जे अहाँ के अधला है लगैया
0: असल में अहाँ बेटी के पढ़ाब बेकार बुझे छी
1: बेकारे नहीं बुझे छी ओकरा हम घाटा के सौदा बुझे छी
0: से नहीं है हमर बेटी कॉलेज में पढ़वे करत
1: हाँ हाँ जी मन में से करत रह
2: जहिया सब बहनी काम से एलू अछि कोनो काज में मोने नहीं लगैत अछि सबखन ओही मंजुल मूर्तिक ध्यान आबि जाइत अछि ओ नहीं जान कहिया धरि फिर ओकरा देख सकबै
3: सब ठीक छे अपन कह
2: रौ समान सब पहिने बैसे जाय जो तकर बाद तो गप सब हेबे करते
3: हाय की हाल समाचार छे कोनो नव गप कह
4: देख शंकर हमरा लग में तो कोनो नव गप नहीं है तखन विनोद के आई बेस गंभीर देखै छी एक ओकरे से पूछल जाए जे की बात छे
2: कि रहो बात कोनो तेहन नहीं छे हाँ तखन बहनी गाम के यात्रा से हम अनुभव केलौ अछि शंकर जे जहिना स्त्री शिक्षा दिस लोक अत्यधिक उत्साहित भेल छल तहिना ओहि दिस सब भयंकर वैवाहिक समस्या कारणे आब लोक हतोत्साह भ रहल अछि
3: ई त कोनो नव गप नै छै तखन बहिनेक गाम में जाकर तोरा गौतम बुद्ध जका ज्ञान कोना भेट गेलक
2: हे ओहि गाम में उमेश बाबू एकटा सुखी संपन्न लोक छथि किंतु ओ अपन बेटी के कॉलेज में पढ़ेबाक विरोधी एहि हेतु छथि जे तखन हुनका विवाह में अधिक खर्च पड़तनि
3: ठीक कहै छ समान हमरो गाम में लोग सब चर्चा करैत रहे जे जखन बेटी के अधिक पढ़ौला सँ आर अधिक फेरी में पड़ जाए तखन ओकरा पढ़ौला सँ लाभे कौन
4: मुदा एक बात छैक समान आब कतौ कतौ एडवांस नारी समाज विद्रोह सेहो करऽ लागल अछि
3: ई त नीक लक्षण जरूर अछि भाई मुदा एहि हेतु छात्रा लोकनि के अधिक तेज बनौ पड़तै तखने ओ नीक पद पर जा सकैए
2: तो ठीक कहले शंकर समस्याक मुकाबला करबाक चाही आ ताहि लेल कठोर परिश्रमक आवश्यकता छै जो गाम गाम में लड़की सब विवाह से पूर्वहि नीक नीक पद पर पहुंच जाए तब बेटा वाला के झक मार के नीचा उतरा पड़ते
4: असल में लोके ततेक स्वार्थी बन गेल अछि विनोद जे समाजक प्रगति हैब कठिन छै आप देखी न एक व्यक्ति बेटी के बेर में आदर्श तकैत अछि किंतु बेटा के बेर में सब किछु बिसरि जाइत अछि
2: हाँ रो दिनेश आदर्शक दुहाई दिनहारो व्यक्ति अपन सुयोग बेटाक विवाह ततै करैत अछि जाहिठाम आशा से अधिक लाभ बिना मंगने भेट जाइत छै पहिने साइकिल घड़ी औंठी ई तीनू प्रथम श्रेणीक विदाय होइत छलै ओकरा बाद एलै रेडियो टेप रिकॉर्डर आर आब चाहिन बाबू सबके स्कूटर फ्रिज टेलीविजन
4: हाँ से ठीक है

0: गोर लगे छी भौजी
1: के नवीना गाय आवा एह बहुत दिन पर एम्हर कृपा के लिए है ए कॉलेज में तो आप खूब मन लगे थे
0: हाँ भौजी मन तो खूब लगे है हम एकोटा क्लास नहीं छोड़े छी आ आप तो परीक्षा है तो फॉर्मो भरा गेल भौजी मुदा एकटा बड़ गड़बड़ देखे छी
1: से कि
0: किछ विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई से कोनो मतलब ही नहीं रहे छन मात उचक पनिया हुदंगी से मतलब रहे छे हे ओहन चाल हमरा एको रति नीक नहीं लगे भौजी
1: ए अहू के क्यों

0: किछु कहलक है कि हमरा तऽ किछु संदेह भ रहल अछि।
1: अहाँके तऽ अहिना रहैए भौजी, ओहन लड़की हम नहि छी।
0: अच्छा कहू, हमर भाइसँ कहियो भेंट भेल अछि कि नहि अहाँके?
1: के विनोद जी?
0: हाँ हाँ।
1: अरे ओ तऽ बड़ नीक विद्यार्थी छथि भौजी, हुनका सन स्वभाव जँ सभ छात्रक भऽ जाय तऽ मनुखे भऽ जायत।
0: अइ दाय, अहाँ हमर भाइक बड़ प्रशंसा कऽ रहल छियै, कहीं पसीन तऽ न पड़ि गेल? हे जोड़ी बड़ नीक रहत। कही तऽ हम बाबूजी के समाद पठा
1: देब। छोड़ू ई गप सब, अहाँके तऽ बस एतबे खोदबेद रहैये। विनोद जी एकटा आदर्श युवक छथि, हुनका सँ जकर विवाह हेतै ओकर भाग्य कहबाक चाही।
0: है दाय, आब हम नीक जकाँ बुझि गेलहुँ जे अहाँ लोकनि कॉलेज मे की सब करै छी। भावजक रूप मे हमरो अहाँ खूब पसीन छी।
1: देखू भौजी, हम जाइ छी तऽ।
0: अरे रे, अहाँ कतौ पर एलहुँ? कनेक सुनि लिअ, हम आइए अपन नैहर समाज पठाबै छी।

0: भोला बाबू आयल जाओ आयल जाओ, बैसल जाओ। बुझू जे अपने त नहीं छलो, मुदा अपने कृपा से काज त हमरा बड्ड जीतल भेल। विनोद बाबू सन सुयोग आ सुशील जमाए भेल, एहन काज में त आन ठाम बुझू जे 1 लाख टका लग जाए।
1: ठीक है बात,
0: किंतु एहिठाम एकोटा पाई हमरा नहीं देबऽ पड़त। परियातिक संख्या सेहो मात्र 15 छल, 1 से 1 नीक लोक सब। सबटा काज सकुशल संपन्न भेल। हाँ, ई सब त बुझू जे अपने सर घटक राज से संभव भेल। भोला बाबू,
1: उमेश बाबू, ओ ई मात्र भगवती की कृपा कहबाक चाही जे विनोद बाबू सन जमाए आ दिवाकर बाबू सन समझ जे किने से भेट गया।
0: अवश्य किने,
1: हमरा तो जे किने से साधारण श्रम कर पड़ल, तखन आर हाल समाचार कहल जाओ।
0: आर समाचार तो बड्ड बढ़िया, तखन बुझू जे बउआ विवाह नहीं कर चाहे छन।
1: देखिए
0: कोनो कथा पसीने नहीं पड़े छन हुनका, से एकटा एकटा चिंताक विषय अछि।
1: ओ
0: देखू ने, एहि साल MBBS के 3rd साल समाप्त भ गेलनि, आ तखन बुझू जे आबो जो विवाह नहीं करता तो विवाह करता कि बुढ़ारी वयस में यो।
1: अपने ठीक कही छी उमेश बाबू, जेकिने से विवाह हो कि एकटा वयस होइ छै। इंजीनियर साहब वाला कथा से हो पसीन नहीं पड़लन की? ओ वो तो बड़ी नीक काज हुई।
0: आह वो तो बुझू जे सब तरह नीक हो। इंजीनियर साहब 1.5 लाख टका नगद आ बुझू जे ताइ पर से स्कूटर रंगीन टीवी इटाइल सब किछ विदाई देबाक हेतु तैयार छथि। ओ जी कहे छी भाग गए से ना ओहन घर बुझू जे ककरो हाथ लगे छे।
1: अवश्य कि नहीं,
0: केवल कन्याक रंग कनेक दब छन आ किछ बोल लगे छ। बुझू जे ई त कोनो तेहन बात नहीं भेले।
1: नहीं नहीं,
0: कतौ तो ओकर विवाह हेबे न करते यौ।
1: अवश्य कि नहीं यौ, हैं हे एहन गुदगर कथा के हाथ से नहीं जा दिया उमेश बाबू।
0: की कहे छी,
1: ओ जेकिने से डॉक्टर साहब के एक कार्यक हेतु तैयार करब आवश्यक अछि।
0: हम त थाक गेलौं भोला बाबू, आब अपने प्रयास कैल जाओ।
1: अच्छा की यौ डॉक्टर साहब, ओ जेकिने से अपने लोकन कनेक हमरो लोकन गप दिस ध्यान देल जा कि और कनेक इम्हर आओ ने या एलो। ओ हमरा कहबाक अछि जे इंजीनियर साहब वाला कथा अपने के कियाक ने पसिन्न पड़ित अछि। हे हुनक कन्या जकिन से दरभंगा में MSc में पढ़ित छन, आब ऐसा नीक कथा आर की भ सकैत अछि।
2: अपने लोकन जाहि विषय के उत्तम बुझै छियै से वस्तुतः उत्तम नहीं छैक।
1: जेकिने से तखन उत्तम छै कोनो वस्तु?
2: उत्तम छै मनुखक व्यक्तित्व, ओकर प्रतिष्ठा। कोनो धनवान व्यक्ति के हम बड़ पैघ नहीं बुझै छियै। धन त 2 नम्बर काज क के केओ जमा क सकैत अछि।
0: ओ जी भोला बाबू,

0: पहिने हिनका लोकनिके पुछियौ जे बिना टका पैसाक आइ काल्हि कोनो टा काज होइ छैक सबठाम तऽ टके चाही ने आ तखन फेर आयल लक्ष्मीसँ जे घृणा करब ई कोन बुद्धिमानी भेलै
1: नहि नहि बाबूजी हमरा लोकनि लक्ष्मीसँ घृणा नहि करैत छी बेटीके बेटाक बराबरीमे आनऽ चाहैत छी तैँ ने नवीनाक विवाहमे एकौटा पाइ अहाँके खर्च नहि करऽ पड़त कल्पना करू आइ जँ कन्यादानमे 1,00,000 टका खर्च करऽ पड़ैत तखन केहन लगैत
2: से तऽ जे किने से जानिए कऽ किने डॉक्टर साहेब तखन बुद्धिमान व्यक्ति वएह कहबैत अछि जे अपन नफगर काज कहुना सुतारि लैत अछि
1: जी नहि हमरा लोकनि ओहन बुद्धिमान लोक नहि छी अहीं लोकनि सन बुद्धिमान लोक सभक कारण आइ समाज चौपट भेल जा रहल अछि की ओझा जी हम ठीक कहि रहल छियनि कि नहि
3: अवश्य डॉक्टर साहेब अपने एकदम ठीक कहि रहल छियनि केवल अपन चिंता तऽ कुकुर बिलाड़ि सेहो कऽ लैत अछि मानवताक रक्षा तखने संभव अछि जखन समाज एवं देश के ध्यान में राखि कोनो काज कयल जाय
1: बिल्कुल
3: आ विवाह में काटर प्रथा वा तिलक दहेज भ्रष्टाचार के बढ़बैत अछि
2: तिलक दहेज सँ भ्रष्टाचार बढ़ैत छै से कोना ओझा जी
3: देखल जाओ मिसर जी जकरा लग में 2 नंबरक पाई छै से कन्यादान में खूब फूट दैत अछि परिणाम स्वरूप समाज में आनो लोक सब के ओकर देखौंस लागल लगैत छै एक प्रकार से ओ परिपाटी बनि जाइत अछि आज तखन जकरा 2 टा बेटी रहैत छै से भ्रष्टो आचरण द्वारा टाका जमा करबाक हेतु विवश भऽ जाइत
1: अछि ओझा जी एकदम ठीक कहि रहल छथि
0: हे ई आहे माहे सब छोड़ै जाय जाउ अहाँ सब
4: हाँ हाँ
0: अहाँ लोकनि के आम खेबाक अछि कि गाछ गनबाक अछि औ जी इंजीनियर साहब वाला कथा नहीं पसंद अछि तऽ दरभंगाक डॉक्टर साहेब बा पटनाक वकील साहब वाला कथा पसंद करू 1,00,000 टका तो ओहो लोकनि देबाक हेतु तैयार छथि यौ भोला बाबू
4: ठीक कि नहि
0: अहाँ लोकनि सौंसे दुनिया के चिंता एखने किया कऽ रहल छी
3: बाबू जी त्यागक उदाहरण लोक के असल में स्वयं सँ प्रस्तुत करऽ पड़ैत छै भरि दिन झूठ बजिहार व्यक्ति ककरो सत बजबाक उद्देश्य कोना दऽ सकैत छैक तैं डॉक्टर साहबक विवाह दरभंगाक प्रोफेसर साहबक कन्या से हेतनि से हमरा लोकनि निर्णय कयलहुँ अछि
2: डॉक्टर साहबक विवाह प्रोफेसर साहबक ओहिठाम हेतनि ओ की दऽ सकथिन हिनका
0: बुझियौ
2: की डॉक्टर साहब ओ की कहै छथि
1: ओझा जी एकदम ठीक कहि रहल छथि आ अपने लोकनि के ई जानि आराधिक आश्चर्य हैत जे ई घटकैती हमर बहिन नवीना केलक अछि ओ लोकनि अपन कॉलेज सँ खेलकूद प्रतियोगिता मे दरभंगा गेल छली की कहै छै जाहिठाम प्रोफेसर साहबक परिवार संग रहबाक अवसर भेटल छलैक हुनक कन्या एकरा पसिन पड़ि गेलैक हमहुँ जनै छियनि ओ लोकनि बड़ नीक लोक छथि
2: ओ तऽ आब बुझलहुँ अहाँ लोकनि पहिने सँ प्रोफेसर साहबक परिवार सँ संपर्क बनौने छलहुँ ओ उमेश बाबू
0: की कहै छी भोला बाबू
2: ओ आब माथा हाथ दिला सँ काज नहि चलत बुझल हे युगक अनुकूल हमरो लोकनि के चलै पड़त
0: अवश्य

कमलकांत झा का लिखा मैथिली नाटक अभी आप सुन रहे थे नबीना। प्रतिभागी कलाकार धीरेंद्र कुमार विनोद के रूप में थे, सपन मजूमदार उमेश बाबू और हेमचंद्र जी थे भोला बाबू, सतीश कुमार सिंह दिनेश, भोला झा शंकर, अनूप कुमार डॉक्टर कमलकांत, कल्याणी चौधरी नबीना के रूप में, मीरा झा भौजी के रूप में थी और लक्ष्मी देवी माई के रूप में। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: किया जा रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को

0: परी हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने ही वाला है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा से क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा।

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर।

श्रोताओं, अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि दिन में 1:10 पर हम आप तक पहुंचाएंगे देशभक्ति गीत। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुना जा सकता है दिन में 1:15 से।

दिन के 2 बजे प्रादेशिक समाचार और 2:05 पर इलाकाई खबरें। दिन के 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना और दोपहर समाचार 2:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से।

दिन के 2:30 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत और अपराह्न 3 बजे हम आप तक पहुंचाएंगे कुछ विद्यापति गीत। ये थे पहली सभा के शेष कार्यक्रम। एक नज़र हम डालते हैं अपनी दूसरी सभा के ऊपर। हमारी दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5 बजे, आरंभ में हम आप तक पहुंचाएंगे चंद गजलें। शाम 6:25 पर आप सुनिएगा मैथिली संवाद। शाम 6:30 बजे कार्यक्रम गाम घर, इसके तहत आप सुनिएगा विश्व रक्तदाता दिवस पर चर्चा। और

आयोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। शाम 7 बजे किसान श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेती गृहस्थी। क्रीड़ा जगत है 8:15 पर और समाचार संध्या 8:45 पर आप सुनेंगे। न्यूज एट 9 9:00 और 9:15 पर उर्दू में खबरें। रात 9:30 फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है और रात 10:00 सुनिएगा रवि बासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में देशभक्ति गीत।

देशभक्ति गीत समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अगली प्रस्तुति पत्रों पर आधारित फार्मेसी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

कार्यक्रम आपके अनुरोध पर सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को रंजू का सस्नेह नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे हम उम्मीद करते हैं। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और कार्यक्रम को सुनने के लिए बेताब होंगे, क्योंकि आपको इंतज़ार रहता है पूरे सप्ताह भर और अपने फरमाइश किए गए गीतों को सुनने के लिए बेसब्री से बैठे रहते हैं। तो इंतज़ार तो अब ख़त्म हुई और साथ ही जैसा कि आप जानते हैं आज विश्व रक्तदाता दिवस है, तो आप सबों को आकाशवाणी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामना। 14 जून आज ही के दिन हम लोग मनाते हैं और ये दिन कहा भी जाता है यह जन कल्याण का कार्य है और रक्तदान को हम महादान भी कहते हैं और हम सभी पूरे विश्व में इसे मनाते आ रहे हैं। इसे मनाने का काम भी मेन तो यही है जो हम सभी को जागरूक रहना है, जागरूकता फैलाना है। तो बगैर अब देर करते हुए बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ और शुरुआत करते हैं पत्रों की गठरी को खोलते हुए। ये रहा कार्यक्रम का पहला

अनुरोध जो कि आया है जैतुका किशनपुर जिला दरभंगा बिहार से। हमारे श्रोता हैं आलम दिलकश, सवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, वकील राही, चांदनी नाज और अफशाना निशा। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और वर्मा परिवार के सभी लोग। अनुपुर मध्य प्रदेश से आप हैं जयमंत्री केवट, कृष्णा केवट, रुद्रानी केवट, अंजलि केवट और पूरा केवट परिवार के सभी सदस्य। गुल्लूबारा इमलीगढ़ जिला दरभंगा बिहार से आप हैं परमेश्वर मंडल, सोनिया देवी, शिव पूजन मंडल, शंभू मंडल, राम बाबू और पूनम कुमारी। ग्राम उजान कनकपुर क्याही टोल जिला दरभंगा बिहार से आप हैं सुशील चौधरी उर्फ बच्चा बाबू, विदेश्वर चौधरी, बैद्यनाथ चौधरी, अमरकांत चौधरी, बाबूकांत चौधरी, अंजू चौधरी, रूपम चौधरी और आपके सारे दोस्त। गांधी चौक रोड पर पंजाब से आप हैं हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जितेन बिरक और मिका बिरक जी। और अगला ये अनुरोध जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है नाहर मंटोला से, आप हैं कादिर अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद सलमान जी। तो लीजिए आप सबों के अनुरोध पर पेश है कार्यक्रम का पहला गीत आपके रेडियो सेट और मोबाइल ऐप पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है सहरा, गीत रचना हसरत जयपुरी के हैं और संगीत रचना रामलाल का।

तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई। सहरा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में पसंद आप सबकी थी। अगली फरमाइश है, जिला किशनगंज बिहार से आप हैं, रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, माधुरी किरण और अनुराग मोहन जी। पुणे से आप हैं पंकज, आर्या, प्रियंका, जरूर बरोद, बाबा साहब बरोद, मीनाक्षी चरने, रजनी कानेरे और आपके सारे दोस्त। इंदिरा बिहार रायगढ़ से आप हैं अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, वसीम नूरजहां, बली उल्लाह नूरजहां और आपके सारे दोस्त। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। ग्राम खरारी जिला दरभंगा बिहार से आप हैं गोपाल बाबू, मुखिया जी, छोटका बउआ और आपके घर के सभी लोग। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं महाकांत सिंह और सिंह परिवार के सभी लोग। राजनंदनगांव मध्य प्रदेश से आप हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा जी। तो लीजिए, आप सबों ने सुना चाहा है आसा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत। के बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और संगीत है मदन मोहन का। फिल्म का नाम है नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में तकदीर फिल्म का ये प्यारा सा गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और इस गीत को सुनने की फरमाइश आई थी इनामा टोला भगवतीपुर पंचायत से। आप थी नूतन सहनी, कंचन सहनी, बबीता, कोमल, नव्या, विभा, सुधा, ज्योति त्रिपुरारी, रासो देवी, रिंकू देवी और रुचि कुमारी जी। दरभंगा टावर चौक आशापुर बिहार से आप थे प्यारेलाल मनोहर, अमरलाल मनोहर, सुंदरलाल मनोहर और प्रेमलाल मनोहर जी। और ये खत आया था रहमानिया मोहल्ला महसूल सीतामढ़ी बिहार से। आप थे अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख जी। और आप थे लाल पोखर दरभंगा नाका नंबर 5 बिहार से कलीम दीवाना, मोहम्मद दानिश बाबू, अमन बाबू, सरफराज बाबू, सोनी बेगम, खुशबू प्रवीण, साहिस्ता प्रवीण, शमा प्रवीण, डॉली प्रवीण और मेहरा प्रवीण जी। झंझारपुर लंगड़ा चौक जिला मधुबनी बिहार से आप थे हरे राम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी और आपके सारे दोस्त।
0: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान।

0: के सहयोग से यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: जी हाँ श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उठाइए कलम और कागज, लिखिए हमारा पता कार्यक्रम आपके अनुरोध पर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। आप सुनते हैं ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार, शुक्रवार और शनिवार को दिन में 1:15 से दिन के 2 बजे तक। और ये भी आप जानते हैं जो यह कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप सब द्वारा भेजे गए खतों पर ही आधारित होता है। तो लिखते रहिए ढेर सारे खत और सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में अगले अनुरोध की तरफ। तो मैं देख रही हूँ ये चिट्ठी आई है मधुबनी जिला बिहार से रंगोली लिसनर्स क्लब से। आप हैं नवीन सिंह, ज्योति सिंह, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, प्रदीप कुमार नायक, लाल बाबू शास्त्री। साथ ही तारसराय जिला दरभंगा बिहार से आप हैं कपलेश्वर प्रसाद गुप्ता, भूलिया देवी गुप्ता, घूरन बाबा, करिया बाबा, प्रेम पासवान और आपके सारे दोस्त। नारहन स्टेट जिला समस्तीपुर बिहार से आप हैं उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर, बेबी आराध्या, नूतन भाभी जी और ललन मिश्रा जी। महादेव घाट अमलेश्वर से ये खत आया है, आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुरिया ठाकुर जी। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से आप हैं दीपक, किशोर, मानिक, सोना, मोना और डिम्पी। सीतामढ़ी महावीर स्थान जिला मधुबनी बिहार से आप हैं प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, मंटू कुमार गुप्ता और निकी गुप्ता जी। फुलवारी सरी पटना बिहार से आप हैं अविनाश चंद्र, ज्योति गुप्ता, जाह्नवी और पीहू जी। और अगला जो अनुरोध हम पढ़ने जा रहे हैं ये है ग्राम झांसी से। आप हैं राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। हांसी शहर से आप हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष, योगी बब्बू और डब्बू जी। तो लीजिए आप सबों के अनुरोध पर पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। गीत रचना है शकील बदायनी के, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है प्यार किया तो डरना का, डरना क्या। तो ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत आपके ही रेडियो सेट और मोबाइल ऐप पर।

0: अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सबकी फरमाइश पर हम आप तक पहुंचा रहे थे। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। अगला जो अनुरोध हम पढ़ने जा रहे हैं ये है मणिगाछी ब्रह्मपुरा से, जिला दरभंगा बिहार से। आप हैं भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार राय और भाई राधे कुमार विद्यार्थी, जो इस गीत के सुनने की फरमाइश की थी। राजेश कुमार सोनी बेर्डी से, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बा सिरेजी, बांदना नगर, एयरपोर्ट रोड, गरीब नवाज कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश से। आप थे पूजा, बबीता, शोभा, रेखा रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, परी, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक और नारायण भाव खर्चे जी। और ये खत जो आया था महाराष्ट्र बीड शहर से, आप थे प्रकाश पागरिया, पराग पागरिया, प्रदीप पागरिया, केशव पटेल, राम निवास अग्रवाल और आपके सारे दोस्त। बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से आप थे संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र और वंश प्रसाद जी। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। और यह कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर है और कुछ खत मेरे हाथ में बचे हुए हैं, लेकिन इससे पहले ये संदेश।
1: गांव के विकास से ही होता

0: है देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: छोटे से संदेश के बाद फिर से हाजिर हैं श्रोताओं आपके द्वारा ढेर सारे खतों को लेकर। तो ये जो अनुरोध आया है ये है ग्राम महेश्वरी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से। आप हैं शत्रुघ्न धारे, वाल्मीकि धारे, नीना जी धारे, स्वप्निल धारे और अजय सिरोडकर जी। लक्षणपुर से आप हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू जी। लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से आप हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से आप हैं मुकेश बाटिया, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता जी। पटेल नगर मलोट पंजाब से आप हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया जी। तो लीजिए आप सबों के अनुरोध पर पेश है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है असद भोपाली ने। फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी।

ये हमें इशारा कर रही है कार्यक्रम से विदा लेने के लिए। तो खुश रहिए, अपनों के बीच खुशियाँ बरकरार रखिए। इसी उम्मीद के साथ अगले अंक तक के लिए इस कार्यक्रम से रंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: ये था पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, उसके बाद होगा इलाकाई खबर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। श्री नड्डा ने कहा कि देश में एम्स की संख्या 1 से बढ़कर 23 हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमारी के कारण किसी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1,278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का शुभारम्भ भी करेंगे। इधर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को GI टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला और शिल्प को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गया जी जिले के खिजरसराय में एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। यह केंद्र 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित केंद्रों पर आज मद निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से 4,200 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इन पदों पर बहाली के लिए अगली परीक्षा 17 जून को होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। पर्याप्त ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होने से नाराज छात्रों ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव किया। इससे रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप से हंगामे को काबू में कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य किया गया। प्रदेश में मानसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मानसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।

इधर विभाग ने अगले 2 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा, चनपटिया, नरकटियागंज, लौरिया और सिकटा सहित अन्य प्रखंडों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास आज हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

8 लोग ऑटो पर सवार होकर राजगीर मलमास मेला से स्नान करके अपने गांव कुचरा लौट रहे थे। इसी दौरान छबीलापुर में मेडिकल कॉलेज के करीब मुखालिफ सिम से आ रहे एक हाइवा ट्रक ने ऑटो में सीधी टक्कर मार दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

लीजिए सुनिए आकाशवाणी दरभंगा से अब रोजगार सूचना। एसएससी सीजीएल संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 कुल पदों की संख्या है 12,256। आवेदन 21 मई 2026 से ही आरंभ है और अंतिम तिथि है आवेदन जमा करने की 22 जून 2026। इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम 32 वर्ष। इच्छुक अभ्यर्थी एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। एक और सूचना है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा। इसके लिए पदों की संख्या है 11,127। आवेदन आरंभ की तिथि 21 मई 2026 से ही है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 14 जून 2026 यानी कि आज तक ही। न्यूनतम उम्र इसके लिए 18 वर्ष है और अधिकतम 30 वर्ष। 1 जुलाई 2026 को पूरा होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आवेदन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे के जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। भारतीय नौसेना भर्ती 2026, इसके लिए 29 मई से आवेदन आरंभ है। कुल पदों की संख्या है 60। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 18 जून 2026। इच्छुक अभ्यर्थी इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। अभ्यर्थियों की के लिए उम्र होनी चाहिए 2 जुलाई 2007 को एक बार हम फिर से बता रहे हैं 1 जनवरी 2010 और 2 जुलाई 2007 के बीच होनी चाहिए। इसी के साथ रोजगार सूचना अब समाप्त हुई।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने ही वाले हैं। अब आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों

0: के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। दोपहर समाचार के बाद फिर से स्वागत है श्रोताओं आपको आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में, और आनंद उठाइए अभी से अपराह्न 3 बजे तक फिल्म संगीत का।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत को यहीं अब विराम देते हैं। फिल्में थी इज्जत की रोटी, जुर्बा, हमको दीवाना कर गए इतिहास और कबीर सिंह। गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, पूर्णिमा, हिमेश रेशम।

हमको दीवाना कर गए इतिहास और कबीर सिंह। गायक कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, पूर्णिमा, हिमेश रेशमिया, तुलसी कुमार, हरिहरन और अरिजीत सिंह। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो

0: राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: अब सुनिए इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

इसी गीत के साथ ही विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। जिन कलाकारों को अभी आप सुन रहे थे वो थे गौतम मिश्र, काशी नाथ झा, करण और साथ ही प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जा रहा था। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। आज की पहली सभा यहीं समाप्त होती है। दूसरी सभा इसी मीटर पर संध्या 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी, अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी

0: की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वैराग्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं।
1: क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
0: महाराज,
1: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
0: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
1: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गांधारी।
0: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
1: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
0: ईश्वर कल्याण करे।

0: आज युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं यह निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

काँच, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद। गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप, कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव, दुर्योधन नहीं मारा जा सकता, मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय, कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूँ। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो, यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर।
0: बस

0: अरे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गई, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
1: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो गांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
2: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
2: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
2: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
2: देवी गांधारी,
0: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है, फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
2: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
2: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा और संवेदना से परे है।

0: करता है। अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक शाद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी? हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ?
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वाशु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है, उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही, कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ?
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गुश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना?
1: हाँ, कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी? आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं।

0: अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने।
0: कुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। वो प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय है। इसीलिए वो 100 होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: गांधारी, देखो, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, युद्ध बंद हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: गांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहां तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा।

0: हूँ
1: महाराज।
0: हाँ गंधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकी रुकी, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल पड़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए। चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता।

0: तो कभी छान।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना रे, हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा।
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
2: अच्छा।
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें।
3: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा। हाँ जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी।
0: हाँ।
1: और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं।
0: अच्छा।
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जी,
1: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी, आपकी
1: तो बड़ी
0: भी अपनी दुनिया बन चुकी थी, आपकी भी अपने

0: अपने थे, अपने शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्रॉइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया, वो फिर गर्व महसूस करने लगे।
0: मित्र जी कहते हैं कि माँ कवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा ऐसा।
0: जी जी, तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है,
0: खूबसूरती
1: के मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो,
0: क्या बात है, हाँ? क्या बात,
1: तो मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ तुम
0: थे,
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा प्यार, मेरा प्यार पसंद है।
1: तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से गीत है,
0: बहुत स्वीट,
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत, हर पल के,
1: ये रोमांटिक गाने भी उन्होंने लिखे और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जनजन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रोमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रोमानी कविता उनकी कलम से निकली, रोमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहाँ के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा। तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा और आप नहीं मानेंगे, उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहाँ खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरे

0: भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं, ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था। हाँ, तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते पता नहीं, सफेद जाम्बून, काले नहीं, सफेद
0: सफेद,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ, तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के उनको

0: जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
1: अच्छा,
0: इतनी मजबूत है।
1: क्या बात है,
0: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
1: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
0: जी
1: उसको खड़ा किया।
0: हाँ
1: जी, मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई

0: बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
1: जी,
0: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया, तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना
1: लक्ष्मी के, नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
0: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
1: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी,
0: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है ड्राइंग, नहीं नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
1: जी,
0: बोलती आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
1: जी।
0: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है, आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
1: अच्छा।
0: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
1: जी।
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा। तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
1: मकसद मिल गया।
0: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है।
1: सुख

0: मितुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
1: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती है। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
0: अच्छा,
1: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना, ड्राइंग करते
0: रहे। तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
1: बहुत बहुमूल्य चीज है, मेरे पास आज खजाना है।
0: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
1: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
0: है,
1: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
0: ऑयल पेंटिंग
1: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर, तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है। आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं है। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं।
0: जी।
1: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
0: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
1: वही तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
0: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने?
1: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
0: अच्छा जी।
1: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
0: जी जी जी।
1: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
0: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं

0: देखा है, अपनी कला को एक कला कृति रहने दिया है।
1: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
0: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की बात
0: कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
1: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है। चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, इस तरह का, सभी तरह के।
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको आप अपने पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से। उनका जैसा कोई नहीं।
0: बहुत सुंदर।

0: मित्तल जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: जो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती हैं,
1: रहती हैं और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान, तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही है?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है।
0: हाँ।
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम है।
1: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, so, ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है, और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए, जरूर।

मीटिंग में भी 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में पेश है चंद गजलें।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं चंद गजलें।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रही थी चंद गजलें। फनकार थे हरिहरन, अलका याज्ञिक, अनूप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, चंदन दास, पंकज उधास, अशोक खोसला, भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह। ये प्रोग्राम अब खत्म होते ही हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं कुछ और गजलें फिल्मों से।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रही थी चंद फिल्मी गजलें। फनकार थे जगजीत सिंह, अलका याज्ञिक, आशा भोसले और लता मंगेशकर। फिल्में थी उमराव जान, तरकीब और नरगिस। ये कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं।

0: शाम के 6 बजा चाहते हैं, अब हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है,

0: आया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 125 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे द्योक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीटिंग में भी 231.5 मीटर पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम।

प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। किसान भाई खेती गृहस्थी सुनेंगे संध्या 7 बजे। फिल्मी गाने आप सुन सकेंगे संध्या 7:52 पर और रात 9:30 पर। खेल गतिविधि पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत का प्रसारण किया जाएगा रात 8:15 पर। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम और अब कल के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। संध्या 6:25 पर मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे। ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम गामाघर सुनेंगे संध्या 6:30 पर। इसके अंतर्गत आज शामिल है

कल प्रातः 7:05 पर नमस्कार मिथिला कार्यक्रम आप सुनेंगे। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। कुछ विद्यापति गीत दिन में 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं पंडित जसराज दिन में 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर। महिलाएं अपना कार्यक्रम नारी संसार सुनेंगी दोपहर 12:30 पर। रोजगार सूचना दोपहर 2:10 पर। कुछ लोकगीत सुनिएगा अपराह्न 3:00। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी संध्या 5:00 युववाणी कार्यक्रम से। कुछ विद्यापति गीत सुनिएगा संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद का प्रसारण किया जाएगा संध्या 6:25 पर। किसान भाई खेती गृहस्थी सुनेंगे संध्या 7:00। ग्रामीण भाइयों के लिए गांव घर का प्रसारण किया जाएगा संध्या 6:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। रात 8:15 पर आप सुनेंगे मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार। रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आप तक पहुंचाएंगे। रात 10:00 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। संध्या के 6:25 होने वाले हैं। अब मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सो प्रस्तुत है संवाद संवादक संग हम छी कामिनी ठाकुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा कहलनि अछि जे पछिला 12 वर्ष में देशक स्वास्थ्य सेवा में विशेष सुधार भेल अछि। ओ कहलनि जे स्वस्थ नागरिक देशक सबसँ पैघ ताकत छथि। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री नड्डा कहलनि जे आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर आ आन डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम सँ बेसीतर लोक धरि इलाजक सुविधा पहुँच रहल अछि। श्री नड्डा कहलनि जे देश में एम्स के संख्या 100 बढ़कर 23 भऽ गेल अछि। ओतहि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहलनि जे भारत आई विश्वक कतेको सबसँ पैघ स्वास्थ्य योजना सभक सफलतापूर्वक संचालन कऽ रहल अछि। सोशल मीडिया पोस्ट में ओ कहलनि जे सरकारक उद्देश्य ई सुनिश्चित करब अछि जे बीमारी के कारण कोनो परिवार पर आर्थिक बोझ नहि पड़े। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आई पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभागक 1278 करोड़ टाका के योजना सभक उद्घाटन आ शिलान्यास कयलनि। श्री चौधरी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1512 करोड़ टाकाक लागत सँ 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ता लोकनिक घरक छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगेबाक काज के शुभारंभ सेहो कयलनि। एम्हर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2026 अंतर्गत किसान जागरूकता वाहन के हरियर झंडी देखा कर विदा कयलनि। एहि वाहनक माध्यम सँ राज्यक विभिन्न जिला सभ में किसान लोकनि के

मकई फसल के उन्नत खेती आधुनिक कृषि तकनीक आ सरकारी योजना सभक जनतब उपलब्ध कराओल जाय। केंद्रीय सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काल्हि बिहारक गया जी जिलाक खिजरसराय मे एक नव प्रौद्योगिकी केंद्रक आधारशिला राखता। 170 करोड़ टाका के निवेश सँ एहि केंद्रक स्थापना कयल जायत। मंत्रालय कहलक अछि जे केंद्र सरकारक लक्ष्य प्रति वर्ष 7,000 युवा लोकनि के प्रशिक्षण देब आ रोजगार सेवा के माध्यम सँ प्रति वर्ष 1,000 सँ बेसी उद्यमी लोकनि के सहायता प्रदान करब अछि। बिहारक 3 पारंपरिक उत्पाद नालंदा के 52 बूटी साड़ी आ फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट आ भोजपुरक पीढ़िया पेंटिंग के GI टैग भेटल अछि। एहिसँ एहि उत्पाद सबके अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे एक नव पहचान भेटत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एहि उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करैत राज्यक शिल्पकार, बुनकर, कलाकार आ संबंधित संस्था सबके बधाई देलनि अछि। श्री चौधरी कहलनि जे एहि उपलब्धि सँ बिहारक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल आ ग्रामीण प्रतिभा के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नव पहचान भेटल अछि। बिहारक महाअधिवक्ता PK शाही अपन पद सँ त्यागपत्र दऽ देलनि अछि। हुनक त्यागपत्रक संगे राज्यक सर्वोच्च कानूनी पद रिक्त भऽ गेल अछि। ओना एखन त्यागपत्र देबाक कारण के स्पष्ट जनतब नहि भेटल अछि। श्री शाही के तत्कालीन महाअधिवक्ता ललित किशोरक त्यागपत्र के बाद 16 जनवरी 2023 के बिहारक महाअधिवक्ता नियुक्त कयल गेल छलनि। प्रदेशक सभ जिला में स्थित केंद्र सब पर आई मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल आ चलंत दस्ता सिपाही भर्ती के लेल लिखित परीक्षा 2 पाली में आयोजित कयल गेल। सिपाही भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होबय वाला अभ्यर्थी लोकनि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा कयलनि। पर्याप्त ट्रेन सेवा उपलब्ध नहि हेबा के कारण आक्रोशित छात्र लोकनि स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ आ पथराव कयलनि। एहिसँ रेलवे के संपत्ति के नुकसान भेल अछि। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा जनौलनि जे पुलिसक हस्तक्षेप सँ स्थिति के सामान्य कऽ ट्रेन सभक परिचालन शुरू कयल गेल। एम्हर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अभ्यर्थी लोकनि द्वारा तोड़फोड़ के एहि कार्रवाई के अनुचित जनबैत कहलनि जे सरकार एहि मामला में दोषी सभक विरुद्ध कड़गर कार्रवाई करत। ओहि राजदक प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी आरोप लगौलनि जे रेल प्रशासन आ सरकारक दिशसँ परीक्षार्थी सभक लेल परीक्षा स्थल धरि जे पहुँचेबाक कोनो उचित व्यवस्था नहि कयल गेल छल। असम के जोरहाट हवाई अड्डा पर काल्हि भेल विमान दुर्घटना में शहीद बिहारक 2 वीर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार आ अग्निवीर दानिश आलम के पार्थिव शरीर आई पटना के बिहटा वायुसेना स्टेशन पर पहुंचल। एहि अवसर पर भारतीय वायुसेना दोनों शहीद के सैन्य सम्मानक संग अंतिम विदाई देलक। बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 4 वार्षिक सम्मेलन आई पटना में आयोजित कयल गेल। कार्यक्रम में हृदय रोगक आधुनिक उपचार, नव तकनीक आ जटिल मामला के प्रबंधन पर विशेषज्ञ लोकनि द्वारा अपन अनुभव साझा कयलनि। वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर BB भारती कहलनि जे मोटापा, तनाव आ शारीरिक गतिविधि में कमी के कारण हृदय रोगक मामला बढ़ि रहल अछि। प्रदेश में एखन मॉनसूनक स्थिति बनल अछि। मौसम विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार अगला 24 घंटा में प्रदेशक बेसीतर भाग में वर्षा के संभावना अछि। एहि दरमियान ठंडा खसबाक संगे 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के गति सँ हवा सेहो चलि सकैत अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए गांव घर कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम गाम घरक अंतर्गत गुनगुनैत मोन सुनयवला सब श्रोतागण के मिहिर कुमार झा के नमस्कार, संगे अनिल भाई नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार मिहिर भाई। देखियो आई रवि दिन है, आजुक दिन गाम घरक दलान पर हम सब सुनै छी।

0: श्रोता लोकनिक पसंद कार्यक्रम गुनगुनाइत मन। हम सब गीत तो नहीं गबे छी, मुदा गीत सुनबे छी, हमहू सब सुनै छी। तो सबसे पहिने आई कार्यक्रम के आरंभ करै छी दोहाक संग। तो कतौ से किनकर लिखल, कोन दोहा आनय छी से श्रोता लोकनि के कहि दियो।
1: अनिल भाई, हम श्रोता लोकनि वास्ते रहीम दास रचित ई दोहा आनने छियनि। हुनकर कहब छनि, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। देखियो अनिल भाई, रहीम दास के कहब छनि जे मानव के सदिखन अपन विनम्रता रूपी पानि वाला जे पानि रूपी विनम्रता छै ओकरा राखक चाही। पानि के बिना सब किछु सुना अछि। ओ कहै छथि जेना पानि के बिना मोती मे चमक नहि अबै छै, एहि तरह जेना आटा आ चूनक प्रयोग पानि के बिना नहि भऽ सकैत अछि, ओहिना विनम्रता के बिना मानवता या मनुष्यता के मूल्य नहि छै।
0: देखियो, पानिक अर्थ बड़ा विस्तृत अछि। पानिक अर्थ प्रतिष्ठा, सम्मान, लाज सँ सेहो लेल गेल। पानि राखब आ पानि पीब, दुनू मे बड़ बेसी फर्क अछि। पानि राखब, प्रतिष्ठा राखब अछि। त आब बेर भऽ चलल अछि, अब श्रोता लोकनि कोन कतौ सँ की फरमाइश केने छथि, अपन कोन गीत सुनऽ चाहै छथि से आरम्भ करू बिना विलम्ब केने।
1: अनिल भाई, हमरा लग जे चिट्ठी आयल अछि, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से लिखनहार छथि राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम प्रकाश, गुंजन कुमार, रियानी कुमकुम कुमारी, साक्षी नयानगर सुपौल से, श्वेता, रंजना, पप्पू जी, रजनीश कुमार, ई सब लिखै छथि। अहाँ लग कोन चिट्ठी अछि?
0: इनामत टोला भगवतीपुर पंचायत से लिख रहल छथि नूतन सहनी, राशो देवी, कंचन सहनी, रिंकू देवी, बबीता सहनी, रुचि कुमारी, कोमल सहनी, एस के सहनी, नव्या सहनी, सुधा सहनी, विभा सहनी, ज्योति सहनी, पार्वती सहनी, त्रिपुरारी सहनी आ संतोष कुमार सहनी। ये सब गोटे सुनय चाहे छथि श्याम मोहन मिश्र के स्वर में इस सुंदर सन गीत। तो सुनी हम सब।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: खूब सुंदर सुंदर मिथिला देशियों, अखन जे हम सब गीत सुन रहा छो, गीतक कलाकार श्याम मोहन मिश्र। देखियो मेहर भाई, आई विश्व रक्तदाता दिवस से हुई 14 जून के कॉर्ल लैंड एस्टीनर के जयंती मनाओल जाते, एक आयोजन के आरंभ 2004 में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से बिना कोनो भुगतान के सुरक्षित रक्तदान के आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ावा के उद्देश्य से ई आरंभ कैल गेल।
3: ठीक है कहलिए अनिल भाई। देखियो 14 जून के विश्व रक्तदाता दिवस मनबे के मुख्य उद्देश्य है स्वैच्छिक आ निःशुल्क रक्तदाता लोकनिक प्रति आभार व्यक्त करब, संगे सुरक्षित रक्त के उत्पाद आ आवश्यकता के बारे में वैश्विक स्तर पर ओकरा जन जागरूकता के बढ़ावे के लिए।
2: अपन सबक देश के जँ गप करी तो 2024 में वार्षिक रक्त संग्रह 14.6 मिलियन यूनिट धरि पहुँच गेल अछि। अइ दिशा में प्रगति भऽ रहल अछि, मुदा आरो एमे विस्तार के संभावना अछि। विश्व रक्तदाता दिवस 26 के ई थीम अछि। एकर इतिहास जे छै गुरुग्राम आ शहर के में एकर महत्व पर बड्ड बेसी चर्चा कयल जा रहल अछि। तो हम सब गप करब अब श्रोता लोकन, फिर कत सा कौन फरमाइश केने छथि, कौन गीत सुनना चाहे छथि से कहियो।
3: हमरा लग जे चिट्ठी आयल अछि नाहर मंटोला से, लिखनाहर छथि कादिर।

0: अली, जाकिर अली, हामिद अली, जाबिर अली, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद सलमान, अहाँ लग कोन चिट्ठी यऽ?
1: राजनगर मधुबनीसँ लिख रहल छथि राजकुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, गौरव कुमार, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, मास्टर रुद्र गुप्ता, एम के गुप्ता आ हुनक सङ्गी लोकनि। छपरा दलदली बाजारसँ लिख रहल छथि संजय कुमार गुप्ता, संजीत कुमार गुप्ता, सर्वजीत कुमार गुप्ता, सुधांशु कुमार गुप्ता। सीतामढ़ी महावीर स्थानसँ अपने सब छी प्रभात कुमार गुप्ता, अरविंद कुमार गुप्ता, मंटू कुमार गुप्ता, निक्की। आ फुलवारी शरीफ पटनासँ अविनाश चंद्र चौधरी, ज्योति गुप्ता, जहानवी आ पीहू। अपने सब गोटे सुनऽ चाहै छी ई सुंदर संगीत, तऽ सुनो
0: स्नेहा झासँ।

0: मेरे भाई आई गीतक संग आवाजों गुनगुनाइत मन कार्यक्रम के समय लगचार नहीं रहा मुदा कभी नहीं छे ये अच्छा थोर आ देवता बेसी। तो बहुत रास श्रोता लोगन के फरमाइश बाँचल छन, हम सब प्रयास करब जे अगला रवि दिन निश्चित रूप से हुनका सुनबियन। तो सुनब हम सब प्रायोजित कार्यक्रम मुदा कनिक कालक बाद।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: हाँ श्रोता लोकनि, आब बेर भऽ चलल अइ प्रायोजित कार्यक्रमके। सुनी हमसब प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: सुनल जाए कार्यक्रम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। जी हाँ, रविवार में दूसरी दफा आपसे आज मिल रहे हैं और कार्यक्रम है ममता का आंचल। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, यानी वैसे दंपत्ति के लिए जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, बच्चा नहीं है, उनके लिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं कि उन्हें बच्चा किसी बीमारी के कारण से नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है अगर वो विशेषज्ञ डॉक्टर से मिले। हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से, और डॉक्टर श्रद्धा होती हैं हमारे साथ, जिनका नंबर हम सबसे पहले बताते हैं और कहते हैं, आग्रह करते हैं कि कोई जो समस्या है तो आप जरूर बात कर लें। 9162562266, 9162562266। ममता का आंचल एक ऐसा मंच जहां हम सिर्फ बीमारियों की नहीं बल्कि भावनाओं की बात करते हैं। हमने जैसा कि अभी कहा कि हमारे साथ स्टूडियो के अंदर बैठी हैं बिहार की जानी मानी IVF विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चकियान। डॉक्टर श्रद्धा, ममता का आंचल के आज के यानी रविवार के दूसरे अंक में आपका स्वागत है।
4: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
3: डॉक्टर श्रद्धा, जून का महीना पूरी दुनिया में वर्ल्ड इनफर्टिलिटी अवेयरनेस मंथ यानी कि विश्व निसंतानता जागरूकता महीना के रूप में मनाया जाता है, इसे क्यों मनाते हैं और आपके लिए ये क्या मायने रखता है?
4: मुझे बहुत खुशी है कि रेडियो के माध्यम से हम अपनी आवाज हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं और ये उनको बताना चाह रहे हैं कि विश्व निसंतानता दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि विश्व में हर, और WHO का भी यही स्टडी है, हाँ, कि वर्ल्ड में हर 6 में से 1 दंपति निसंतानता से जूझ रहे हैं
3: जी।
4: फिर भी लोग इस विषय पे बात करने से हिचकिचाते हैं। यह महीना उन सभी लोगों को बताने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं, हाँ, और निसंतानता सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है
3: जी।
4: मैं ये भी बताना चाहती हूँ निसंतानता क्या होती है। निसंतानता कहते हैं वैसे दंपति को जो पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बच्चे का
3: जी,
4: और उनको नहीं ठहर पा रहा है, तो वैसे दंपति को निसंतान दंपति कहा जाता है। अब उनको जरूरत है किसी भी डॉक्टर से मिले और अपना प्रारंभिक जांच कराना शुरू करें
3: जी,
4: ताकि क्या बीमारी है पकड़ा जाए और इलाज से उनको बच्चा ठहर जाए। लेकिन अगर 2 साल हो गए और अभी तक बच्चा नहीं ठहर पाया है तो जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलके इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो आपकी बीमारी बेहतर समझते हैं। अगर आपको 2 साल में छोटे मोटे इलाज से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है तो आपको जल्दी ही निसंतान रोग विशेषज्ञ से इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अगला 2-3 साल बहुत क्रूशियल होता है जिसमें बच्चा ठहरने का संभावना सबसे ज्यादा होता है
3: जी।
4: अगर आप वो शुरू का 2 साल के बाद का जो अगला 2-3 साल अगर आप इधर उधर वेस्ट करते हैं तो आपको अपने से बच्चा ठहरने का और वैज्ञानिक रूप से भी बच्चा ठहरने का चांस कम हो जाता है
3: जी, जी, जी।
4: इसलिए जरूरत है कि अगर 2 साल में बच्चा नहीं ठहरा आपको इलाज से, तो निसंतान रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और इलाज करवाएं ताकि आपको जल्दी बच्चा ठहर जाए।
3: तो ये बात बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से समय पर मिलना। अब उनके लिए जो पहले से ही ये कदम उठा चुके हैं डॉक्टर श्रद्धा, जो इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप?
4: मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो कहते हैं मैडम हम इतने साल से इलाज करा रहे हैं और अब हम थक चुके हैं
3: जी।
4: श्रद्धा IVF और मैं भी मानती हूँ उनका बात बिल्कुल सही है,
3: हाँ,
4: क्योंकि सच में वो थक जाते होंगे क्योंकि निसंतानता के इलाज में बार बार जो टेस्ट करवाना पड़ता है, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, दवाइयाँ इंजेक्शन ये सब पड़ता है, रिपोर्ट का लोग इंतजार करते हैं और फिर बाद में आता है रिपोर्ट नेगेटिव। इन सभी को जूझना, इन सभी को का सामना करना
3: हाँ,
4: आसान बात नहीं है।
3: सही।
4: इनफैक्ट निसंतानता के इलाज के लिए जो लोग अपने

0: अपना इलाज करा रहे हैं उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। हिम्मत इसलिए जरूरत होती है क्योंकि इतना नेगेटिविटी होता है, इतना वो लोग डिप्रेशन से भी जूझ रहे होते हैं, कुछ लोग एंग्जाइटी से जूझ रहे होते हैं, और ये मेडिकली प्रूवन है क्योंकि इलाज बहुत ज़्यादा मानसिक तौर से उन लोग को वो करते थका देता है। लेकिन इसमें मैं यही कहूँगी कि जहाँ चाह है वहाँ राह ज़रूर है, तो ज़रूरत है कि पति पत्नी दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, घर के जितने बुजुर्ग हैं और बाकी लोग भी सपोर्ट करें। अगर सबका साथ होगा तो ये जो प्रयास है और उनका जो सफ़र है वो ज़रूर आसान होगा और उन्हें जरूर सफलता मिलेगी और जरूर संतान सुख प्राप्त होगा।
1: जरूर संतान सुख प्राप्त होगा। और आपने घर परिवार की बात कही, हम एक बात कह लें अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: बिल्कुल।
1: हमारे घर में बड़े बुजुर्गों का बहुत ही सम्मान है और ऐसे में बड़े बुजुर्ग को सामने आना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, अपने बच्चों को परामर्श दें। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मानसिक सुकून दें हाँ दंपति को कि हो जाएगा, ये एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। और जैसा कि डॉक्टर श्रद्धा ने कहा कि आप विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए, और एक विशेषज्ञ डॉक्टर जो हमारे साथ बैठी है उनका नंबर हम आपको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, जरूर लिख लें। और वैसे कपल तक इसे पास भी करें, आगे भी बढ़ाएं जिनके साथ ये समस्या है। नंबर है 9162562266, 9162562266, ये नंबर है। ये ममता का आंचल, जी हाँ ममता का आंचल कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी की तरफ से। अपने राज्य में राष्ट्रीय स्तर का ये आईवीएफ सेंटर है। अपनापन, अपने परिवार की तरह आप जरूर बात करें। डॉक्टर श्रद्धा का जो नंबर हमने दिया, और एक बात जानकारी आपको देना चाहेंगे, बहुत सारे लोग पैसे के नाम पर या इलाज बहुत महंगा होगा पीछे हट जाते हैं, आप आगे बढ़िए, श्रद्धा आईवीएफ आपके साथ खड़ा है। और वो इस तरह इलाज में जो पैसे लगते हैं ना, वो अब आप ईएमआई यानी टुकड़ों में दे सकते हैं, वो भी 24 टुकड़ों में। पहले डॉक्टर के पास आइए तो बात तो कीजिए, रास्ता सब निकल जाएगा। और बड़े बुजुर्गों इसमें आपका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर श्रद्धा के पास। डॉक्टर श्रद्धा, एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, जब सारे रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी गर्भ नहीं ठहरता, ऐसे लोगों से क्या कहेंगी आप?
0: देखिए, इस कंडीशन, ये काफी कॉमन कंडीशन है, इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं।
1: जी।
0: बहुत से दंपति ऐसे आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि हमारा, हमने जितना भी इलाज कराया, जितना भी जांच कराया, सारे जांच में मेरा और मेरे पति का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है,
1: हाँ।
0: फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है।
1: हाँ।
0: तो मैं ये समझाती हूँ, अगर आपने 2 साल प्रयास कर लिया और बच्चा नहीं ठहरा है, मतलब दिक्कत है,
1: कहीं कुछ गड़बड़
0: है, कहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए, साइंस प्रोग्रेसिव है, यानी कि अभी तक जितना जांच हो पाया उसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारी है जहां अभी तक विज्ञान नहीं पहुंचा है
1: जी।
0: और अगर जिस दिन उसका आविष्कार होगा तो बीमारी पता चलेगी, लेकिन अभी तक वहां पे वो सारे जांच नहीं आ पाए हैं जिससे ये पता चले कि औरत के अंडे का गुणवत्ता कैसा है, पुरुष के शुक्राणु में जेनेटिक कितना प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में कितना दिक्कत है, वो सारा चीज नहीं पता चल पाता है। इसलिए जो शुरुआती जांच है उसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन जो डीपर चीज है
1: जी,
0: अगर वो होता तो पता चलता कितना बीमारी। इसलिए बीमारी है, जांच सब कुछ ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है, दिक्कत है। और ये दिक्कत सबसे बेहतर जो आपका समझ पाएंगे वो निसंतान रोग विशेषज्ञ ही समझ पाएंगे। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जिस तरह कैंसर बीमारी किसी को होता है वो सबसे बेहतर कैंसर रोग विशेषज्ञ ही समझ सकते हैं। किन्हीं को हड्डी का प्रॉब्लम होता है तो उसका सबसे अच्छा इलाज हड्डी रोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। तो जिसको निसंतानता का दिक्कत है, आप सीधा निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलिए ताकि आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद नहीं हो। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब सब कुछ ठीक है फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, वो इसमें भी समझ पाएंगे क्या एक्चुअली दिक्कत है ताकि सही समय पे वो इलाज कराएं और बच्चा ठहर जाए।
1: लेकिन क्या करें, वो क्या करें, क्या इलाज होगा, आईवीएफ क्या है या और भी कोई प्रोसेस है?
0: बिल्कुल, ये भी जानना जरूरी है निसंतानता का इलाज क्या क्या है। निसंतानता का इलाज सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो करते हैं, और ये सबको जानना जरूरी है
1: जी,
0: कि निसंतानता का जो सबसे पहला इलाज होता है वो

0: लाइफस्टाइल ठीक करने से होता है, यानी कि जीवनचर्या ठीक कीजिए। आप रोज दिन उठिए, व्यायाम कीजिए, घर का साग सब्जी खाइए, फल खाइए। अभी तो प्रकृति ने भी हमें इतना सारा फल दिया है खाने को, स्वादिष्ट फल दिया है, फल खाइए। और टेंशन से दूर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। मोबाइल जो लोग स्क्रॉल करते हैं खासकर रात को, वो सब चीज बंद कीजिए ताकि आप एक अच्छा नींद सो कर पाए। और अगर आप ये मामूली जैसे जिनका वजन ज्यादा है, वजन कम करें, जो लोग बीड़ी सिगरेट गुटखा लेते हैं वो सब कम करें, अगर आप ये सब चीज ही ठीक कर लेते तो बहुत लोग को इन चीजों से भी बच्चा ठहर जाता है। लेकिन जिनको इन चीजों से नहीं ठहरता है उनको जरूरत होता है दवाइयों का। बहुत लोग को दवाइयाँ, 70% लोग तो दवाई से ही कंसीव कर जाते हैं। लेकिन जिनको दवाई असर नहीं करता तो अब जरूरत होता है IUI या IVF करने का। IVF एक बहुत ही आधुनिक तरीका है जिससे निसंतान दंपति को बच्चा ठहर जाता है, और अगर आप सही समय पे इलाज करा लेते तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है आपको बच्चा ठहरने का। आप जितना देर करेंगे आपका सक्सेस रेट भी उम्र के साथ घटता जाएगा,
1: सक्सेस रेट भी उम्र के साथ घटता जाएगा। हम एक बात एकदम हम अपनी भाषा में कि बच्चा नहीं है, हाँ कोई परेशानी नहीं है। जैसे हर बीमारी का इलाज आजकल मेडिकल साइंस में आ गया है, तो बच्चा नहीं होने का भी इलाज है, क्योंकि ये बीमारी है, इलाज हो सकता है। और उसमें अंतिम हाँ जो इलाज है वो IVF है, जिससे कि बच्चा हो सकता है। और डॉक्टर साहिबा सक्सेस रेट कितना है इसका?
0: अगर आप 30 के अंदर IVF करा रहे हैं,
1: 30 साल,
0: हाँ 30 साल से नीचे,
1: लड़की का या लड़का का?
0: लड़की का
1: हाँ।
0: तो आपका सक्सेस रेट 60-80%
1: होता है, तो बहुत ज्यादा है। हाँ।
0: अगर आप 40-45 के बाद कराते हैं, यानी अगर आप 45 साल जब किसी महिला का हो जाता है और उस समय अगर वो IVF कराती है, यानी कि पिछले 20 साल से वो निसंतानता से जूझ रही है या 25 साल से, और अब अगर IVF कराती है, तो उनको बच्चा ठहरने का चांस 20-30% या 40% है, जो कि कम है। इसलिए रेडियो के माध्यम से आज हम जो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बचपन बीमारी है, बहुत लोग जूझ रहे हैं इससे, और इसका इलाज संभव है। आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, श्रद्धा IVF 4 कदम आगे बढ़ के आपका हाथ थाम लेगा,
1: एकदम हाथ थाम लेगा। पहले एक बार नंबर फटाक से बता दें डॉक्टर श्रद्धा का, 9162562266, 9162562266 ये नंबर है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या, अर्थ की समस्या, पैसे की समस्या, वो भी दूर हो चुकी है। एकदम रीजनेबल हाँ खर्च लगता है, और वो भी उस खर्चे को श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में टुकड़ों में आप दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पर, जिसको EMI कहते हैं। यानी कि आप एक बार पैसा नहीं देंगे, 24 भागों में बांटकर आप पैसा दे सकते हैं। खुशियां पहले आएंगी, पैसा बाद में भी जा सकता है। इसीलिए अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो IVF का सहारा लीजिए, और IVF बोले तो श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी अपने राज्य में है, राष्ट्रीय स्तर का यह संस्थान है। और इस नंबर पर जरूर फोन करें, सकुचाए नहीं, शर्माए नहीं, 9162562266। जी हाँ, 9162562266। आप रात में, ज्यादा रात में ना करें, लेकिन कभी भी आप फोन कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। ममता का आंचल, आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे वर्ल्ड इनफर्टिलिटी अवेयरनेस मंथ। क्या कहेंगे हिंदी में डॉक्टर श्रद्धा, आप भी बोलिए ना।
0: इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग विश्व निसंतानता जागरूकता महीना।
1: जी,
0: ये इसलिए मना रहे हैं कि कोई दंपति जो निसंतानता से जूझ रहा है वो अकेला नहीं है।
1: हाँ।
0: बहुत से लोग जूझ रहे हैं, आप खुल के बात कीजिए और सही समय पे सही डॉक्टर से इलाज कराइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
1: आपको सफलता अवश्य मिलेगी, सिर्फ चुप्पी तोड़ने की बात है, चुप्पी तोड़िए, घुटिए मत अपने अंदर, लोग क्या कहेंगे ये भी मत सोचिए। हाँ, दिए गए नंबर पर, ये 9162562266, इस पर फोन कर लीजिए, संकोच नहीं, इलाज कराइए। चलिए आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं, डॉक्टर श्रद्धा कहते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
3: ममता का आचल, अखन हम सब ई प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे छलों, एहि संग आब आजुक गुनगुनाइत मन कार्यक्रम के समय सम्पन्न भ रहल अछि। खेती गृहस्थी में सब

0: किसान बंधु लोकन के अन्नदाता भाई लोकन के स्वागत संगे सब गोटे के नमस्कार। मेर भाई देखियो खेती पथारी वाला काजक संग हम सब पशुपालन बड्ड बेसी अदो काल से क रहल छी, कियाकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अहाँ देखब जे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन के बड्ड बेसी महत्व है, आमदनी के मुख्य स्रोत के रूप में पशुपालन
1: है। अनिल भाई
0: किया कि अपन सभक जे खेती हुई है त कखनो रौदी आ कखनो जे छै से बाढ़, ओना त बाढ़ अब कम अबैय मुदा रौदक प्रकोप त होइए, त एहिसँ सुरक्षाक लेल दोसर आमदनी के जरिया खोलि कऽ राखक चाही, ओ थिक पशुपालन।
1: देखियौ अनिल भाई, पशुपालन तऽ किसान सबके एकटा अहतिकीक धन छै, किया तऽ पशुपालन जे करै छथि अपना सब देखै छै अखन जैविक खाद जे छै से पशुपालन के ओकर गोबर से जैविक खाद खूब किसान

0: सुरक्षाक लेल दोसर आमदनी के जरिया खोल कर रखक चाही, ओ थिक पशुपालन।
1: देखियो अनिल भाई, पशुपालन तो किसान सबके एकटा अहतुकिक धन छै, किया तो पशुपालन जे करै छै तऽ अपना सब देखै छै अखन जैविक खाद जे छै से पशुपालन के ओकर गोबर से जैविक खाद खूब किसान भाई सब बनबै छै, आ जैविक खाद जे छै से खेती वास्ते एकटा अद्वितीय साबित भेल छै, जे जैविक खाद से जे उपजा होइ छै ओ स्वादिष्टो होइ छै, खेतो के माटि जे रहै छै सुरक्षित रहै छै,
0: आ संगे संग गुणवत्तापूर्ण फसल के उत्पाद होइ। एखन जे देखब अतेक बेसी लोग रोग से ग्रसित भऽ रहल छथि, एकर मूल कारण छै कि उपजा बढ़ेबा के क्रम में हम अहाँ ततेक बेसी अनर्गल रूपे रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाई सभक व्यवहार के लिए जाहि कारण से फसल के गुणवत्ता खराब भेल, आ हम सब अनेरे मधुमेह थायराइड बहुत तरहक रोग सबसे परेशान भऽ रहल छी।
1: ठीके कहलिए अनिल भाई, ताहि दुआरे किसान लोकनि खूब मालजाल पोसथि, एहि लेल जे भारत सरकार एकटा राष्ट्रीय गोकुल मिशन सेहो एकटा योजना चलेलक।
0: देखियौ दूध के संपूर्ण असंतुलित आहार के संज्ञा
1: देल गेल,
0: ओना दूध तऽ माय के दूध सर्वोत्तम होइए, मुदा गाय के दूध सेहो बड़ नीक होइए, सुपाच्य होइए, ओना कोनो के दूध जे होइ छै से अमृते होइ छै। तऽ भारत सरकार के दिशसँ राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाओल गेल अछि दिसंबर 2014। तऽ की कहैत रही राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संदर्भ में?
1: देखियो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के मुख्य उद्देश्य अछि देशी नस्ल के सुरक्षित करब, ओकरा संवर्धन करब, ओकरा संरक्षण करब। देखियो अनिल भाई, वैज्ञानिक आ आरो समग्र तरीका से देशक गाय आ महिषक स्वदेशी नस्ल के विकास आ संरक्षण करब, जाहि से विलुप्त होय वाला नस्ल के बचाओल जा सके, ई गोकुल राष्ट्रीय गोकुल मिशन के मुख्य ध्येय छै। अनिल भाई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लक्ष्य उत्पादकता में वृद्धि करब तऽ अछि, उन्नत तकनीक के उपयोग कऽ मवेशी के खास कर गोजाति के उत्पादकता आ दूध उत्पादन में अस्थायी रूप से वृद्धि के सुरक्षित और सुनिश्चित करब सेहो छै।
0: एकर अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकता के वृद्धि करब ई मिशन, आनुवंशिक सुधार, प्रजनन तकनीक के माध्यम से किसान भाई लोकन के आमदनी बढ़ेबा में मदद करैए। देखियौ अहाँ उद्देश्य के चर्चा के लिए तो कृत्रिम गर्भाधान ग्रामीण क्षेत्र में डोर स्टेप AI सेवाएं प्रदान करे वाला MAITRI बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीक एकर तकनीशियन सबक नियुक्ति करब, संगे संग पशुपालक किसान भाई लोकन के उद्यमी के डेयरी फार्मिंग, ब्रिड मल्टीप्लिकेशन फार्म, नस्ल गुणन फार्म, साइलेज इकाई के स्थापना के लिए बड्ड बेसी मात्रा में सब्सिडी अनुदान दिल जाइए, लागत के 50% धरि व विभिन्न घटक के अनुसार जे छै से अनुदान दिल जाइए।
1: देखियो अनिल भाई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के मुख्य उद्देश्य दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी संगे पशुपालन के वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित क ग्रामीण किसान लोकन के सीमांत पशुपालक भाई बहन के आय में वृद्धि करब। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के मुख्य उद्देश्य इहो अछि अनिल भाई, जे विनियमित वैज्ञानिक तरीका से देशी मालजाल के पालन आ ओकर संरक्षण के बढ़ावा देल जाए।
0: मीर भाई गप करब कनि कलक छोट सन विराम।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: देखियो, बिना भगवान आ भगवती कृपा से कोनो काज संभव नहीं है। खेती पथारी करू कि पशुपालन करू कि कोनो काज करू, कोनो शुभ काज करू, तो भगवान आ भगवती के आशीर्वाद बड़ बेसी आवश्यक। साँझक बेर अ तो सुनी हम सब एक सुंदर सन भगवती गीत कलाकार सहित कुमकुम झा।
1: सुनल जाओ गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आज संदेश से पहले हम सब जे गीत सुन रहा चलो। गीतक कलाकार छे कुमकुम झा, खूब सुंदर गीत छल। ते मेहर भाई, हम सब चर्च कह रहा छो जे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ते विस्तार से गप करी ते की है, कोना की छे से कहियो।
3: देखियो अनिल भाई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य छे प्रजनन में सुधार सेहो छे। एकर प्रजनन के उद्देश्य के तहत नीक उच्च अनुवांशिक स्वदेशी गुणवत्ता वाला सांड के उपयोग के बढ़ावा दे परमावश्यक छे। देखियो अनिल भाई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा सब्सिडी सेहो प्रदान कयल जाइत अछि। जना गाय आ महीस के लेल 4 करोड़, तो सुअर के लेल 1 करोड़, मुर्गी के लेल 60 लाख, संगे ओते बकरी के लेल 50 लाख रुपया तक का सब्सिडी मुहैया किसान भाई लोकन के राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत देल जाय छे।
2: देखियो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जे घटक के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाला संतानक परीक्षण, वंशावली के चयन आ जीनोमिक चयन, संगे संग जर्म प्लाज्म के आयात के माध्यम से बरद आ महीस के आनुवंशिक क्षमता वाला जे ओमे वृद्धि कर, संगे संग जे अइ पशु सभक जे वीर्य केंद्र स्पर्म केंद्र ओकरा सुदृढ़ करब, सुनिश्चित गर्भधारण के लेल विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, पशुधन में आनुवंशिक सुधार हेतु नस्ल गुणन जे छे सेहो व्यवस्था करब, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क देश भर में कृत्रिम गर्भाधान धक मैंने पहुँचबाक लेल व्यवस्था करब, ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन सभक स्थापना पर प्रोत्साहन दे, संगे संग राष्ट्रीय गोकुल मिशन डेटा प्रबंधन सेवा वितरण सुधार के लेल राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के सेहो काज कर रहा, देशी नस्ल सभक संरक्षण, देशी मवेशी के देखभाल ओकर संरक्षण, गौशाला के सेहो समर्थन, कौशल विकास आ जागरूकता क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से कौशल विकास पर बेस ध्यान दे जाते, किसान भाई लोकन में जागरूकता बढ़ाए, गौजातीय प्रजनन में अनुसंधान आ नवाचार के समर्थन करब, वित्त पोषण स्वरूप जे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के जे घटक है ओकरा बड्ड बेसी नम्हर स्तर पर 100% जे छै से मदद करब।
3: ठीके कहलिए अनिल भाई। देखियो, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ग्रामीण स्तर पर मवेशी के बथान तक कृत्रिम गर्भाधान आ चिकित्सा सुविधा निर्बाध रूप से पहुँचित रहे, ई ओकर मुख्य ध्येय छै राष्ट्रीय गोकुल मिशन के।
2: देखियो, किसान भाई लोकन के पुरस्कार के लेल सेहो व्यवस्था कयल गेल, देशी मवेशी आ पशुपालक के उत्कृष्ट प्रबंधन के लेल गोपाल रत्न पुरस्कार, कामधेनु पुरस्कार के व्यवस्था सेहो कयल गेल। ई पशुहाट नकुल प्रजनन बाजार प्रजनक किसान भाई लोकन के जोड़ वाला ई मार्केटिंग पोर्टल है। देखियो, हम अहाँ जाहि क्षेत्र में रहै छी, छोट सन जमीन जगह लै छी, घर बनबै छी, तो ओकरो छरदेवारी से घेरै छी। अपन सभक देश विश्व में सबसँ नम्हर देश, विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो अपन देश के चारू कात जे सीमावर्ती क्षेत्र एक, तो ओहि क्षेत्रक विकास आ संगे संग सुरक्षा ई दुनू आवश्यक है, किएक जे ओ क्षेत्र जे

0: यह जे सीमा से लगल हुई है ओहिठामक जे आवश्यक आवश्यकता वाला चीज है जेना पानि भेले बिजली भेले खेनाई पिनाई भेले जो खेती योग्य भूमि है तो ओकर व्यवस्था निक जका ई सब काज पर ध्यान दे बड़ा आवश्यक है।
1: ठीक है कहलिए अनिल भाई। सीमावर्ती क्षेत्र विकास आ राष्ट्रीय सुरक्षा एक दोसर के पूरक कही तो कोनो हर्ज नहीं। अपना सबके बुझल जे अपन देश भारत के कतेको सीमा दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति आ शून्य से कम जत तापमान है ओत जे ओकर सुरक्षा परम आवश्यक है। अनिल भाई सीमावर्ती क्षेत्र विकासक कार्यक्रम BADP गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एगोट प्रमुख योजना है।
0: तो मेरे भाई यही संग आब बेर भ चल सुनी हम सब एक सुंदर सन गीत
1: सुनल जाओ गीत।

0: खूब सुंदर। एखन जे हम सब गीत सुनल छलहुँ, गीतक कलाकार पार्वती मिश्रा तमीर भाई आब बेर भऽ चलल अइ मौसम संबंधी सूचनाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित मौसम विज्ञान केंद्रसँ जे टटका मौसम संबंधी सूचना आयल अइ ओ की छै से श्रोता लोकनिके किसान भाई लोकनिके कहि दियौ।
1: देखियौ, अजुका मौसमके सूचना जे अछि, बिहारमे मानसूनके प्रवेश भऽ गेल अछि। एकर प्रभावके सँ पूर्वानुमान अवधिमे अधिकतम समयमे आसमानमे हल्लुकसँ मध्यम

0: आओर कतौ कतौ बादल छायल रहत आ हल्लुक वर्षा होय के सेहो संभावना छै।
1: देखियौ ई जे मौसम अछि अपने के 13 जून सँ 17 जून धरि के अछि, संगे संग अहाँ कहबे के लिए जे अधिकांश जिला में अधिकतम तापक्रम 30 सँ 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहबाक संभावना अछि, जखन कि बेगूसराय सारण जिला में ई जे छै से 34 सँ 36 डिग्री सेंटीग्रेड धरि पहुँच सकैए, जखन न्यूनतम तापक्रम के गप करी तऽ 22 सँ 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहबाक संभावना अछि। सापेक्ष आर्द्रता भिनसर में 75 सँ 80% बेरुपहर 30 सँ 35% धरि रहबाक अनुमान अछि। आ बसात कोना की चलते से कहि दियो।
0: पूर्वा बसात चलै के अनुमान अछि जे 12 सँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा के गति सँ चलै के संभावना छै।
1: किसान भाई लोकन के लेल समसामयिक सुझाव सेहो देल गेल अछि, जेना तिमन तरकारी गप करी तऽ रमतोरई सजमैन खीरा नेनुआ लौकी के फसल में निकौनी आ कमठौनी वाला काज संगे खर पतवार के नियंत्रण करबाक चाही। पत्ती खाय वाला सूढ़ी कीड़ा सबके सेहो आ फल छेदक कीड़ा के नियमित रूप से निगरानी करी, जखन प्रकोप देखवा में आवे तो डाइमेथो 80 cc दवाई के 1 ml प्रति लीटर पानी में नीक जका मिलाकर घोल बना ली आ छिड़काव करी। एहि संग आब आजुक खेतीग्रस्ती कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पे किसान भाई लोकन से चलबाक आज्ञा लेल जाए। नमस्कार मिहिर भाई।
0: नमस्कार अनिल भाई।

अभी आप सुन रही थी खेती गृहस्थी और गांव घर कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण पटना केंद्र से थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ। आयुष्मान योजना से करोड़ों लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर दिलाई जाएगी नई पहचान। प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। और बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। श्री नड्डा ने कहा कि देश में एम्स की संख्या आज 23 हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमारी के कारण किसी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण का नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत जनता का अटूट विश्वास और सेवा भाव है, जिसके बल पर देश आज आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जितने काम हुए हैं और गांव गरीब के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपने आप में पूरे देश और दुनिया में बेमिसाल है। विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने राजनीतिक स्तर पर

0: सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और विशेष करके गरीबों का कल्याण, किसान की खुशहाली, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण और इस तरह के बहुत से ऐसे काम किए जो अपने आप में उनके कार्यकाल का बेमिसाल नमूना है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया जाएगा। श्री चौधरी आज पटना में पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में राजगीर, गया और नालंदा सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजगीर, मां मुंडेश्वरी मंदिर और करकटगढ़ जलप्रपात के लिए हेलीकॉप्टर सेवा तथा वाल्मीकि नगर के लिए रियायती वायु सेवा शीघ्र शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर को वैश्विक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र और नालंदा को वैश्विक ज्ञान एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू की जाएगी। उन्होंने विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने तथा पर्यटकों के लिए पटना से गंतव्य तक सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित केंद्रों पर आज मद निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही भर्ती के लिए पहले चरण की लिखित परीक्षा 2 पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इन पदों पर बहाली के लिए दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 17 जून को होगी। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से 4,200 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इधर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने पर्याप्त ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाते हुए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। नाराज छात्रों ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव किया। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप से हंगामे को काबू में कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य किया गया।
2: अभ्यर्थी कुछ असामाजिक तत्व से जो ट्रेन को खुलने नहीं दे रहे थे, पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा पथराव इत्यादि किया गया। जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उन सभी का वीडियो फुटेज, फोटोज इत्यादि हमारे पास उपलब्ध है। प्राथमिकी रेल थाना के द्वारा दर्ज करके उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई।
1: इधर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
3: हम ये बात समझते हैं कि ये छात्रों का काम नहीं है, इसमें जरूर असामाजिक तत्वों का हाथ होगा और असामाजिक तत्वों की वजह से इस तरह का कृत्य हुआ है। इसकी सरकार जांच कराएगी और जांच कराने के बाद जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि रेल प्रशासन और सरकार की ओर से परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा स्थल तक पहुंचने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी।
4: इस घटना की जांच होनी चाहिए। अराजक स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सरकार का, रेलवे प्रशासन का फेल्यूर है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1,278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री चौधरी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का भी शुभारंभ किया। इधर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गया जी जिले के खीजर सराय में एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। यह केंद्र 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य का सर्वोच्च कानूनी पद रिक्त हो गया है। हालांकि इस्तीफे के कारण की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पीके शाही बिहार की राजनीति और विधि जगत का एक जाना पहचाना नाम है। वे सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार का प्रभावी ढंग से पक्ष रखा और सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाई। तत्कालीन महाधिवक्ता ललित किशोर के इस्तीफे के बाद पीके शाही को 16 जनवरी 2023 को बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जो सरकार को कानूनी सलाह देने के साथ साथ उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक मंचों पर उसका पक्ष रखता है। बिहार के तीन पारंपरिक उत्पादों, नालंदा के 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, कलाकारों और संबंधित संस्थाओं को बधाई दी। श्री चौधरी ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल और ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। नालंदा जिले की प्रसिद्ध 52 बूटी बिहार की प्राचीन बुनकरी परंपरा का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस विशिष्ट वस्त्र कला में कपड़े पर 52 प्रकार के पारंपरिक बौद्ध एवं सांस्कृतिक प्रतीकों के हथकरघे से बुना जाता है। इस कला में प्राकृतिक रंगों एवं पारंपरिक प्रतीकों के माध्यम से लोक जीवन, पारिवारिक संबंधों, धार्मिक आस्थाओं और ग्रामीण संस्कृतियों का सजीव चित्रण किया जाता है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस अवसर पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। इस अवसर पर पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम लोगों ने रक्तदान किया। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आज पटना में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हृदय रोगों के आधुनिक उपचार, नई तकनीकों और जटिल मामलों के प्रबंधन पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. बीबी भारती ने कहा कि मोटापा, तनाव और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण हृदय रोगों के मामले बढ़ रहे हैं।
2: जो रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का वो बढ़ रहा है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए नए रिस्क फैक्टर में जैसे कि ओबेसिटी, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, इसके अलावा जो फिक्स एजिंग है, इसके अलावा स्मोकिंग है, लिपिड है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हाइपरटेंशन, ये सब सारी बातें जो एक्चुअली एजुकेशन का अभाव है भारतीय लोगों में। समझना पड़ेगा किस चीज के कारण हार्ट अटैक होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए।
1: असम के जोरहाट एयरबेस में विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के दो वीर सपूतों फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर आज पटना के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की ओर से दोनों शहीदों को सैन्य सम्मान दिया गया। श्रद्धांजलि के बाद अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर भोजपुर जिला और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का पार्थिव शरीर जहानाबाद जिले के लिए रवाना कर दिया।

0: आ गया। प्रदेश में मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मॉनसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।
1: दिनांक 15 जून राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास आज हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रोहतास पुलिस ने फ्लिपकार्ट के महंगे सामानों की हेराफेरी कर ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के कोचस बाजार में एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़कर नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल वाहन को मोहनिया से बरामद कर लिया है। एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ। आयुष्मान योजना से करोड़ों लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर दिलाई जाएगी नई पहचान। प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। और बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से दिया इस्तीफा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
1: अररिया जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां मौसम में ठंडक बनी हुई है, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के चलते खेतों में नमी बढ़ गई है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। विशेषकर धान की रुपाई और अन्य खरीफ फसलों की तैयारी के लिए यह बारिश लाभकारी साबित हो रही है। हालांकि लगातार बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाये रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इधर जिले में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर प्रभारी सचिव मोहम्मद सोहेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी विनोद तुहन, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जिले की 72 पंचायतें पूर्ण रूप से तथा 60 पंचायतें आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं। बैठक के दौरान 15 जून तक तटबंधों की मरम्मत कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 165 नावें, 10 मोटरबोट

0: 40,790 पॉलिथीन शीट्स, 135 लाइफ जैकेट सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 397 सामुदायिक रसोई केंद्र तथा 363 राहत शिविर भी चिन्हित किए गए हैं। प्रभारी सचिव ने सभी अंचलाधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के बैंक खातों में पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। अररिया जिले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,59,648 लाभुकों के खातों में 30,34,00,000 रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इस अवसर पर अररिया समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभुकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को पेंशन की राशि लाभुकों के खातों में अंतरित की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जून 2026 से अररिया जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, टिकाऊ और लाभकारी कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक बनाना है। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने, मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत जिले में 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की हस्तलिखित पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण कार्य जारी है। इस अभियान के तहत अब तक जिले में कुल 176 पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पुस्तक प्रेमियों तथा निजी संग्रहकर्ताओं से अपील की गई है कि यदि उनके पास ताड़पत्र, कागज अथवा ताम्रपत्र पर लिखी गई 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक या सामाजिक महत्व हो, तो वे इसकी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। जिला एवं कला संस्कृति पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के तहत किसी भी संग्रहकर्ता से मूल पांडुलिपि नहीं ली जाएगी, केवल पांडुलिपियों का फोटोग्राफ और आवश्यक विवरण ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिससे उनका डिजिटल अभिलेख तैयार किया जा सके। जिले के सभी प्रखंडों में आगामी 17 और 18 जून 2026 को 2 दिवसीय प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना है। इस विशेष अभियान के दौरान विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, दस्तावेजों का सत्यापन, ईकेवाईसी प्रक्रिया, लंबित मामलों का निष्पादन तथा स्वीकृत लाभों का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर में आम जनता को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े। शिविर में सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक प्रखंड में संबंधित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार की संयुक्त अगुवाई में अररिया और जीरो माइल स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि, सड़क किनारे सुरक्षा क्षेत्र तथा राइट ऑफ वे पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में जिले से होकर गुजरने वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रही थी सिर्फ तुम फिल्म का गीत कुमार सानू और अलकैया की आवाजों में। गीतकार थी आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह। लीजिए अब पेश है मोहरा फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं पंकज उधास और साधना सरगम की, गीतकार इंदिवर, संगीतकार वीजू शाह। लीजिए पेश है

अभी आप सुन रही थी अभिजीत और अलका याज्ञिक को फिल्म बादशाह में। गीतकार थे समीर, संगीतकार अनु मलिक।

अभी आप सुन रही थी एसपी बाला सुब्रमण्यम को फिल्म साजन में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कुछ फिल्मी गाने आप हमारे केंद्र से रात 9:30 पर भी सुन सकते हैं। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है खेल गतिविधि पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत।

कार्यक्रम क्रीड़ा जगत में आप सभी खेल प्रेमियों का स्वागत है। श्रोताओं नमस्कार, आज के इस अंक के साथ मैं हूं दीपक कुमार झा। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की, साथ ही चर्चा करेंगे झारखंड प्रीमियर लीग 2026 के बारे में, और इसके साथ ही हम राष्ट्रीय खेल नीति 2025 पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसी पर आधारित एक भेंट वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। इसके अंतर्गत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अमृत कुमार झा से राष्ट्रीय खेल नीति पर आधारित हम भेंट वार्ता सुनेंगे। इसके अलावा खेलों की साप्ताहिक गतिविधि की ओर भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे कुछ बातचीत। श्रोताओं, विगत दिनों 11 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 11 जून 2024 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। इसका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों तथा बाल अधिकार समूहों के प्रयासों से किया गया। इस दिवस का उद्देश्य खेल को वैश्विक विकास की प्राथमिकता के रूप में स्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत खेल को पहले से ही मान्यता प्राप्त है, जो प्रत्येक बच्चे के विश्राम, अवकाश तथा खेल के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के लिए इसका थीम है, खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। यह दिवस इस बात पर विशेष रूप से जोर देता है कि सुरक्षित और सुलभ खेल के अवसर

0: प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक हैं। यह बच्चों के लिए संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास में अनौपचारिक खेल की भूमिका को मान्यता देता है। इस दिवस के बारे में और अधिक जानकारी जानने या किसी विशिष्ट आयोजन के बारे में जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट को देखा जा सकता है। वैसे बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा खेलों के माध्यम से शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं हमारे देश भारत में भारतीय दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं झारखंड प्रीमियर लीग 2026 की। झारखंड T20 लीग 2026 भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे रोमांचक नए आयोजकों में से एक है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA T20 लीग का पहला संस्करण है जिसमें केवल झारखंड के क्रिकेटर ही भाग लेंगे। 10 जून से 23 जून 2026 तक चलने वाले इस लीग में 6 शहर आधारित फ्रेंचाइजी 24 मैचों का लीग चरण, 2 सेमीफाइनल और 1 ग्रैंड फाइनल शामिल हैं, जो सभी रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसमें ईशान किशन, रॉबिन और कुमार कुशागड़ा के नीलामी में सबसे आगे रहने के साथ झारखंड T20 लीग की शुरुआत दमदार और पावर के साथ शुरू हुई। ये 6 फ्रेंचाइजी जो हैं वो रांची टाइटंस, जमशेदपुर स्टीलर्स, छोटा नागपुर रॉयल्स, कोयलांचल सुपर किंग्स, धनबाद डायमंड्स और संथाल स्ट्राइकर्स। डीडी स्पोर्ट्स पर यानी दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर सभी मैच मुफ्त में देखे जा सकते हैं। इस लीग का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली और घरेलू क्रिकेटरों को एक बड़ा मंच प्रदान करना है। श्रोताओं, अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल नीति 2025 की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2025 में नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी, जो पुरानी राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना और 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी करना है। यह नीति देश के खेल परिदृश्य को बदलने के लिए मुख्य रूप से केंद्रित है। इसके नीति के बारे में यदि बताते चलें तो जमीनी स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में खोजना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार करना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही खिलाड़ियों को ट्रेनिंग, कोचिंग और वैज्ञानिक सहयोग के लिए अत्याधुनिक प्रणालियां प्रदान करना है। राष्ट्रीय खेल महासंघों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और क्षमता की वृद्धि करना है। इस नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में खेलों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। खेलों का आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। साथ ही महिलाओं, आदिवासी समुदायों और वंचित समूहों की खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है। तो श्रोताओं, आगे बढ़ते हुए इसी विषय यानी राष्ट्रीय खेल नीति को लेकर आइए एक भेंट वार्ता सुनते हैं। श्रोताओं नमस्कार, दरभंगा जिले के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो खेल विभाग है उसमें कई तरह के खेलों को यहाँ के विद्यार्थियों ने उस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ वो अपने समाज, वो अपने परिवार और अपने देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। और उस खेल विभाग के जो खेल पदाधिकारी हैं प्रोफेसर अमृत कुमार झा जी आज हमारे बीच आए हैं और जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 इसके संदर्भ में भी हम इनसे बातचीत करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको अपने आकाशवाणी के इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जो बनाई गई है इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर हमारे युवाओं के लिए। मैं शुरुआत में ही कह दूं कि ये सभी को अमूमन पता ही है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व पटल पे सबसे युवा देश जो है वो हमारा भारत है और उस युवा देश का सबसे युवा जो प्रदेश है, जो राज्य है, वो हमारा बिहार है। खेल ऐसा माना जाता है कि वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म को नहीं देखता है। और क्योंकि मैं मनोविज्ञान का भी छात्र हूँ, खेल सभी के लिए है। वो आपके नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके फिटनेस के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके इंथुजियाज़म

0: माध्यम के लिए, जीवन में एक पर्पस के लिए, जीवन जीने का एक माध्यम। अब जिस तरीके से इसको ले, जैसे हम संगीत सुनना पसंद करते हैं, लोग का अमूमन एक हॉबी होता है, उसी तरह की खेल हमेशा एक आउटसाइड एक्टिविटी की तौर पे लिया गया हमेशा से, चाहे वो बात 1984 की खेल नीति की हो, फिर 2001 की हो, फिर 2011 की हो, जहाँ पे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, खेल को अब स्ट्रीमलाइन किया जाए, जो कि मुख्य धाराएं हैं युवाओं की, उसमें लाया जाए। उसमें और आज के परिवेश में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हमारे प्लेयर्स दिन पे दिन, खासकर इधर कोरोना के बाद देखिए, अगर आप अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिव्या देशमुख जी जो वर्ल्ड चैंपियन हुई हैं चेस में, उसके पहले प्रसिद्धा कृष्णा हैं और जो भी हैं गुकेश दी हैं और बहुत सारी, क्योंकि पहले का जमाना रहा, खासकर मिथिलांचल की बात करें तो क्रिकेट एक प्रमुख खेल के तौर पे उभरा, अभी भी है। हम हर जगह देख सकते हैं कि बच्चे वो खेल एक ही गेम ऐसा माना जाता, क्रिकेट ही गेम है आप पहले। हाँ,
1: और मिथिला के भी जो कुछ खिलाड़ी है उन्होंने इस बार IPL में खेला है,
0: वैभव सूर्यवंशी जी जो उन्होंने धूम मचाया और धमाल हमने देखा। ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं तो हमारे हर कह भी जाता है कि यहाँ गली गली मैच थी ने मिथिला में, तो ऐसा देखा भी गया है। और जो एक माइंडसेट बन गया था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब,
1: वो मानसिकता अभी टूटी
0: है। और मैं ऐसा देखा, अब मैं तो उसको मैं खुद देख रहा हूँ कि खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये अब नया एक नया इंडिया, एक न्यू इंडिया साफ दिख रहा है। युवाएं आप देख रहे होंगे, बहुत सारे प्राइवेट कंपटीटर्स भी आ गए हैं। इस परिवेश में नई राष्ट्रीय खेल नीति आने का कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी भी आपने देखा होगा कि ओलंपिक में हम बहुत पीछे हैं, तो सरकार ने ये चाहा है कि जो प्रतिभा हमारे गांवों में, उन्होंने गांव को फोकस किया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी को फोकस किया, ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रासरूट लेवल के जो हमारे प्रतिभावान प्लेयर्स हैं हर एक विभिन्न विधाओं में, विभिन्न खेलों में, वो इस चीज़ को समझें। और यूनिवर्सिटी को उन्होंने रीजनल स्पोर्ट्स क्लब को एक उपाधि के तौर पर रखा है, जहाँ के बच्चे जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो आए, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, और मिथिला यूनिवर्सिटी क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है और हम लोग ये हमेशा से इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखे हैं हमारे बच्चे। और मैं बता दूं, जब इसकी बात होगी तो हम लोग ने नित नए परचम लड़ाया है खेलों में।
1: ये जो खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल नीति 2025, ये दोनों में क्या अंतर है?
0: अंतर यही आप समझिए कि खेलो इंडिया का शुभारंभ होता है, वो एक कंसेप्ट आता है जो हमारे युवाएं हैं, खासकर जो मैंने शुरू में कहा कि युवा देश है और खेल में फिटनेस और युवा शक्ति की बहुत ज़रूरत है, उन्होंने इस चीज़ को उभारा और ओलंपिक उनका नाम ही दिया गया फ्रॉम स्कूल टू पोडियम, और इस चीज़ को लाया। इसके तहत आपने देखा होगा कि बहुत सारे विभिन्न स्टेडियम बने, और इस नई राष्ट्रीय खेल नीति में उन्होंने इस बात का, पूरे सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि सभी को इंक्लूसिविटी हो। इंक्लूसिविटी का मतलब ऐसा ना हो कि सभी की बस एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पहले से रहा कि जो बहुत धनवान है या जो जिनको जिनके पास खेल के रिसोर्सेज हैं उन्हीं को वो प्लेटफॉर्म मिले, उन्हीं को रिसोर्सेज मिले, ऐसा ना हो, सभी के लिए एक अधिकार सम्मान हो, सभी खेलें, सभी फिट रहें। और एक इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है जो पहले से उन्होंने चेंज किया, जिसको हम लोग कहते हैं भी है पैराडाइम शिफ्ट, कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है इसमें नई राष्ट्रीय खेल नीति में। टैलेंट आइडेंटिफाई का मतलब है प्रतिभा का पहचान करना, चिन्हित करना और उसको वो सम्मान दिलाना जिसका वो हकदार।
1: तो ये प्रतिभा पहचान कौन करेंगे?
0: प्रतिभा पहचान यही करेंगे, जैसा आपने हमने बिहार प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मेजर लाओ नौकरी पाओ, हर आपने देखा होगा कि हर प्रखंड में या मैदान का एक उन्होंने शुरुआत हुआ है, ये जरूर है कि मसाल जल्दी है। पहचान करेंगे हमारे आपके जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, आपने कहा कि मिथिला के बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान रहे हैं जो लोकल हैं या कोचेज हैं, वो करेंगे, यूनिवर्सिटीज करेगी, स्कूल करेगी, और एक हायरार्की बनेगा, एक सिस्टम बनेगा कि जो स्कूल में अच्छे कर रहे हैं वो फिर फॉलोअप करेंगे, यूनिवर्सिटीज उसको फॉलोअप करेंगी।
1: देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो स्कूल की शिक्षा जब तक उन्होंने ली स्कूल की ओर से उन्होंने नहीं खेला, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और खेल में आगे बढ़ गए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, उनकी प्रतिभा कैसे, किस तरह से पहचानी जाएगी?
0: ये इस बात का भी ध्यान रखा गया है नई खेल नीति में कि ऐसे जो प्रतिभावान प्लेयर्स हैं जो खेल जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, खेल को अपना कैरियर बना लिए हैं, उनके लिए जैसे मैं जस्ट कहा भी, जैसे बिहार प्रदेश में ही है, हमारे राज्य में ही है,

0: अलाव नौकरी पाओ, ऐसे जो मेरिटोरियस प्लेयर्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट रहेगा जॉब्स में, ये प्रावधान है इसमें। और ऐसा हो सकता है कि उनको पेंशन का भी मिलेगा आगे जाके, ये अभी मैं जस्ट एक विजनरी आइडिया बता रहा हूँ जो उसमें मैं देखा है, मैंने पढ़ा है उसके मसौदे को। और ऐसे प्लेयर्स को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी हर एक सेक्टर्स में, ताकि एक मोटिवेशन हो, जो आपने कहा शुरू से मैंने बात भी की कि कभी भी खेल को प्राथमिकता नहीं देंगे, हमेशा उसको एक रखा गया आउटसाइड एक्टिविटी में, मतलब फ्री हो। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे, हमारे जो सहभागी होंगे वो जानते होंगे श्रोतागण, कि कंसेप्ट होता है ईसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो करिकुलम के अलावा हो, नामी है एक्स्ट्रा, वो आ जाता था स्पोर्ट्स में, म्यूजिक आता था। अब एक नया जो एक माइंडसेट फिट, क्योंकि माइंडसेट बहुत ज्यादा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब में, प्राथमिक आप जो सोचते हैं वही करते हैं, अब वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है शब्द को। नई शिक्षा नीति में हिसाब आया है को करिकुलर एक्टिविटी, मतलब जो शिक्षा के साथ चले। तो क्योंकि सही शिक्षा नीति हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट माने सभी को पता है, ऐसा ना कि बच्चा बस पढ़ रहा है, उसको जीवन की कौशल भी पता हो, तो जीवन में खेलों के बारे में पता हो, संगीत के बारे में पता हो। हमारे नाथ शास्त्र में, हमारे पुराने शास्त्रों में करीब 64 कलाओं की बात की गई है। और इधर क्योंकि हम लोग एक कॉरपोरेट स्लेव्स की ओर बनते जाते हैं, इस सब को देखते हुए नई शिक्षा नीति और नई खेल नीति, एक नया भारत एक जन्माएगा। और जो युवाएं हैं, जो खासकर आपने कहा भी वैभव सूर्यवंशी जी हैं, और भी जो नई नई जो प्रतिभा आप देख रहे हैं, जो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे हम लोग जमाने में, याद है चेस में बस विश्वनाथन आनंद जी का नाम आता था
1: जी, जी।
0: अभी आप देखें तो ये आप हर गेम में देखेंगे, चाहे नीरज चोपड़ा जी हों, हर एक गेमों में ऐसे ऐसे नाम उभर के आ रहे हैं। और ये सभी माने या ना माने, 10 साल बाद या 15 साल बाद इसका जो टेंजिबल इफेक्ट है वो पूरे जनमानस, सोसाइटी पर, समाज में दिखेगा, जहाँ खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है। हर एक नए विभाग भी खुलेंगे हर डिपार्टमेंट में, हो सकता है स्कूल में भी, हो सकता है स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डिपार्टमेंट खुलो, स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट खुलो।
1: जी। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार की बात करें तो यहाँ जो खेल की जो गतिविधियाँ हैं उनकी अपेक्षा बिहार की स्थिति के बारे में क्या कहिएगा?
0: पहले सभी को पता है, पहले हम लोग बहुत पीछे रहे, क्रिकेट ही हम लोग का एक रहा जहाँ पे कुछ नाम आते थे, चाहे वो सबा करीम जी हों। इधर आपने देखा होगा खासकर विगत 2-3 सालों में, आफ्टर कोरोना जिस हम कह सकते हैं, सबसे पहला जो मेजर डेवलपमेंट हुआ, जो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उदय होता है, हमारे ऑनरेबल सीएम उसके चांसलर होते हैं। राजगीर में आपने देखा होगा अभी
1: खेल विश्वविद्यालय
0: बना है, वहाँ गेम शुरू हुए, अभी विगत गेम हुआ, अभी एक एशिया कप का हॉकी होने वाला है। तो धीरे धीरे हम लोग जो एक मैंने कहा आपको कि 0.1 अगर चेंज होता है तो वो बड़ा चेंज हुआ, 0.1 0.2, ये सब चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये 0 से 1 पे ले जाएगा, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कहते हैं। और ये सब चीज़ें होना, हमारे प्रतिभागियों को जॉब सिक्योर होना, हमारे प्रतिभागियों को ये होना कि अगर हम मेडल लाते हैं नौकरी पाएंगे, जीवन हमारा सेट होगा, ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी जो हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी क्योंकि धरातल पे हैं, धीरे धीरे उभर के आ रही हैं। जो पहले का बिहार था और नया बिहार था वो 5-10 साल बाद आपको नया दिखेगा।
1: अच्छा, एक जिज्ञासा है कि जो खेल विश्वविद्यालय है उसमें क्या क्रिटेरिया है, छात्र उसमें कैसे नामांकन ले सकते हैं, यहाँ के या अन्य जिलों के जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं?
0: जैसे आप देखेंगे कि शुरुआत में ही बेसिक, जब 2 कोर्सेज हर पूरे ऑल इंडिया में चलता है, BPED और BPMPED, उसी को अब नई शिक्षा नीति में जो ज़्यादा फोकस किया गया है कि नहीं, अब फिजिकल एजुकेशन ठीक है, आप इसको स्पोर्ट्स को भी एक्टिविटी नहीं, एक करिकुलम के तौर पे लाइए। अब वो कोर्स हो गया BPES और MPES, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आप देखिए छोटी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत दूर तक जाती हैं। आपने स्पोर्ट्स को जोड़ा, उससे क्या हुआ, सिंपल कोर्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कोर्स है जो हम लोग BA MA करते हैं, ये आ गए स्पोर्ट्स में, आइए तो BPES MPES। अब इधर नई शिक्षा नीति में भी आया है, इसमें क्रेडिट सिस्टम की बात होती है, मल्टीपल एंट्री की एग्जिट की भी बात होती है। अब नया आ रहा है राष्ट्रीय खेल नीति, इसके तहत आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज जो आपने नाम लिया, मैं नाम लेने वाला हूँ, वो नई इसके तहत आपको हो सकता है कि आपके आपके आजू बाजू जो यूनिवर्सिटी है उसमें दिखा देगा। जैसे एक है खेल मनोविज्ञान, मैं खुद मनोविज्ञान का छात्र हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, हमने उसे इस कॉन्सेप्ट, ये हर बच्चों के लिए मैंडेटरी किया है बेसिक स्कूल में, बेसिक यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा आप इसमें भी बात हो गई कि स्पोर्ट्स को स्ट्रीमलाइन मतलब स्टैंडर्ड किया जाए, तो स्पोर्ट्स फिटनेस का भी कोर्स चलेगा, कोचेस का भी, ऐसा नहीं कि कोई भी कोच बन सकता है, अब उनके लिए स्पेशलाइज कोचेज

0: होंगे हर सब्जेक्ट के लिए। पीजी डिप्लोमा कोर्स चलता है, फिर सर्टिफिकेट कोर्स चलता है, स्पोर्ट्स टेस्टिंग पे, स्पोर्ट्स मेडिसिन पे, स्पोर्ट रिहैबिलिटेशन पे 6-7 कोर्सेज हैं जो कि बिहार खेल विश्वविद्यालय में ये अभी शुरुआत हुई है। जो बच्चे इच्छुक होंगे, जो वो अप्लाई कर भी चुके होंगे, ये UGC से इसका मान्यता प्राप्त। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से मैं हर बच्चे जो अगर सुन रहे होंगे कि योगा पूरे देश को हम लोग पूरे विश्व को हम लोग सिखाए हैं, तो युवाओं से अपील रहेगा कि वो योगा भी करें और योगा कॉम्पिटिशन में भी जाएँ, जिससे वो आगे भी अपना जीवन सिक्योर कर सकते हैं। विभिन्न विधाओं में गेम होता है और दोनों प्रतिस्पर्धाओं में होता है, कैटेगरी में, मेल में भी फीमेल में भी। करीब हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में आपको ये गेम मैक्सिमम, हम लोग का ये ऑनरेबल वीसी साहब का भी सपना है कि हर एक कॉलेज को मैक्सिमम, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, जो काबिल है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज करे और तुम्हारे बच्चे यहाँ से।
1: बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ आपने दी है। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना के जो राष्ट्रीय खेल नीति है वो किस तरह से हमारे लिए लाभदायी है, किस तरह से हम इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अमृत कुमार झा जी। झा जी, आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों की ओर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने 20वें एशियन गेम्स के लिए भारत की राइफल और पिस्टल टीम घोषित कर दी है। इसमें 30 खिलाड़ी शामिल हैं। शॉटगन टीम पहले ही चुनी जा चुकी है। जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होंगे। एशियाड के लिए जारी टीमें अगले महीने हांगजो में होने वाले ISSF वर्ल्ड कप और अक्टूबर में काहिरा वर्ल्ड कप में भी खेलेगी। NRAI की लिस्ट के मुताबिक पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और 2022 एशियन गेम्स की स्टार ईशा सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल दोनों इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। राइफल कैटेगरी में रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल और विदर्शा के विनोद भी दो दो इवेंट्स में खेलेंगे। NRAI के हिसाब से टीम का चयन हाल ही में हुए नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स 4 के बाद नेशनल रैंकिंग और चयन नीति के आधार पर किया गया है। मेंस 10 मीटर एयर राइफल में रुद्राक्ष पाटिल के साथ युवा शूटर पार्थ राकेश माने और हिमांशु ढिल्लों को जगह मिली है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में रुद्राक्ष के साथ नीरज कुमार और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खेलेंगे। विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर, ईशा सिंह और वर्ल्ड नंबर 2 सुरुचि इंदर सिंह शामिल हैं। यह तिकड़ी टीम मेडल की मजबूत दावेदार मानी जा रही है। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बालकृष्ण, उच्च गांवकर, गौरव और कमलजीत भारत की चुनौती पेश करेंगे। मिक्स टीम इवेंट्स के लिए 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में पार्थ और इलावेनिल, जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में सुरुचि और केदारलिंग की जोड़ी मैदान में उतरेगी। भारतीय निशानेबाजों का एशियन गेम्स में हालिया रिकॉर्ड शानदार रहा है। 2022 में हांगजो एशियन गेम्स में भारतीय शूटिंग टीम ने 22 मेडल जीते थे। इनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल थे। इस प्रदर्शन के दम पर भारत शूटिंग में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। इस बार लक्ष्य पिछले प्रदर्शन को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंचना है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। मौजूदा फॉर्म, वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, टीम कॉम्बिनेशन और कप्तानी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका खिताब की सबसे मजबूत दावेदार नजर आती हैं। विमेंस क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जितनी सफल टीम कोई नहीं रही। टीम ने 9 में से 6 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। एलिसा हिली के बाद सोफी मोलिन्यूक्स की कप्तानी में टीम उतरेगी। एलिस पेरी, बेथ मुनी, एशले गार्डनर, ताहलिया मैग्रा और मेगन शूट जैसी स्टार खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को मजबूत बनाती है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप में 49 मैच खेले हैं। इसमें 39 जीते और सिर्फ 9 हारे हैं। टीम का जीत प्रतिशत टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 80.6% का है। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट स्कोर 191 रहा है। पिछले 1.5 साल में ऑस्ट्रेलिया ने 12 में से 10 T20 मुकाबले जीते हैं, लेकिन हाल के ICC टूर्नामेंट्स में टीम अपने ताकत के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी है। सोफी मोलिन्यूक्स का यह पहला बड़ा ICC टूर्नामेंट है। उन्होंने अब तक 6 मैचों में कप्तानी की है। इसमें 4 जीत और 2 में हार मिली है। उनकी कप्तानी में टीम ने अपना 5वां सबसे बड़ा टोटल 211 बनाया है। भारत ने 2025 में पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था। अब हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम T20 वर्ल्ड कप जीतकर लगातार 2 ICC खिताब जीतने वाली टीम बनना चाहेगी। ऐसा अब तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही कर पाया है। भारत ने

टी20 वर्ल्ड कप में 40 मैच खेले हैं, इनमें 22 जीत और 18 हार मिली है। टीम का जीत परसेंटेज 55 है। भारत 2020 में फाइनल और 2018 व 23 में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने 81 टी20 मैच जीते हैं। वहीं विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में 19 मैच खेले हैं, जिनमें 13 जीते और 6 हारे हैं। भारत के दिग्गज शूटर यशपाल राणा का पिछले शुक्रवार को निधन हो गया। 1 जून को जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के राणा की तबीयत बिगड़ी थी। बता दें कि यशपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 बार गोल्ड मेडल जीते थे। इनमें लगातार 4 एडिशन के गोल्ड शामिल रहे। राणा पेरिस ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकड़ के कोच भी थे। उन्हें फरवरी 2025 में 25 मीटर पिस्टल के लिए भारतीय जूनियर टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाया गया था। यशपाल राणा ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स को मिलाकर कुल 23 मेडल अपने नाम किए थे। इनमें एशियन गेम्स में 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 8 मेडल थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज को मिलाकर कुल 15 मेडल जीते थे। उन्हें 18 साल की उम्र में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। यशपाल राणा ने कई इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीते, लेकिन 1994 में मिलान वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में उनकी जीत यादगार रही। यशपाल के पिता नारायण सिंह राणा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP में तैनात थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही यशपाल को पिस्टल और राइफल शूटिंग के बारे में बताया। यशपाल ने शुरुआत में पिस्टल और राइफल दोनों से अभ्यास किया, लेकिन बाद में फेडरेशन ने एक इवेंट के लिए एक ही शूटर चुनने का नियम लागू किया, जिसके बाद उन्होंने पिस्टल शूटिंग को चुना। यशपाल 11-12 साल की उम्र तक ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे थे। 1988 में सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद में आयोजित 31वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। श्रोताओं, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत पिछले 11 जून से हो चुकी है। दुनिया की 48 बेस्ट टीमें खिताब के लिए भिड़ रही हैं, लेकिन एक एनालिसिस के अनुसार विभिन्न दावेदार देशों में से एक बड़ा दावेदार स्पेन भी है। इस टीम का सबसे चर्चित चेहरा है 18 साल के लेमिन यमाल। उन्हें 16 गोल करने के लिए स्पेन के सबसे बड़े टूर्नामेंट ला लीगा का प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया। साथ ही रोड्री और पेड्री जैसे भरोसेमंद मिडफील्डर्स के ये टीम ताकतवर हैं। 2018 का वर्ल्ड कप जीत चुकी फ्रांस इस बार दूसरी बड़ी दावेदार है, जिसके स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे इन फॉर्म में हैं, जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में गोल की हैट्रिक बनाई थी। वर्ल्ड कप में फ्रांस की टीम का नेतृत्व एम्बापे के हाथ में ही है। इसके बाद नंबर आता है इंग्लैंड का, जिनके कैप्टन हैरी केन जबरदस्त फॉर्म में हैं। वे इस टूर्नामेंट में गोल्डन बूट के दावेदार भी माने जा रहे हैं। वे 2025-26 के सीजन में 51 मैचों में 61 गोल कर चुके हैं। वहीं चौथे दावेदार हैं पिछली विजेता अर्जेंटीना, जिनके स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी से इस बार भी करिश्मे की उम्मीद है। मेसी पिछले वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट विजेता थे और फाइनल में भी उन्होंने 2 गोल किए थे। आपको पता ही होगा, मैक्सिको ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग मैच जीत लिया है। टीम ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मुकाबले के 9वें मिनट में मैक्सिको के जूलियन क्विनोनेस ने गोल किया था। इसके बाद 67वें मिनट में स्ट्राइकर राउल जिमेनेज बेहतरीन हेडर लगाकर बढ़त दोगुनी कर दी थी। इसी के साथ क्रीड़ा जगत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार झा को आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे खेल गतिविधि पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। समाचार संध्या थोड़ी देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में

0: भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये

0: दूसरी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट, और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के

0: परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Noël Barrot, and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्ट

0: अब रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
0: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
2: A country with 1.5

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जामे शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पेरिस डेस एक्सपोजिशन में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में ICC खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जाम शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, ख़ारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी और सीनियर हुक्काम मौजूद थे। सदर मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और खारिजी उमूर के वजीर जीन नोएल बेरोट और दिगर सीनियर हुक्काम थे। दोनों लीडरों ने विला केरलोस में वॉक एंड टॉक इजलास के दौरान भी बातचीत की। इससे कबल दिन में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों ने नीस में पहले देश एक्सप्रेसियो में भारत इन्वेस्ट तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा ये अहम तरीन तकरीब भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स, इख्तराकार, मुहक्किकीन और सरमायाकारों को आलमी इख्तराई फंड्स और फुटप्रिंट के साथ यकजा करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है, जो नौजवान इख्तराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई अख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए

0: के माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं, ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विज़न के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकत दारी को एक ऐसी फ़रोग पाती हुई शराकत दारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद, मुश्तरका अकदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नज़रिए तक फैली हुई हैं।
0: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैखों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैखों ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के अख्तराई को निज़ाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेज़बानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को आज़ादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर भी मुबारकबाद दी।
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
2: And a scale that few can match.
1: वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वज़ीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंसी मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई, सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी, डिजाइनिंग, जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकत दारी को मुस्तहकम करें। वज़ीर आज़म मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे, जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोज़ा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साला दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं, ख्वाह वो GST हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया। हर पहल ने शहरियों को यह एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में

0: से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकतदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 बरसों में एनडीए हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें आवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
2: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि यह पेशरफ्त पॉलिसी असलाहत बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निज़ाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसीतर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ राबता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबायसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हुसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी के शराकतदार के तौर पर मुस्तहकम किया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
2: महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवण पंढरपुर पर वाक़े तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहकीन के लिए 5-5 लाख रुपये माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम परदार तिजारती जहाज विराट 1 के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उधनम के से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनिए फिल्म दिल ही नादान में। शब्द रचना नक्शलैल पुड़ी की है, संगीतकार हैं खय्याम।

आकाशवाणी दरभंगा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में इज्जत फिल्म का ये गाना। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्याडेलाल।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रही थी फिल्म राम और श्याम में। गीतकार थी शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद। यह कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु। आवाज मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीतकार आनंद बख्शे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वीएसपी गायत्री सिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान आखेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वहीं संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। ही इज नोन फॉर हिज एक्सप्रेसिव एंड डायनामिक स्टाइल ऑफ सिंगिंग। He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent Vidwan Akella Mallikarjuna Sharma. He is a MA music gold medalist from Sri Suravaram Prataparedi Telugu University, Hyderabad, where he is currently pursuing his PhD in music. Equally adept at Carnatic vocal concerts and Nama Sankirtanas, he performs at major festivals in India and abroad. As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
0: Shri J. Shri Ram apne gayan ka aarambh वालाजी पेटा वेंकटर अमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे श्रीराम बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ वालाजी पेटा वेंकटरमण भागवतर इन द राग ललिता सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जे श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जे एस श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पीरवली जयभास्कर and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवार्षिक संगीत सभा में श्री जे एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसपी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे एस श्रीराम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जयभास्कर and on ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों

0: आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महसवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sai Ramuchtaba.

0: Bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीटिंग में भी 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। समाप्त होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इसी मीटर पर कल प्रातः 5:45 पर पहली सभा आरंभ होगी।